दोस्तों, आपको पता है कि रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो ये कि उन्हें महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक फोन, एक मुलाकात या सिर्फ मुस्कुरा के इतना कह देना, आप अपना ख्याल रखिएगा, दिल जीत लेता है। और आज आप किसी अपने को याद कीजिए, वो भी बिना किसी वजह के।

दोस्तों, जीवन की दौड़ में दूसरों से आगे निकलना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप कल वाले खुद से बेहतर बने। धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत, थक जाइए लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि सूरज भी हर शाम ढलता है और फिर अगली सुबह पूरी रोशनी के साथ लौट आता है।

दोस्तों याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का तरीका है। और अब एक आखिरी बात, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए और खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि तदनुसार 15 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 28 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

दोस्तों अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची। 6:10 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे अर्पण। 6:44:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस, जिसमें आप सुनेंगे बालकांड। 7:30 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। 9:10 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। उसके साथ साथ 10:30 से 11 बजे तक आप कार्यक्रम सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स। 11:10 से 12 बजे तक आप सुनेंगे तस्वीर, जिसमें आज बातें होंगी सासाराम की, जो कि बिहार में है। उसके अलावा 12:10 से 1 बजे तक कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। 1:10 से 1:50 तक कार्यक्रम सुनेंगे कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज बातें होंगी संगीतकार रोशन की। 2:30 से 3 बजे तक कार्यक्रम सुनेंगे किसान की बात। 3:10 से 4 बजे तक कार्यक्रम सुनेंगे मन भावन। 4:10 से 4:20 तक कार्यक्रम सुनेंगे फिल्मी गीत। और 4:20 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्रिका। और 5:10 पर आप सुनेंगे गाते गुनगुनाते। 6:10 से 6:20 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे विश्लेषण। और इसके अलावा 6:30 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे मार्केट मंत्रा। 7:10 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे सुर्खियों में। और 7:25 से 7:45 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे सांझ ढले। 7:45 से 8 बजे तक आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। और 8:10 से 8:15 तक आप फिल्मी गीत सुनेंगे। 8:15 से 8:30 तक आप सुनेंगे कर्टन रेजर ऑन रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। 8:30 से 8:45 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 से 9 बजे तक आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:15 से आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। और 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय। 10:10 पर आप सुनेंगे विश्व दर्पण। 10:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वर्ल्ड न्यूज़। और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हर सिंगार। और 11:10 पर आप मार्केट मंत्रा सुनेंगे। 11:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीईटीए आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता डीसीसी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन सीईटीए और डीसीसी का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

6:11 और 58 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी अर्पण, भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आप दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करते हैं। ये समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें थोड़ा सा बदला जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा, और शुरुआत अच्छी हो तो दिन अच्छा बीतता ही है। शुरुआत अगर उन गुणों से हो जो हमारी पहचान है तो बात ही क्या। जैसे एक गुण है करुणा, करुणा वो जो सबको हमसे जोड़ता है, क्योंकि करुणा में हम दूसरे के दुख को अपना समझते हैं, हम उनके दुख से दुखी होते हैं, पर दुखे दुखी, यही तो मानव स्वभाव है। और अगर ये अंदर आ जाए तो फिर ईर्ष्या, द्वेष या अहंकार या किसी को दुख देने की प्रवृत्ति, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो कैसे ये गुण हमारे अंदर आए और क्या है जो हमें इस गुण को अपनाने से रोकता है, सब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत एक प्यारे से भजन के साथ। मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से।

जी हाँ, तो बात हो रही थी करुणा की। तो अध्यात्म में करुणा का अर्थ सिर्फ दया या सहानुभूति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दिव्य भावना है जो दूसरों के दुख को अपना मानकर उसे दूर करने की प्रेरणा देती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि जब करुणा का भाव हमारे अंदर आता है तो हम स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी जीवों के साथ प्रेम और जुड़ाव का अनुभव करते हैं, सभी हमें अपने लगते हैं। और अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि दूसरे के दुख को स्वयं महसूस करना। जब हम किसी अन्य की पीड़ा देखकर व्यथित होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करते हैं, तो यही भाव करुणा है। और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में इसका बहुत महत्व है। सब जगह करुणा को सर्वोपरि माना गया है। तो क्यों ऐसा है कि इसे सर्वोपरि माना गया है और क्यों हमें इसे अपनाना चाहिए? क्यों ये भाव हमें वास्तव में मानवता के सिद्धांतों को समझाता है? सब बात करेंगे। बस आप

जी हाँ, तो बात हो रही थी करुणा की, और करुणा के भाव को हम बहुत गहराई से समझना भी चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इससे जुड़े हैं। तो दो बातें हैं, एक तो ये कि विश्व के हर प्रमुख धार्मिक ग्रंथ में करुणा के बारे में बताया गया है, और दूसरा ये कि अगर हम उन्हें नहीं भी पढ़ते हैं तो भी ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं पहले से ही समाया हुआ है। हम किसी को पीड़ा में देखकर अंदर प्रेम, सहायता ऐसा अनुभव करते हैं कि कैसे उसकी मदद की जाए। कभी आपने सोचा है कि क्यों महसूस करते हैं हम किसी के लिए करुणा? तो इसका एक कारण यह है कि सहानुभूति हमारे अंदर एक ऐसा गुण है जो जब हम पैदा होते हैं तब से ही आ जाता है। हमारे अपने मस्तिष्क में यानी माइंड में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस कराने में मदद करते हैं। यानी जब कोई इंसान बहुत दर्द में होता है तो हम भी उसी की स्थिति से जुड़ जाते हैं। और दूसरा ये

कि हम सामाजिक प्राणी हैं। करुणा हमें एक दूसरे से बांध कर रखती है और समाज में आपसी प्रेम और सम्मान को बढ़ाती है। और जानते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के लिए बहुत करुणा का भाव आता है या किसी के दुख को महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास देते हैं। तो कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कितनी महत्वपूर्ण। और ऐसे ही जब ये करुणा का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा मन हर एक के दुख से दुखी होने लगता है, हम सबको अपना मानने लगते हैं, तो ही तो वो जिनके हम हिस्से हैं, जिसे हम पार्ट एंड पार्सल कहते हैं या जो हमारा आदि कारण है, उनको हृदय में लेके आना मुश्किल नहीं लगता फिर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

6:33 और ठीक 2 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम अर्पण पूनम के साथ। नमस्कार, एक बार फिर आपको सुप्रभात। अगर अभी अब आप उठे हैं तो आपको याद दिला दें कि आज हम बात कर रहे हैं करुणा के बारे में, और करुणा एक ऐसा भाव है जो हम सब के अंदर हमेशा रहता है, क्योंकि हम दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, हम सहानुभूति रखते हैं, हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हैं और तब सबसे जुड़ाव का अनुभव करते हैं, और यही हमें मानव बनाता है, यही हमें एक सामाजिक प्राणी भी बनाता है। अब बात करें अलग अलग धार्मिक ग्रंथों की, तो सभी में करुणा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे अगर बात करें भगवद्गीता आती तो वासुदेव कुटुम्बकम, यानी पूरा संसार, पूरी धरती ही मेरा परिवार है। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो वास्तव में अपनी ही आत्मा को दुखी देख रहे होते हैं, इसलिए दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। बौद्ध धर्म में इसे करुणा और मैत्री कहा गया है, यानी सभी जीवों के दुखों से उन्हें मुक्त करने की तीव्र इच्छा। और बोधिसत्व इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जब तक दुनिया का आखिरी जीव भी दुख से मुक्त न हो जाए तब तक हम काम करते रहें, तब तक मोक्ष भी स्वीकार नहीं करें। जानते हैं जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म और करुणा मूल धर्म, ये सब निहित है, यानी किसी भी जीव को कोई भी दुख ना पहुंचाना, मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना, ये दर्शन का एक अनिवार्य सिद्धांत है। सिख धर्म में भी दया और कर्म है। जब हम वर्ण छको कहते हैं, यानी बांट कर खाओ, लंगर की परंपरा की बात करते हैं, तो वो सब इसी करुणामय सोच का आधार है, एक व्यवहारिक रूप है। ईसाई धर्म की बात करें तो लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ, के सभी से ऐसे ही प्रेम करो जैसे आप अपने आप से करते हैं, और वैसा ही व्यवहार करो जैसे आप अपने आप से चाहते हैं या अपने लिए चाहते हैं। तो यीशु मसीह का पूरा जीवन करुणा और दया का ही प्रतीक रहा। इस्लाम धर्म में भी रहमान और रहीम, यानी परम कृपालु, अत्यंत दयावान,

करुणा का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन हम कई बार जब इसके बारे में इसके लिए सोचते नहीं या उपस्थित नहीं होते हैं या समझ नहीं पाते हैं तो शायद इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतना लागू भी नहीं कर पाते। तो सुबह सुबह हर सुबह इस सिद्धांत के साथ अगर उठें तो जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा।

हम एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिनमें करुणा ही भरी हो, और तब हम दूसरों के बहुत ज़्यादा चहेते भी हो जाएंगे। तो उसके लिए पहला तो जो तरीका है वो है कि हम जब किसी को सुन रहे हैं तो उनके दृष्टिकोण, उनकी भावनाओं को समझने का पूरा प्रयास करें। सुबह सुबह हर रोज़ हम अपने आप से भी बात कर सकते हैं, अपने आप के भी दृष्टिकोण को, अपनी भावनाओं को समझें, और उसे ही मेडिटेशन कहा जाता है या ध्यान कहा जाता है। इसमें हम अपने लिए बैठते हैं, अपने आप से बात करते हैं, और फिर पूरी दुनिया के लिए सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। या हर रोज़ अगर हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, यानी बिना किसी फल या प्रशंसा की इच्छा के दूसरों की मदद करते हैं, जैसे किसी को भोजन करा दिया, किसी की सहायता कर दी, किसी को सिर्फ हंसा दिया, किसी को थोड़ा सा समय दे दिया, तो ये भी तो निस्वार्थ सेवा है। या अगर जब भी बोलते हैं तो सोच कर बोलें कि हमारे शब्दों से किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही, तो ये भी करुणा का भाव लेकर आता है। और हाँ, दूसरों की गलतियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं लेकिन अपनी गलतियों को तो देखते भी नहीं, तो फिर क्यों नहीं उन्हें सुबह सुबह जब उठें तो क्षमा कर दें कि कल जो हुआ जैसा हुआ कोई बात नहीं, आज मुझे कोई गुस्सा नहीं, आज मैंने मन से उसे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें उनसे जोड़ती हैं और अपने आप को एक अच्छे इंसान कहलाने का मौका देती हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी करुणा के सिद्धांत की, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते या व्यवहारिक रूप से लेकर नहीं आते। तो उसका भी एक आसान सा तरीका है, और अगर दिन में एक बार भी या दैनिक रूप में, दैनिक जीवन में उसका अभ्यास किया जाए, तो धीरे धीरे

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा।

सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गई माताएं पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगी। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, और आइए अब सुनते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि, या DCC इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः, क्रियान्वितो जातः।

0: भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वीं मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वीं मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants India's exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing Media New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
3: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
2: We have more from a correspondent.
4: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the UK market, generate new opportunity for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. With Rohan Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: Union Minister of Coal and Mines G. Kishan Reddy will launch the 8th tranche of auction of critical and strategic mineral blocks in New Delhi today. Minister of Mines has said that it comprises 20 critical and strategic mineral blocks spread across 9 states, including 13 newly identified blocks and 7 blocks been offered under the second attempt. The mineral portfolio includes molybdenum, graphite, glauconite, rare earth elements, titanium, tungsten, potash, lithium, cesium and rubidium. These minerals are critical for clean energy, advanced manufacturing, fertilizers, defense and other strategic sectors. With 7 tranches of auction completed, the ministry has successfully auctioned 56 out of 88 critical and strategic mineral blocks, achieving a success rate of over 63%. India will host the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting in Hyderabad beginning today. The 2-day meeting will bring together labour and employment ministers and senior officials from BRICS member countries under India's BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia will chair the meeting. The ministers will deliberate on 4 priority areas, including advancing social security and formalization of labor markets and enhancing women's participation and inclusion in the workforce. In football, Spain stormed into the final of the FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the first semifinal clash at Dallas Stadium in Texas last night. Mikel Oyarzabal opened the scoring in the 22nd minute before Pedro Porro made sure of the win with a brilliant second goal. 16 years since winning his first World Cup trophy, La Rosa will face Argentina of England in the final at New Jersey's MetLife Stadium on Sunday night. In another semi-final clash, defending champions Argentina will face England tonight at the Atlanta Stadium. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston, Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 445.2 overs. Skipper Shubman Gill retired hurt with a top score of 80 runs. Akshar Patel made unbeaten 57 runs, while Washington Sundar remained unbeaten with 52 runs. For England, Jofra Archer, Josh Tung and Sam Curran took 1 wicket each. And that is the end of this news bulletin.

7:10 और ठीक 57 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है एक सुनहरी सुबह के साथ गोल्ड सुप्रभात। तो नई सुबह, नई किरणें, नई उम्मीद, और इन सब के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये जो अंगड़ाई लेकर आप उठ रहे हैं ना, आपको एक ऐसा एहसास भी है, ये मुस्कुराहट भी है कि जो थोड़ा सा समय हमें इस समय मिला है, यानी कुछ मिनट, उसमें हम अपनी सुबह को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं प्यारे प्यारे गानों के साथ और बहुत प्यारी बातों के साथ। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर सुबह आपने जीत ली ना, तो पूरा दिन आपका। तो मुस्कुराइए, गहरी सी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए एक प्यारी सी सुबह के लिए जो आपके इंतज़ार में खड़ी हुई है। मैंने आपको बताया ना कि मैं हूं पूनम आपके साथ स्वागत है आप सभी का दिल से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जय आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बात जब सुनहरी सुबह की हो रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य देवता का जिक्र ना हो, और वो भी तब जब वो हमसे भी पहले आ गए हों। तो वो आ गए थे 5:34 के आसपास, और जाएंगे एक पूरा खूबसूरत लंबा दिन देने के बाद, यानी 7:21 के आसपास। बात करें आज के तापमान की, तो धूप खिली रहेगी, कभी थोड़े से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और उम्मीद ये भी है कि आज का दिन हम बहुत अच्छी तरह से बिताने वाले हैं। बस इसी उम्मीद के साथ सबसे पहला आपको काम क्या करना है बताते हैं। बस ये जो प्यारा सा गाना है ना, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, पहले इसे सुन लेते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

7:20 और ठीक 45 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और बात हो रही थी सुबह की एक खूबसूरत शुरुआत की। अब कहने को तो बहुत अच्छा लगता है कहना कि ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए, सकारात्मकता के साथ शुरुआत कीजिए या मुस्कुरा कर उठिए, लेकिन सोचिए अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो कहाँ ऊर्जा, कहाँ सकारात्मकता, कहाँ हम मुस्कुराहट ला पाते हैं। बस एक चिंता सी दिमाग में रहती है और माथे पे शिकन। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऐसी शुरुआत हो तो ये मत सोचिए कि पहले क्या हुआ, क्योंकि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है खुद को बेहतर बनाने का। तो पहले जो भी हुआ उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आज से आप सुबह में 10 से 15 मिनट योग ज़रूर शामिल कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं गहरी सांस लेने से, फिर ताड़ासन से या भुजंग आसन से, या कुछ राउंड सूर्य नमस्कार के। ऐसे कोई भी आसन आप जब करते हैं ना तो शरीर में लचीलापन बढ़ता है, मन शांत होता है और दिन भर आप ताजगी महसूस कर पाते हैं, क्योंकि योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन और विचारों के संतुलन के लिए भी है। इसलिए थोड़ा सा योग हर रोज़ ये बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो सारी बातें हम आपको बताते हैं इन्हें आप एक्चुअली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकें, यानी अपना सकें।

भाई इतने प्यारे गाने के साथ शुरुआत हो तो फिर क्या जरूरत है ये बताने की कि आपको सकारात्मकता चाहिए, क्या जरूरत है ये बताने की कि आप ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए, गाने अपने आप बता देते हैं। वैसे गाने के साथ साथ एक और है जो हमें ये बता देते हैं कि दिन की शुरुआत खूबसूरत होनी चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ होनी चाहिए, और वो है सूरज जो आते हैं, उगते हैं, याद दिलाते हैं कि हर दिन तो एक नई शुरुआत है। इसीलिए

बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में कल नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या ये है कि आज भी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जो आपने आज सोचा है वो बिल्कुल पूरा होगा, और अगर आज नहीं होगा तो कल होगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ जो करना चाहते हैं उसे करते रहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमें हमेशा उत्साहित रखती हैं। इसीलिए कुछ भी नेगेटिव मन में आए ना, तो उसे भूल जाइए और सिर्फ म्यूज़िक सुनिए।

तो इसी के साथ पूनम को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात, और अब समाचार सेवा प्रभात का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। कहते हैं सूर्योदय केवल आकाश में नहीं होता, बल्कि वे हमारे विचारों में भी होता है। जब मन में विश्वास की रोशनी हो तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है और हर कदम नई मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। इसी उजाले, इसी विश्वास और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज सवेरे कार्यक्रम में। अगले कुछ पलों में देश दुनिया के प्रमुख खबरों से लेकर महानगरों की हलचल, इतिहास की दिलचस्प झलकियों, प्रेरक व्यक्तित्वों और आपके मनपसंद गीतों तक बहुत कुछ रहेगा हमारे सफर में। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। हेलो सुभद्रा।
1: Hello, Vaishnavi. Rise and shine to another beautiful day, listeners. Let your heart be light, your smile be bright as we begin our news magazine program, Aaj Savere. Right, Vaishnavi?
0: Jee.
1: So let us start with some news headlines. India is currently operating 24 nuclear power reactors across 7 sites with a total installed capacity of 8.78 gigawatt. 10 more reactor units with a combined capacity of 8,000 megawatt are under construction. These reactors are pressurized heavy water reactors, boiling water reactors and light water reactors. The country is mainly using natural uranium fuel to run the pressurized heavy water reactors to produce nuclear energy. Government said that India is steadily expanding its nuclear power program to strengthen energy security and support clean economic growth. A major outcome of the third India-Australia annual summit, which was held in Melbourne last week, was the finalization of the administrative arrangement under the India-Australia Civil Nuclear Cooperation Agreement. It enables long-time exports of Australian uranium to India for peaceful purposes. The Australian uranium will ensure a steady supply of the primary fuel to run these nuclear power reactors.
0: भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने कल भारतीय समयानुसार रात 8:17 पर रूस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। ये वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों के प्रदर्शन पर केंद्रित 8 महीने के मिशन के अंतर्गत उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत है। सोयूज अंतरिक्ष यान ने कजाकिस्तान के बोकोनूर कोस्मोड्रोम से उड़ान भरी, जिसमें मेनन के साथ रोसकोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र द्रोप्रोव और अन्ना किकिना भी थे। प्रक्षेपण के कुछ ही समय बाद अंतरिक्ष यान ऑर्बिट में पहुंच गया और लगभग 3 घंटे की 2 परिक्रमा यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के प्रीचिल मॉड्यूल से अपने आप जुड़ गया। नासा के अनुसार हाल ही में पहुंचा क्रू अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटने से पहले ऑर्बिटल लेबोरेटरी में लगभग 8 महीने बिताएगा।
1: The Supreme Court yesterday slammed comedian Samay Raina and YouTubers Ranveer Alabadia and Ashish Chanchalani for not complying with its order, observing that they are self-styled youth icons. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymala Bagchi and V. Mohana passed the order after it was informed that Raina had not invited any disabled persons to his show, according to its earlier order. The bench said that they have no reason to doubt that Samay Raina has taken the court for a ride and he is in brazen violation of statements or undertakings given before the court. The top court was hearing a plea filed by Cure SMA India Foundation, alleging that Raina made insensitive remarks over the high cost of treatment for spinal muscular atrophy and also allegedly ridiculed a person with such a disability. The plea flagged jokes made by India's Got Latent host Samay Raina and other social media influencers Vipun Goyal, Balraj Paramjit Singh Ghai, Sonali Thakkar and Nishan Jagdish Tanwar.
0: श्रोताओं, अगर आप भारत की पारंपरिक कला और शिल्प को करीब से देखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। 19 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर के कारीगरों और बुनकरों के हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों के साथ पारंपरिक शिल्पों का लाइव प्रदर्शन देखा जा सकता है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता अमन यादव से कि इंडी हाट में आपके लिए क्या रोचक हो सकता है।
2: इस विशेष पहल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा भारत की उत्कृष्ट शिल्पकला को समकालीन और आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से

0: सुभद्रा बहुत ही दुर्लभ दृश्य होता है जिसे सुनने को लग रहा है.
1: Yes.
0: मुझे लगता है एक बार जरूर किसी ना किसी को जरूर जाना चाहिए वहाँ पे.
1: Of course.
0: और अब हम खेल की तरफ चलते हैं सुभद्रा. तो खेल में अभी फीफा विंबलडन काफी कुछ चल रहा है.
1: Yes,
0: तो आज आपके पास क्या कुछ
1: yes,
0: बताना
1: of course, चाहेंगे? I have great news here. In football, Spain stormed into the final of FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas, US last night. We have more from our sports desk.
2: Sixteen years since winning its first World Cup trophy, La Roja is aiming to lift the title. In the semi-final clash, Mikel Oyarzabal opened the scoring in the 22nd minute before Pedro Porro made sure of the win with a brilliant second goal. Spain will now face Argentina or England in the final at New Jersey's MetLife Stadium on Sunday night. In another semi-final clash, defending champions Argentina will face England tonight at Atlanta Stadium. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Moving on to men's cricket, India defeated host England by 6 wickets in first ODI of 3-match series at Edgbaston in Birmingham last night to lead the series 1-0, ending their losing streak in international cricket. Opting to bat, England got bundled out for 258 runs in the 48th over. For India, Akshar Patel bagged 4 wickets. In reply, the men in blue comfortably overhauled the target in the 46th over, riding on skipper Shubman Gill's fabulous innings of 80 runs, after which he got retired hurt. Moreover, Washington Sundar and Akshar Patel both crossed the half-century mark and finished the match being unbeaten. Akshar Patel was adjudged player of the match for his all-round performance. Both the teams will next face each other in second ODI in Cardiff tomorrow. The third ODI will be played at Lord's in London on Sunday. Chirag Jha for Sports Desk.
0: और सुभद्रा, अब चलते हैं देश के प्रमुख शहरों की ओर और
1: yes.
0: जहां से दिन भर की कई अहम गतिविधियां हमें जानने को मिलेगी. सबसे पहले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली से. तो दिल्ली मेट्रो ने पुराने और अनुपयोगी कपड़ों के संग्रह के लिए अर्पण पहल शुरू की है. इसके अंतर्गत शहर के 10 मेट्रो स्टेशनों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कपड़े दान किए जा सकेंगे. इस पहल का उद्देश्य टेक्सटाइल कचरा कम करना और रिसाइकलिंग के जरिए स्वच्छ एवं टिकाऊ दिल्ली को बढ़ावा देना है. वहीं संगीत नाटक अकादमी आज से देशव्यापी राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा. आज शाम 6 बजे से देशभर में एक साथ नाट्य प्रस्तुतियों का मंचन होगा, जिसमें 39 से अधिक भाषाओं और बोलियों में 150 से अधिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी.
1: That sounds really good, right? Wonderful. That's that from Delhi?
0: Jee.
1: Okay, now I'm taking everybody to Chennai now. A total of 3,365 students from corporation and government

0: Government-aided schools use Metropolitan Transport Corporation's exclusive free school buses on Monday, the first day of the expanded initiative. The buses pick up students from designated points near their neighborhoods and drop them inside school campuses, reducing dependence on crowded, regular MTC services during peak hours. MTC was already operating 25 such buses. The facility has now been extended to 44 more schools across the city and suburbs, bringing more students under the scheme. The managing director, D. Mohan, said girls made up about 80% of the beneficiaries on the first day.
1: और चेन्नई से अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई में पहले पैदल यात्री अनुकूल काला घोड़ा आर्ट एवेन्यू का उद्घाटन किया. इस नए सांस्कृतिक स्थल पर लोग पैदल घूमते हुए कला की अलग अलग झलकियां देख सकेंगे, जिनमें दीवारों पर बनी कलाकृतियां और आकर्षक मूर्तियां शामिल है. आने वाले समय में यहां कला प्रदर्शनी, संगीत कार्यक्रम और हस्तशिल्प बाजारों का भी आयोजन किया जाएगा. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकेरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 के नियमों में बदलाव किए हैं. इसके अंतर्गत अब अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. सरकार ने ऋण माफी की सीमा अब 50,000 रुपए से बढ़ा करके 2,00,000 रुपए कर दी है.
0: And going over to Bengaluru now, the Karnataka government has permitted hotels and restaurants in Bengaluru to extend food service timings from 1 a.m. to 3:30 a.m. on July 14, 15 and 19 to facilitate late night screenings of FIFA World Cup matches. The decision was taken following a request from the National Restaurant Association of India. The government said the relaxation has been granted while ensuring that public safety, law and order and the convenience of citizens remain the highest priorities. The government has appealed to football fans to enjoy the matches responsibly and cooperate with the authorities during the extended operating hours. We have another news, Vaishnavi, from Bengaluru. BMTC, that is Bengaluru Metropolitan Transport Corporation, has suspended a driver cum conductor following a surprise inspection by Karnataka Transport Minister B.S. Suresh Bairathi, who travelled on a BMTC bus on July 11th. During the journey, the minister alleged that the staff members behaved discourteously after asking for exact change for a ticket and failed to inform him about the UPI ticket payment facility. BMTC said the incident has been taken seriously and a departmental inquiry has been initiated. The employee has been placed under suspension with effect from July 13. Such things should happen in Delhi also, right? Mm-hmm. To catch the culprits on buses. And do you have the next one, please?
1: Jai, ab Kolkata ki taraf chalte hain. भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू होने जा रहा है. इसके अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय और अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां ब्रिटेन के निर्यात खेप रवाना कर इस समझौते की शुरुआत की जाएगी.
0: एंड गोइंग टू हैदराबाद नाउ, तेलंगाना स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ सी सुदर्शन रेड्डी IAS has urged citizens to immediately complete and submit their enumeration forms to booth level offices, BLOs, to safeguard their valuable right to vote. This appeal comes as part of the ongoing Special Intensive Revision SIR program in the state. The CEO advised voters to carefully fill out the forms without any errors, paste a passport size photograph, and ensure the document is signed by both the voter and the BLO with the correct date. Voters are required to fill out 2 copies of the enumeration form, returning one to the BLO and keeping the second copy for their personal records. The submission is crucial as a voter's name will only be registered in the draft electoral roll upon receiving this completed form.
1: तो श्रोताओं, ये तो थे अब तक के मेट्रो समाचार. और मॉनसून अब देश के अधिकांश हिस्सों में अपनी दस्तक दे चुका है. कहीं रिमझिम फुहारे हैं तो कहीं बादलों का डेरा. ऐसे में घर से निकलने से पहले एक नजर आज के मौसम पर डाल लेते हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और कोलकाता की

0: बात करें तो कोलकाता में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुभद्रा,
1: अब आपके पास चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius. Maximum will be around 30 degrees. Hyderabad again expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will be between the minimum of 27 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius.
0: श्रोताओं, इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह भी बताता है हमें कि इंसान की सोच, साहस और संकल्प किस तरह समय की दिशा बदल सकते हैं। आइए नजर डालते हैं 15 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर।
1: हाँ, आई एम स्टार्टिंग विद द ईयर 1870। जॉर्जिया बिकेम द लास्ट कन्फेडरेट स्टेट टू बी री एडमिटेड टू द यूनियन। मैनिटोबा एंटर्ड कन्फेडरेशन एज द फिफ्थ कैनेडियन प्रोविंस। And 1916, Vaishnavi, we are taking you them, we are taking the listeners to the year 1916, witnessed the birth of the Boeing Company, originally known as Pacific Aero, founded by William Boeing in Seattle, Washington. This iconic company would go on to transform the world of aviation, leaving an indelible mark on the way we travel.
0: जी, और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि आज जिस मुंबई की पहचान उसकी रफ्तार से होती है, उस रफ्तार की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। साल 1926 में आज ही के दिन मुंबई में पहली मोटर बस सेवा शुरू की गई थी। समय के साथ ये सेवा शहर की जीवन रेखा बन गई और आज भी लाखों लोग रोजाना बसों के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
1: And 1933, an aviator named Wally Post embarked on the first solo flight around the world. This daring endeavor took him 7 days and 19 hours to complete. Marvelous, right? And in 1948, establishment of PEPS, PEPS, Patiala and East Punjab States Union happened.
0: वर्ष 1955 में आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी।
1: एंड 1997, महेश चंद्र मेहता, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, विन्स रमन मैग्सेसे अवार्ड। एंड ऑन दिस डे इन 2006, द सैन फ्रांसिस्को बेस्ड पॉडकास्टिंग कंपनी ऑडियो ऑफिशियली रिलीजेस ट्विटर, लेटेस्ट इट इज कॉल्ड TWTTR, लेटर चेंज टू Twitter, its short messaging service, SMS for groups to the public.
0: जी, और श्रोताओं, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर तैनात सैनिक, चारों ओर संकट और फिर एक ऐसा अभियान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वर्ष 2000 में आज ही के दिन सियरा लियोन में भारतीय शांति सैनिकों को साहसिक ऑपरेशन खुकरी के अंतर्गत सुरक्षित मुक्त कराया गया था। भारतीय सेना के इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र के सबसे सफल बचाव अभियानों में से एक माना जाता है।
1: And in 2009, Harry Potter and the Half-Blood Prince, the sixth film based on J.K. Rowling's popular book series, is released worldwide, captivating audiences with its magical storytelling.
0: और अब बात उस उपलब्धि की जिसने अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया। 15 जुलाई 2011 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C17 के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-12 का सफल प्रक्षेपण किया था। इस सफलता ने भारत की अंतरिक्ष तकनीक और संचार क्षमता को नई मजबूती प्रदान की थी। श्रोता, इतिहास हमें बताता है कि उपलब्धियां संकल्प और सीखने की क्षमता से हासिल होती हैं। आज के दौर में यही सीख युवाओं के कौशल और तैयारी से भी जुड़ती है। इसी कड़ी में बात करते हैं विश्व युवा कौशल दिवस की।
1: Yes, today is World Skills Day, right? It's called World Skills Day, yes. And it's a global initiative highlighting the importance of equipping young people with essential skills. And also, its friends, it's a call for educators, guardians, mentors, training providers, and more to ensure youth are getting the skills they need to be successful. And, you know, it was started, Vaishnavi, the day was initiated by the United Nations General Assembly in 2014 to highlight the critical role youngsters play in shaping the future. And of course, this acts as a focal point, raising awareness about the need to equip young people with skills they need to thrive in their careers and make a name for themselves in the society.
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुभद्रा. मेरे को बल्कि ऐसा लगता है कि आज के बदलते दौर में और अनिश्चित ऐसा दौर है.
1: So many, yes.
0: जी, बिल्कुल. केवल डिग्री ही

0: होना पर्याप्त नहीं है आपके लिए.
1: यस ऑफ कोर्स, इट्स अ डिजिटल नॉलेज इज रिक्वायर्ड. एंड ऑल्सो वैष्णवी, दिस इयर्स थीम इज स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, व्हिच मींस अ यूथ मस्ट empower themselves with the latest that's going on, you know, that's besides the usual, you know, technical, you know, books and stuff, digital knowledge. There is artificial intelligence that is dominating the future of the office sector. The youth of today need to evolve, need to get out of their set patterns, and in order to thrive in this changing landscape.
0: बिल्कुल श्रोताओं, जो भी हमारे सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकों के बढ़ते प्रभाव के बीच अपने हुनर को लगातार निखारते रहिए, क्योंकि रोजगार और उद्यमिता की ये नए अवसर खोल सकता है.
1: यस ऑफ कोर्स, यस. एंड नाउ लेट्स गेट टू सम डेथ्स एंड बर्थ्स ऑफ टुडे. व्हाट आर वी स्टार्टिंग विद?
0: सबसे पहले बात करते हैं बाल गंधर्व की. श्रोताओं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आवाज और अभिनय समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं. मराठी रंगमंच के ऐसे ही अमर सितारे थे बाल गंधर्व. बाल गंधर्व का वास्तविक नाम नारायण श्रीपाद राजहंस था. उस समय रंगमंच पर महिलाओं का अभिनय करना सामान्य बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनेक महिला पात्र निभाए. उनकी मधुर गायकी, भावपूर्ण अभिनय और आकर्षक मंच प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया. उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें बाल गंधर्व की उपाधि दी, जिसका अर्थ है स्वर्ग जैसा मधुर स्वर वाला कलाकार.
1: And friends, we are remembering M.T. Vasudevan Nair, author, lecturer, screenplay writer, who was also a filmmaker from Kerala. He started out as a teacher and then moved on to journalism in 1957, finally retiring as editor of Matrabhumi Weekly in 1997. He has over 20 collections of short stories written between the 1950s and 90s. And he was also awarded the Padma Bhushan in 2005, Gyanpeeth in 1995. He was also received the Kerala Jyoti in 2023, the state's highest civilian honor, the Central Sahitya Academy Award in 1971, 1982 and 1986, and the Kerala Sahitya Academy Award in 1958. And today we also remember Russian playwright and short story writer Anton Chekhov, passed away this day in 1904, one of the greatest writers of short fiction in history. His career as a play Wright produced 4 classics and his best short stories are held in high esteem by writers and critics.
0: अब बात एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के स्वास्थ्य और मातृ शिशु कल्याण को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया. ये थी डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी. डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी देश के जानी मानी चिकित्सक और समाज सेवी थी. उन्होंने पुणे के KEM अस्पताल में वर्षों तक सेवा देते हुए जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई और विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में उनके प्रयासों को देश विदेश में सराहा गया. समाज और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें रामिन मैक्सेसे पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया था.
1: And today is the birth anniversary of K. Kamraj. He was an independence activist and politician who served as the Chief Minister of Madras State. And of course, he also served as the President of the Indian National Congress for 2 terms, that is 4 years between 1964 and 1967. Born into a humble family in Virudhunagar on this day in 1903, Kamraj dropped out of school at age 12 to work. He joined the Indian National Congress at age 17, dedicating his life to India's freedom struggle, and was jailed multiple times for his participation in movements like the Quit India campaign. And also born this day in 1606 was a Dutch painter and printmaker, Rembrandt, one of the greatest storytellers in the history of art, known for his exceptional ability to render people in their various moods and dramatic guises.
0: श्रोताओं, कुछ लेखक केवल कहानियां नहीं लिखते बल्कि अपने शब्दों से पूरी पीढ़ी की सोच को आकार देते हैं. ऐसे ही महान साहित्यकार थे M.T. वासुदेवन नायर. मलयालम साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित रचनाकारों में गिने जाने वाले M.T. वासुदेवन नायर ने उपन्यास, कहानी, पटकथा और फिल्मों के माध्यम से समाज की संवेदना को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था.
1: And freedom fighter, social activist, lawyer, Durgabai Deshmukh was born this day in 1909. Inspired by Mahatma Gandhi, she took part in the Salt Satyagraha and organized women during the civil disobedience movement, which led to her imprisonment by the British on multiple occasions. And as a key member of the Constituent Assembly, she helped draft the Constitution of India.

0: देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों की सूची में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1947-48 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने नौशेरा की रक्षा करते हुए अद्भुत साहस का परिचय दिया था। उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। वे युद्ध के दौरान वीर गति प्राप्त करने वाले भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में थे। उनके अद्वितीय पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, भारतीय सेना का इतिहास ऐसे अनेक वीर सपूतों की गाथाओं में भरा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बाद अब बात एक और ऐसे ही जाबाज सैनिक की जिन्होंने अदम्य साहस को भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, कैप्टन नीके झा को। भारतीय सेना के साहस और समर्पण की मिसाल है कैप्टन नीके झा को। नागालैंड के रहने वाले कैप्टन नीके झा को ने आतंकवाद विरोधी अभियान में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके असाधारण साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे युवाओं के लिए देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा है।
1: And friends, birthday wishes go out to multi-talented artist, singer, actress Linda Ronstadt, born in Tucson, Arizona. Growing up, she listened to many types of music, including folk, rock and roll, country, opera, pop standards, and Mexican ballads. So she went ahead and experimented with all that she liked and worked with many different musicians, including members of the Eagles, Dolly Parton and Emmylou Harris. You would be delighted to know that good old country rock band Eagles, they started their career singing backup vocals for Linda, an old cowboy song, Old Paint, playing in the background.

0: भारतीय रंगमंच को नई सोच और नई दिशा देने वाले महान नाटककार थे बादल सरकार। वे अभिनेता, निर्देशक और नाटककार होने के साथ साथ थर्ड थिएटर आंदोलन के प्रणेता भी थे। उनके प्रसिद्ध नाटकों में एवं इंद्रजीत और पागला घोड़ा शामिल है, जिन्हें आज भी भारतीय रंगमंच की क्लासिक रचनाएं माना जाता है। और श्रोताओं, आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये मुलाकात आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में कुछ नई बातें छोड़कर जा रही होगी। नई उम्मीदों के साथ आपके दिन की शुरुआत कीजिए, मुस्कुराइए और हर पल को पूरे उत्साह के साथ जीने की कोशिश कीजिए। अब मुझे और मेरी सहयोगी सुभद्रा को अनुमति दीजिए।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की।

0: फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
2: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की

0: बात के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजखंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से

0: के मंच की सिफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौइयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया।

ना मुख्तसर पढ़ाओ। देवी देवता बहन भाइयों की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीमुशान रियासती सतह के प्रोग्राम में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ इकदाम का आगाज करेंगे, जिनका मकसद रियासत में हुनरमंदी, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को मुस्तहकम

0: माइकल ओयारज़बल ने 22वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल करते हुए स्पेन की जीत यकीनी बना दी। अब इतवार की रात न्यू जर्सी के मीट लाइफ स्टेडियम में फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने 16 साल पहले अपना पहला फुटबॉल कप जीता था। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बर्मिंघम के एडबिस्टन में खेले गए 3-1 रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजारत खारजा के बयान को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, हुरमुज में भारतीय शहरी की हलाकत पर भारत खफा। वजारत खारजा ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और दीगर सिफारतकारों को तलब किया, समुद्र में जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सलाह दी। रोजनामा इनकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर शाये करते हुए सुर्खी लगाई, भारत ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की उम्मीदवारी पेश की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने माल बर्दारी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 8 नई असलाहत का ऐलान किया। इसी अखबार ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है, NESAC खलाई टेक्नोलॉजी को आवाम की जिंदगी से जोड़ने का अहम जरिया बन चुका है। अखबारात की कुछ अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, अब नए हुरमुज जंग या अमरीकी दबाव से नहीं खुलेगी, ईरान का बयान, अब नए हुरमुज से आमदोरफ्त पर कोई फीस या टोल कबूल नहीं, यूरोपीय यूनियन का बयान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, बरतानिया, भारत बरतानिया जामे इकतसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आज़ाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है, उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ODI में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: 8:45 और ठीक 55 सेकेंड आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी म्यूजिकल दिल लगी। तो पसंदीदा गाने और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी पूरी सुबह को और इस वक्त जब आप रास्ते में हैं, ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो उस सफ़र को बहुत ही शानदार बना दे। तो फिर शुरुआत किसी एक अच्छी चीज़ से की जाए, और वो अच्छी चीज़ है मुस्कुराहट, जो अच्छे दिन की सबसे अच्छी पहचान होती है। बस यही सोचकर हमने सोचा कि ये जो पहला गाना है ना, ये आपकी मुस्कुराहट को बढ़ा दे, ऐसा लेकर आए। मैं हूँ पूनम, आपके साथ स्वागत आप सभी का दिल से।
1: उठे सबके कदम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

8:51 मिनट और ठीक 58 सेकंड। देखिए सुबह सुबह का समय ना बस भागता जाता है, और ऐसे में जब हम सोचते हैं कि मन शांत रहे, सकारात्मक रहे, पॉजिटिव सोचें, कहाँ टाइम मिलता है ये सब करने का। तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये सब अनकॉन्शियसली हमारे अंदर चलता रहे, यानी हमें ज़रूरत ना हो लेकिन फिर भी हम शांत रहें। तो उसके लिए बस छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि सफाई की आदत डालना। अब ऐसा लगता है हमें कि अगर हमारा जो वर्क स्टेशन है वो व्यवस्थित नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन आप एक बार उसे व्यवस्थित करके देखिए, यानी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रख के देखिए, आपके अंदर अपने आप शांति आ जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी। और एक और बहुत ईजी तरीका है, वो ये है कि हर दिन सबसे पहले 3 ज़रूरी काम तय कर लीजिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं और उन्हें फोकस के साथ करते हैं तो वैसे ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि आपको कोई एंजाइटी नहीं होती। और हाँ, हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है, खूब पानी पीना ज़रूरी है, मोबाइल नोटिफिकेशन से थोड़ी दूरी बनाए रखना भी ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो ये कि ये जो हम सोचते हैं ना कि एक ही साथ बहुत सारे काम कर लेंगे, बहुत अच्छी आदत नहीं है। मल्टीटास्किंग बेशक कहने में बहुत अच्छी है, लेकिन जो ज़रूरी 2 काम होते हैं ना, कौन से 2 काम मल्टीटास्किंग में किए जा सकते हैं ये बताएंगे, लेकिन पहले ये प्यारा सा गाना।

गाने तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग जो कर रहे हैं ना, कि ड्राइव करते करते सुन रहे हैं, उसमें ड्राइविंग भूल जाए या ट्रैफिक के नियमों का पालन करना भूल जाए। वैसे बात है मल्टीटास्किंग की कर रहे थे, तो मल्टीटास्किंग तब अच्छी है जब एक काम शारीरिक हो और एक मानसिक, यानी एक मेंटल एक फिजिकल, तो आप क्लब कर सकते हैं। जैसे आप म्यूजिक सुनते सुनते ड्राइव कर रहे हैं, या घरेलू काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, या कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं, या आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, शारीरिक कसरत कर रहे हैं, उसके साथ भी आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मल्टीटास्किंग हो। कपड़े तय करते करते आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, या अखबार पढ़ते पढ़ते आप बैकग्राउंड में कुछ और चल सकता है। लेकिन दोनों काम मेंटल हो या दोनों फिजिकल हो, वो मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती। जैसे अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और साथ साथ ईमेल टाइप कर रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग हो नहीं सकती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको और हमें याद रखनी है, ताकि हम एक्चुअली एफिशिएंट हो सकें, अपने दिन को अच्छा बना सकें, और साथ ही साथ अपने आसपास भी खुशियाँ फैला सकें, जैसे कि एफएम गोल्ड आपके लिए करता है। पर फिलहाल टाइम ये कह रहा है कि पूनम अब तुझे जाना चाहिए, और नाज आपके साथ होंगी म्यूजिकल दिल्लगी का सफर आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल पूनम चलती है, पर आप कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ही देर में आप जानेंगे देश और दुनिया का हाल, यानी सुनेंगे समाचार। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही एफएम गोल्ड सुनते रहिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए कई अवसर खुलेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य कैबिनेट के सदस्यों और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मंजूर की है। राज्य के योगदान को मिलाकर अगले वर्ष मार्च तक पंचायतों के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है और विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की

0: नीलामी के आठवें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लिडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी पूरी कर ली है। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसकी सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पहल शुरू की है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही जरूरी है।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सही। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में श्री जोशी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करेगी। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमरीका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
3: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
2: Center has announced 8,508 crore rupees package for rural development in West Bengal. The package was announced by Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan in Kolkata yesterday after chairing a high-level review meeting with West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari. The meeting reviewed 19 major infrastructure projects worth over 82

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू एन अमेजिंग मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज, लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल्ली।

ढेर सारी बातों के बीच एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक सॉन्ग, तो कुल मिलाकर माहौल होगा एकदम म्यूजिकल और होंगी ढेर सारी बातें भी। तो बने रहिए साथ और एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

हां जी, तो अर्ज किया है कि नाचना सिर्फ पैरों का हुनर नहीं होता, ये तो दिलों के धड़कने का इशारा होता है। जब ये रूह झूमती है तब ये शरीर नाच उठता है, वरना खाली बदन में ये कमाल कहां होता है। और गौर फरमाइएगा कि तकदीर के भरोसे बैठने वाले सिर्फ आहें भरते हैं, वरना जो मेहनती होते हैं वो तो अपनी धुन पर ये पूरी

तो छोड़ के सारे गम, फोकस कीजिए उन खुशियों पर जो आपके हिस्से हैं, और सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी, कहां? यही एफएम गोल्ड पर ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां अब बात होने वाली है आज के इस खूबसूरत दिन यानी 15 जुलाई की। मौसम का हाल कुछ यूं है कि दिल्ली में छाए हैं बादल, हल्की हल्की बारिश का है अनुमान।

तूफान, लेकिन उमस और गर्मी से मिले राहत ऐसा मुश्किल ही लग रहा है। और AQI है आज का 81 यानी 81, जो कि अच्छे और मीडियम श्रेणी के बीच का है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में है मॉनसून का बोलबाला, तो निकलिए घरों से बाहर, एंजॉय कीजिए ये मौसम विद सम सावधानियां। बारिश में भीग गए हैं तो सीधे एसी या फिर तेज पंखे के सामने ना बैठें, साफ पानी पिएं, साथ ही जल भराव वाली जगहों और बिजली के खंभों से बनाकर रखें दूरी। अभी एंजॉय करें ये अगला ट्रैक, फिर जब लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या कहता है आज के दिन का इतिहास विद मी यानी नाज़।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

स्वागत है आपका एक बार फिर। म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज की तारीख यानी 15 जुलाई की क्या है कहानी, अब ये आप सुनिए मेरी यानी नास की जुबानी। तो जनाब, आज का दिन है बेहद खास, खासकर उन युवाओं के लिए जो बहुत कुछ कर दिखाना चाहते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा

0: कौशल दिवस है आज, जिसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के युवाओं के रोजगार, सम्मानजनक काम और उद्यमिता के लिए जरूरी कौशल यानी स्किल्स से उन्हें लैस करना, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वो खुद को तैयार कर सकें। श्रीलंका की पहल पर 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था और आज की तारीख यानी 15 जुलाई को नामित किया था इस खास दिवस यानी विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में। इस साल यानी 2026 की थीम है साझे भविष्य के लिए कौशल, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। डॉक्टर श्रीपति टूडू, जो एक प्रतिष्ठित भारतीय शिक्षाविद, लेखक, अनुवादक और शोधकर्ता हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का पहली बार संथाली भाषा ओल चिकी लिपि में अनुवाद करके इतिहास रचा है। साथ ही इटली की संस्था चामरा डीओ के द्वारा ऑस्टाना यूथ अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट्स।
1: गुड मॉर्निंग,
0: जी सर। सर, स्पेन और इटली का जो आपका सफर रहा वो वाकई बहुत इंस्पिरेशनल है हम सब के लिए। यकीनन स्वदेशी भाषाओं को साथ लेकर चलने की जो सीख आपने दी है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, पर आज का युवा थोड़ा विमुख है सर स्वदेशी भाषाओं के प्रति, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? और अगर ऐसा है तो कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि यूथ का इंटरेस्ट इस ओर बढ़े?
1: आज के दिन में हमारा जो मातृभाषा है उसका बहुत जरूरत है उसको बोलने, और उसके साथ साथ हमारा पड़ोस पड़ोस जो दूसरे भाषा है, मेनली जो भारतीय भाषा है, उनको भी जानना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मातृभाषा है वो है कि एक पेड़ की जड़ जैसे है, वो है हमारा रूट है। अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमारा जो रूट उसको जानना पड़ेगा। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि आप बड़े हो, लेकिन मेरा ख्याल से ये बड़े होने से नहीं होगा, उसके साथ साथ हमारा जो रूट उसको भी जानना होगा, और ऐसे हमारा जो भाषा है उसको हम आगे ले जा सकते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा जो युवा है उनको भी अपना अपना जो मातृभाषा है और उसके साथ साथ जो दूसरे भाषा है भारत में, सभी भाषा को जानना चाहिए।
0: बिल्कुल सर,
1: तभी आगे बढ़ पाएंगे।
0: बिल्कुल सर, भारतीय संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। जानना चाहेंगे आपसे कि किन कठिनाइयों से आपका सामना हुआ इस दौरान और कौन सी वो बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया इस मील के पत्थर को गढ़ने के लिए?
1: ये जो भारतीय संविधान जो मैंने संथाली भाषा में ट्रांसलेट किए थे
0: जी,
1: तो ये काम बहुत पहले शुरू हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तब सर से सुना था कि हमारा एक संविधान है उसमें कुछ रूल वगैरह है जो हम शेड्यूल टाइप को कुछ सुविधा मिल रहा है। तो उसी समय से मेरा ख्याल आया कि संविधान क्या है, मुझे उसको जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने संविधान को स्टडी शुरू किया और बाद में रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे जो कम्युनिटी है जो संताली भाषा भाषी है तो उनको भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का जो राइट है, सभी जानना होगा। तो इसीलिए मैंने उनका ट्रांसलेट शुरू किया और इसका जो इंस्पिरेशन वो पहले मेरे फैमिली से मिला था, मेरे पिता माता और मेरे अंकल तो बहुत इंस्पायर किए थे ऐसे काम करने के लिए। और दूसरा एक था कि स्वामी विवेकानंद जी का एक बात मुझे सुना था स्कूल में सर के पास, वो है कि हमारा ये दुनिया में ऐसे पेड़ पत्थर बहुत तो है लेकिन उसका कोई काम का नहीं है। अगर हम पत्थर पेड़ की जैसा रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम लोग को कुछ करना होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को संताली भाषा में अनुवाद किया हूँ
0: जी।
1: तो कैसे ये काम हुआ, तो और इसका जो चैलेंजिंग था वो बहुत सारे चैलेंजिंग था, जैसे कि इसका जो लीगल टर्मिनोलॉजी तो संताली भाषा में मुझे नहीं मिल रहा था,

0: तो मुझे चार पांच डिक्शनरी देखना पड़ा, तो उसके साथ साथ कुछ कुछ जगह में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और बहुत सरल तरीका से मैंने उसको लिखा जैसे कि आम आदमी इसको समझ पाए, तो इसलिए बहुत सरल तरीके से मैंने इसको तैयार किया है।
1: जी सर, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपने AI और

0: किया, तो इसी बात से इंस्पिरेशन लेकर वो कौन सी स्किल्स हैं सर जो युवाओं को अभी के वक्त में डेवलप करनी चाहिए और ताकि इससे वो आपके फुटप्रिंट्स पर चल सके?
1: बिल्कुल, ये जो संताली भाषा है, ये इसका जो टोन है ये दूसरे भारतीय भाषा से थोड़ा अलग है, तो इसीलिए संताली का जो लिखन है वो अलची की स्क्रिप्ट में हो रहा है, क्योंकि दूसरा जो स्क्रिप्ट है देवनागरी रोमन या बंगाली या इसे उड़िया, इस स्क्रिप्ट में संताली का टोन ठीक से नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए अलची की लिपि सीखना जरूरी है और संताली भाषावासी के लिए, और इसके लिए इसके साथ साथ भाषा को आगे बढ़ने के लिए
0: जी सर
1: अभी जो एडिटिंग स्किल सीखना चाहिए, डीपीपी स्किल सीखना चाहिए, उसके साथ साथ सोशल मीडिया की उपयोग करने के लिए कंपोजिंग एडिटिंग इसको भी सीखना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया के स्तर पर ये स्क्रिप्ट ये भाषा आगे बढ़ पाए।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए भी। वंस अगेन आपको बधाई देना चाहेंगे आपकी सभी उपलब्धियों के लिए, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे आपका पसंदीदा गीत भी जो आप अभी सुनना चाहेंगे।
1: तो ये जो मेरा पसंदीदा गान, क्योंकि ये जो आज का जो डे है ये युवाओं के स्किल के लिए है, तो युवाओं के लिए जब मैंने इन एज का था तो उस समय मेरा जो फेवरेट गाना था वो है कुछ कुछ होता है। अच्छा। तो ये गाना आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल सुनाएंगे सर, और एक बार फिर आपको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू
0: सर। तो चलिए सुनते हैं श्रीपति जी का पसंदीदा गीत, बहुत ही खूबसूरत गाना है, कुछ कुछ होता है फिल्म का टाइटल ट्रैक, और आवाजें हम सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम, जहां अब एक बार फिर बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों खास है आज की ये तारीख यानी 15 जुलाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर उसे लॉन्च किया गया था आज ही के दिन, और साल था वो 2006। अमेरिकी टिम्बर मर्चेंट विलियम बोइंग ने आज ही के दिन की थी दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग की शुरुआत, और साल 1926 में आज ही का दिन था वो जब मुंबई यानी तब के बम्बई में पहली मोटर बस सेवा की हुई थी शुरुआत, जिसने आगे चलकर माया नगरी के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा ही बदल दिया था। जाना है कहीं नहीं, रुक कर रहना है यहीं, क्योंकि गपशप रहेगी जारी आपकी और मेरी इस अगले सॉन्ग के बाद भी।
1: अरे अरे रुक जा।

अरे अरे अरे रुक जाओ ना जी।

कुमार स्वामी कामराज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ जो एक दूरदर्शी राजनेता के तौर पर जाने गए, आज यानी 15 जुलाई को उनका भी जन्म दिवस है। भारतीय राजनीति में जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, आज ही के दिन साल 1903 में तमिलनाडु के विरुधु नगर में उनका जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर सिर्फ 16 साल की उम्र में कुमार स्वामी जी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे और फिर नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। मरणोपरांत साल 1976 में कुमार स्वामी कामराज जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और आज भी वो अपनी बेदाग और सादगी से भरी शख्सियत के लिए याद किए जाते हैं।

15 जुलाई यानी आज की तारीख की हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले, तो यहाँ पर जिक्र करना बिल्कुल जरूरी है भारतीय सेना के उस महान अफसर का जिनकी पहचान होती है नौशेरा के शेर के रूप में। जी हाँ, इसी नाम से मशहूर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी की बात हो रही है यहाँ, जिन्होंने देश के बंटवारे के समय अपने धर्म से ऊपर देश को चुना और पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बनने का ऑफर भी पल भर में ठुकरा दिया। आज यानी 15 जुलाई को ही उनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में, और पाकिस्तान के साथ हुए पहले युद्ध के दौरान 3 जुलाई 1948 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में देश के लिए लड़ते हुए आप शहीद हो गए थे। उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और बड़े आदर के साथ उन्हें नौशेरा का शेर कहकर सम्मान

एक पते की बात बताऊं आपको। बीमारियां और उनसे जुड़ी परेशानियां कभी बताकर नहीं आती, लेकिन ऐसे में हमारी सावधानी और पहले से की गई तैयारी बड़ी काम आती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी एक ऐसी ही तैयारी है जो देश के हर नागरिक, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। बाजार मूल्य से 50-90% तक कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां इस योजना के तहत मुहैया करवाई जाती हैं और इसके लिए देश भर में 18,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र अभी काम कर रहे हैं। साल 2027 तक ये संख्या बढ़ाकर 27,000 करने का लक्ष्य भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है। खास बात यह है कि जन औषधि केंद्रों से दवा खरीदने के लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, बस आपके पास संबंधित और रजिस्टर्ड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप के जरिए आप अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र का पता और रास्ता जान सकते हैं और वहां मिलने वाली दवाइयों की उपलब्धता और उनके दाम भी आसानी से मालूम कर सकते हैं।

इसी के साथ म्यूजिकल दिल लगी के आज के सफर को हमें थामना होगा यहीं। मैं मिलूंगी आपसे ठीक 10:30 यानी 10:30 पर। दिल का मेल बॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर, जिस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य कैबिनेट के सदस्यों और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रूपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। राज्य के योगदान को मिलाकर अगले साल मार्च तक पंचायतों के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के अंतर्गत नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल है। उन खनिजों में मोबिल्डेनिम, ग्रेफाइट, ग्लाइकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटैश, लिथियम, सीजियम और रूबीडियम शामिल है। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से

0: 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक की शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 100 अधिक अंक की वृद्धि के साथ 77,192 पर, जबकि निफ्टी 33 अंक बढ़कर 24,085 पर था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सी फेरर फर्स्ट पहल शुरू की है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। वहीं फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also come into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey. Union Minister of Coal and Mine, G. Kishan Reddy, will launch the 8th tranche of auction of critical and strategic mineral blocks in New Delhi today. Ministry of Mines has said that it comprises 20 critical and strategic mineral blocks spread across 9 states, including 13 newly identified blocks and 7 blocks being offered under the second attempt. The mineral portfolio includes molybdenum, graphite, glauconite, rare earth elements, titanium, tungsten, potash, lithium, cesium and rubidium. These minerals are critical for clean energy, advanced manufacturing, fertilizers, defense and other strategic sectors. Union Port Shipping and Waterways Minister Sarbanand Sonowal today expressed grief over the demise of veteran Assamese actress Purabi Sharma. In a social media post, the minister said that her invaluable legacy in Assamese theatre and cinema will be forever cherished. Mr. Sonowal added that her demise is an irreparable loss to Assam's cultural fraternity. Domestic benchmark indices opened higher this morning amid positive global cues after gains across Wall Street and Asian markets. Sensex opened at 77,192, up more than 100 points, while Nifty started the session at 24,085.85, gaining 33 points.

0: Sector-wise, financial and banking stocks led the gains in early trade, while information technology shares remain under pressure. The United States has resumed the blockade of Iranian ports in response to Tehran's recent attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. During an interview with TV news channel, U.S. President Donald Trump said that the Hormuz is open if people want to go through it, but not for Iran. Mr. Trump also warned Tehran as saying that U.S. will knock out all power plants and bridges of Iran unless they get to the table and negotiate. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, attacked weapons and parts storage facilities in Bahrain in large-scale strikes. The IRGC also claimed that it destroyed or damaged a number of drones by attacking the ramp where the MQ-9 drones were deployed at the Ali Salem base in Kuwait. In men's cricket, India defeated host England by 6 wickets in first one-day international of 3-match series at Edgbaston in Birmingham last night. With this, the men in blue now lead the series 1-0, ending their losing streak in international cricket. Opting to bat first, England got bundled out for 258 runs in the 48th over. Joe Root scored the highest 76 runs and remained not out. For India, Akshar Patel bagged 4 wickets. In reply, Shubman Gill led side comfortably overhauled the target in the 46th over, riding on skipper's fabulous innings of 80 runs, after which he got retired hurt. Moreover, Washington Sundar and Akshar Patel both crossed the half-century mark and finished the match being unbeaten. Akshar Patel was adjudged bad player of the match for his all-round performance. In football, Spain stormed into the final of FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas, US last night. Mikhail Oyarzabal opened the scoring in the 22nd minute before Pedro Porro made sure of the win with a brilliant second goal. In another semi-final clash, defending champions Argentina will face England tonight at Atlanta Stadium. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. India time on Thursday. IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely rainfall over Odisha today. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक समझौते पर ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग

0: 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। विश्व दर्पण के लिए मैं मृगनयनी पांडे।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता देश के आईटी पेशेवर, वित्तीय, शिक्षा और व्यावसायिक सेवा क्षेत्रों के लिए नए रास्ते खोलेगा। श्री गोयल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को 5 साल तक दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देकर साझेदारी और मजबूत करता है, जिससे भारत के कार्यबल की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होती है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सार्थक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार के महत्व पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला की मजबूत सुनिश्चित करने के लिए भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन की यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारेनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की परिवर्तनकारी क्षमता पर अपने विचार साझा किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए यह रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
2: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रावलकोट ईदगाह मैदान में सैकड़ों स्कूली बच्चे अपने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ एकत्र हुए। उन्होंने कब्जे वाले इलाके में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई की निंदा की। सोमवार को बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों ने सफेद झंडे लहराए और पाकिस्तान सेना के विरुद्ध बयानबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इनके विरुद्ध पाकिस्तानी सेना ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई नागरिकों की मृत्यु होने की खबर है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 से हरा दिया। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into force. Pact unlocks duty-free access for nearly 99% of Indian exports. US resumes blockade of Iranian ports in response to Iran's attacks on commercial ships in Strait of Hormuz. Hundreds of school children in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir protest against Pakistani military's atrocities. In football, Spain storm into final of FIFA World Cup after 2-0 victory over France, Argentina to take on England in the second semi-final tonight. And in cricket, India beat England by 6 in the first ODI of the 3-match series at Edgbaston. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media New Delhi Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
4: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
3: We have more from a correspondent.
5: This agreement has been designed as a people's

न कागज की कश्ती, न चिट्ठी की बात है, ये तो सीधे दिल से दिल की मुलाकात है। तो ईमेल खोलिए, व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, साथ ही चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आने दीजिए। खुल चुका है दिल का मेल बॉक्स, अब अपनी फरमाइशों को जरा पंख लगाकर उड़ने दीजिए। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग इन योर फेवरेट शो, नाम है जिसका दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज हूं आपकी डाकिया। बस फर्क ये है कि आपके ही खत आपको ही पढ़कर सुनाऊंगी और प्ले करूंगी आपकी पसंद के खूबसूरत ट्रैक्स भी। तो देर आपको करनी है नहीं, जल्दी से लिख भेजना है अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, साथ ही कुछ शेर व शायरी हो जाए तो बस बात ही बन जाए। fmgoldair@gmail.com पर करना है ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज अगर आप भेजना चाहते हैं, तो नंबर है 9868687853।

और फिलहाल चलिए पूरी की जाए आज की पहली फरमाइश जो आई है हमारे पास खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना अनुज आयुषी रमेश चंद्र वर्मा शेख मूसा भाईजान भाई राजकुमार बोडाना की ओर से सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु और मुकेश जगताप भी यही गाना सुनना चाहते हैं।

और मेरे सामने है आपके प्यारे प्यारे ईमेल्स, जिसमें आप ढेर सारा प्यार लिख कर भेज रहे हैं। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन ने भेजा है मैसेज बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, और साथ ही शामिल हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी। और एक छोटी सी प्यारी सी शिकायत भी है कि कल आपका संदेश शामिल नहीं हो पाया था। उम्मीद है आज आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। अगला मैसेज शामिल करते हैं मोताला महाराष्ट्र से, जो आया है विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और ओम कुमार ने भेजा है। लिखते हैं कि दिल में मेरे आज क्या है, ये लफ्जों में कहां बयां होगा, जिसने आंखों को पढ़ लिया वही मेरा राज समझ पाएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी की है इन्होंने, जिसे कोशिश करेंगे हम पूरा करने की बिल्कुल। और अभी फिलहाल शामिल कर रहे हैं अगला मैसेज, जो कि भेजा है सीताराम कांगड़ा जी ने एकता कॉलोनी रोहतक से। सीताराम कांगड़ा जी, माफ कीजिएगा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट इस मैसेज में शामिल हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई अच्छी सी बात अगर आप लिखकर भेजे ना, तो पढ़ने का मजा और कार्यक्रम में शामिल करने का मजा दोगुना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, अगला मैसेज हम खोल लेते हैं नवाब अहमद साहब का। और

0: जो मेरा नाम जमी पर मिटा दिया, उनका था खेल खाक में हमको मिला दिया। उफ, दुख भरी दर्द भरी शायरी है। शबाना भारती, अरहान अहमद और सूफिया नवाब इनके साथ इस मैसेज में है शामिल। बल्ली मारन से आया है ये मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। अगला मैसेज आया है संदीप मक्कड़ जी की ओर से। ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जलंधर से लिखा है और सिर्फ नाम लिखा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, अगला मैसेज शामिल करते हैं जो कि आया है हमारे पास परवेज आलम जी की ओर से। बलमी सिरसिया, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार से लिख रहे हैं और किसी भी गीत में नाम शामिल करवाना चाहते हैं। तो लीजिए, आपका नाम हमने शामिल कर लिया और साथ ही अब अगले गीत की भी बारी आ गई है। बहुत ही प्यारा गीत अब आप सुनने जा रहे हैं लता जी और मुकेश जी की आवाज में, जिसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी काले गांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद सानवी और कल्पना देशमुख ने।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित

0: प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जो दिल और नजर से उतर गए, क्या फर्क पड़ता है वो किधर गए। बदल जाती है जिंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई तुम्हारा तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं रहता। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये मैसेज लिखकर भेजा है सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्यों ने। और इनकी इस बात से मुझे भी गुलजार साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है। तो अर्ज किया है कि तुमने तो कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, तुमने तो कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा। तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। और इसी के साथ एक और मैसेज आया है मनाली हिमाचल प्रदेश से। उनको भी हमसे वैसी हो मोहब्बत जरूरी तो नहीं, एक सी दोनों की हो हालत जरूरी तो नहीं। दिल की चाहत तो कई ख्वाब जगा देती है, हाँ मगर साथ में किस्मत भी हो जरूरी तो नहीं। मेरी तन्हाइयां करती हैं जिन्हें याद सदा, उनको भी हमारी जरूरत हो जरूरी तो नहीं। मुस्कुराने से भी होता है बयां गमे दिल, इस मासूम को रोने की भी आदत हो जरूरी तो नहीं।

और एक और खूबसूरत मैसेज इसी के साथ। ओरी सखी मत पूछ नाम उनका, वो तो मेरी हर सांस में बसते हैं, इस सुहाने मौसम की फुहारों में बस वही मेरे दिल में हंसते हैं। जाकर कह दे कोई उनसे इतना, ये घटाएं अब हमसे झेली नहीं जाती, बिजली चमके तो दिल कांप उठता है, बिन उनके अब ये रातें काटी नहीं जाती। मेहंदी का रंग भी अब फीका लगे, ये सावन का झूला भी सूना पड़ा है, कह दो उनसे कि अब लौट आए, कोई चौखट पर आंखें बिछाए खड़ा है। और ये खूबसूरत सा मैसेज किसने लिखकर भेजा है? बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार जी ने लिखा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। साथ ही शामिल है रामदेवरा से दिनेश चौहान, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। चलिए और अगला मैसेज शामिल करते हैं हम। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ने भी लिख दिया है मैसेज, शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से। चलिए सुनते हैं अगला गाना, और बहुत ही प्यारा गाना है जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है संतोष भाई।

न मोहब्बत न दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दें यूं ही, इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने लिखकर भेजी है ये अच्छी सी बड़ी सी बड़ी गहरी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। और अगला मैसेज आया है विकासपुरी से। एसके खन्ना साहब ने लिखा है कि सुख का आनंद और दुख का समाधान ही जिंदगी है। बिल्कुल सही बात है। और चलिए अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। हेमलता जी का, लालगिरी गोस्वामी, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इस मैसेज में शामिल है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लिख रहे हैं और किसी भी अच्छे से गीत में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। अगला मैसेज आया है कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश की ओर से उत्तम नगर दिल्ली से भेजा है मैसेज, साथ ही लिखकर भेजा है अपना फरमाइशी गीत भी। चलिए अब ईमेल

का रुख कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपके मैसेजेस का अंबार लगा हुआ है, जिनमें से अब अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। ज्यादातर मैसेज मैं पहले ही शामिल कर चुकी हूं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं यहां पर दोहराना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज प्लीज एक ही मैसेज भेजें। उससे क्या होता है ना कि कई सारे मैसेजेस बीच में कहीं खो जाते हैं जो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते, और फिर आप हमसे हो जाते हैं नाराज। तो मिल गया है एक मैसेज गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली शामिल हैं इस मैसेज में, और ये भी किसी अच्छे से गीत में शामिल होना चाहते हैं। अभी अभी आया है आफताब अंसारी जी का भी मैसेज, शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा से लिखा है रियाज मोहम्मद कैफ लुबना। आप देखिए ये मैसेज भी पहले ही शामिल हो चुका है, तो ऐसा गजब मत कीजिए। जो लोग ईमानदारी से एक ही मैसेज भेज रहे हैं उनके मैसेज हम पढ़ पाएं, इतना हमें वक्त जरूर दीजिए। मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता ने भेजा है मैसेज मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से, बिरडी नाना जी लाम से जगह का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज के लिए। और चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। धर्मेंद्र छीपा जी का भोपालगढ़ राजस्थान से लिख रहे हैं, ईशान कपिल और पूजा इसमें शामिल हैं और नाराजगी भी शामिल है भाई। लिख रहे हैं कि ना तो फरमाइश का गीत बजता है ना मैसेज शामिल होता है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही बेहतरीन मैसेज भेज देते हैं पर आप उसे शामिल नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है धर्मेंद्र जी, बस कोशिश हमारी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस शामिल किए जाएं। लेकिन क्या होता है ना, जब एक ही नाम से कई सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो फिर खो जाते हैं आपके मैसेज भी। कलम में जितना जोर है जुदाई की बदौलत है, मिलन के बाद तो लिखने वाले लिखना ही छोड़ देते हैं। सरफरुद्दीन अंसारी ने लिखा है ये मैसेज, कहां से लिखा है ये लिखना शायद भूल गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगला मैसेज हम शामिल करते हैं मधु किरण जी का, और नाम के अलावा आपने भी कुछ नहीं लिखा, ये तो गलत बात है। चलिए अगला मैसेज अजीत जी का मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने की है फरमाइश। वीर मगाम गुजरात से लिख रहे हैं, अजीत भावसार इनका नाम है और प्रमिला भावसार इनके साथ हैं शामिल। तो चलिए इसी के साथ मेरी नजर चली गई है अब घड़ी पर जो कि बहुत तेजी से भाग रही है, तो इशारा मैं समझ रही हूँ घड़ी का कि मुझे अब आपको सुनाना होगा आज का दिल का मेलबॉक्स की फरमाइश की लिस्ट से आखिरी गीत। लेकिन उससे पहले चलिए एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं। ताज मोहम्मद जी ने किया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और किसी भी गीत में शामिल होना चाहते हैं। तो चलिए अगला मैसेज जो अब आप माफ़ कीजिए अगला जो गाना आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म लोफर से, लता जी की मीठी आवाज़ हम सब सुनने वाले हैं। कोहका भिलाई से आई है इसकी फरमाइश, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल ने की है फरमाइश। धमधा ग्राम सुखरी कला से भी आई है इसकी फरमाइश, अमित जंघेल, शकुन आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि ने कहा है ये गाना सुनाने के लिए।

और आप कोशिश मत कीजिएगा एफएम गोल्ड को छोड़कर कहीं भी जाने की, क्योंकि आपसे मुलाकात होगी अब ठीक 11:10 पर। प्रोग्राम होगा तस्वीर और इस गाने के उस पार आप जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर हिंदी और अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर 0 शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, ग्लेनोकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ ही मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं।

0: होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has described today as a defining milestone in India-UK relations. India will host the 12 BRICS Labour and Employment Ministers meeting in Hyderabad from today. The two-day meeting will bring together labour and employment ministers and senior officials from BRICS member countries under India's BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia will chair the meeting. The ministers will deliberate on four priority areas, including advancing social security and formalisation of labour markets and enhancing women's participation and inclusion in the workforce. Uttar Pradesh will celebrate World Youth Skills Day with a grand state-level program in Lucknow today, where Chief Minister Yogi Adityanath will launch several key initiatives aimed at strengthening skill development, employment and entrepreneurship across the state. The Chief Minister will inaugurate a skill development exhibition showcasing innovative technologies, skill-based products and projects developed by industrial training institutes, ITIs, training centres and trainees. Amid escalating maritime security concerns in West Asia, following attacks on two merchant vessels in the Strait of Hormuz, Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarvanand Sonowal, chaired a high-level inter-ministerial review meeting in New Delhi. Mr. Sonowal ordered real-time vessel-by-vessel monitoring and the appointment of a dedicated liaison officer for every affected Indian seafarer in the region. The minister directed the Director General of Shipping to establish a real-time operational dashboard to track every Indian seafarer aboard vessels operating in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman, irrespective of the vessel's flag. India has warned that people's confidence in the United Nations is declining due to the failure to reform the UN Security Council and effectively address global conflicts. Speaking at a ministerial roundtable on making multilateralism fit for the future at the UN, India's permanent representative.

जी हाँ, बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत जगह है सासाराम, और उतने ही प्यारे हैं यहाँ के लोग, साथ ही उनकी बोली के तो क्या ही कहने। बिहार साउथ वेस्ट पार्ट में मौजूद, बिहार के साउथ वेस्ट पार्ट में मौजूद रोहतास जिले के मुख्यालय और प्रमुख शहर की बात हो रही है आज, और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां मैं यानी नाज अब आपको बताऊंगी कि किस मौसम में बनाना चाहिए आपको सासाराम का प्लान। अक्टूबर से मार्च के बीच यानी सर्दियों का मौसम बेस्ट है यहाँ आने के लिए, क्योंकि इस दौरान सुहाने और ठंडे मौसम के बीच आपको घूमने में आसानी होगी। वाटरफॉल्स की खूबसूरती का लेना है असली आनंद, तो चुनिए अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय यानी

चले चलते हैं, चलिए हम भी सासाराम के और नजदीक और बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ तक पहुँचना कैसे है। बाय एयर आने के लिए आप फ्लाइट लेंगे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसकी दूरी सासाराम से सिर्फ 140 किलोमीटर है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो लगभग 150 किलोमीटर दूर होगा सासाराम से। बाय ट्रेन अगर आप प्लान बनाएं तो टिकट बुक कीजिएगा सीधा सासाराम जंक्शन का ही, जो कि नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड रोड पर मौजूद है। बाय रोड अगर जाना चाहते हैं तो ग्रैंड ट्रंक रोड का ही साथ पकड़ेंगे, जो कि अब NH 19 पर मौजूद है।

और जो कि सासाराम को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ती भी है। तो फिर चलिए ठंडी हवा के साथ और काली घटा के संग हम भी चल पड़ते हैं सासाराम के और नजदीक, और साथ में एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक।

0: हर तरफ फैली हरियाली, खेतों में लहलहाता धान है, यहाँ का हर किसान इस माटी का अभिमान है। सादगी, मोहब्बत और अपनापन, बस यही यहाँ की जागीर है। सासाराम की यही तो सबसे सुंदर तस्वीर है। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि सासाराम और उसके आसपास की भूमि बेहद उपजाऊ है, खासतौर पर चावल की खेती यहाँ भरपूर होती है और यही वजह है कि ये इलाका बिहार में धान का कटोरा भी कहा जाता है। मूल रूप से सासाराम को शाह सराय यानी राजा का स्थान कहा जाता है क्योंकि ये अफगान राजा शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है जिनका दिल्ली पर शासन हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में ये शहर सूर वंश की राजधानी था और यही वजह है कि जो सबसे मशहूर जगह है यहाँ की वो है शेरशाह सूरी का मकबरा, जिसकी हर खासियत को जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये अगला ट्रैक।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

शेरशाह सूरी के मकबरे की बात कर रहे थे हम इस गाने से पहले, जो कि सासाराम की एक तरह से पहचान है। एक बड़े सरोवर के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी ही इस मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था। हालांकि ये निर्माण कार्य उनकी मृत्यु के ठीक 3 महीने बाद पूरा हो पाया था। कुल मिलाकर इस मकबरे में 24 कब्रें हैं, जिनमें शेरशाह सूरी की कब्र ठीक बीच में मौजूद है। हिंद इस्लामी वास्तुकला इस मकबरे को देश की सबसे सुंदर स्मारकों में से एक बनाती है, जो कि 8 कोणों या भुजाओं वाला भी आप इसे कह सकते हैं। और कुल मिलाकर इसमें 3 मंजिलें हैं। 122 फीट ऊंचे इस मकबरे तक पहुंचने के लिए लगभग 350 फीट लंबा एक पुल है, जिस पर चलते हुए आप वो यादें बुनते जाते हैं जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

है प्रोग्राम जहां निकले हैं आप सासाराम की सैर पर। तो यहां मौजूद कैमूर हिल्स जाना बिल्कुल वैसा है जैसे सोने पर सुहागा। जी हाँ, लगभग 500 किलोमीटर लंबी विंध्य की पहाड़ियों पर फैला ये इलाका जाना जाता है कैमूर हिल्स के नाम से, जिसका एक हिस्सा रोहतास और सासाराम में भी आता है। यहाँ से होकर बहने वाली सरपीली नदियाँ इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। और यहीं सासाराम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको दर्शन होते हैं माँ तारा चंडी के। देश के 52 शक्तिपीठों में से ये सबसे पुराना शक्तिपीठ है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान खास भीड़ देखने को मिलती है। और इसके बाद यहीं यानी कैमूर हिल्स के पास ही सोन नदी पर बना इंद्रपुरी डैम भी देखने लायक है। और आपको बता दूं कि ये दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज बांध है, जो बहती नदी के शोर के बीच नेचर की खूबसूरती को निहारने का एक बेहतरीन मौका आपको देता है।

सासाराम की एक और मशहूर जगह के बारे में अब आपको बताने जा रही हूँ, जिसे जाना जाता है पायलट बाबा के मंदिर और आश्रम के रूप में। यहाँ सभी धर्मों का संभाव आदर किया जाता है। असल में पायलट बाबा, जिन्हें ये मंदिर और आश्रम समर्पित है, वो सासाराम के ही थे। यहाँ 80 फीट से भी ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति आप देखेंगे, साथ ही भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के भी आपको दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, पायलट बाबा के इस अनोखे मंदिर में आपको सिख धर्म के गुरुओं की भी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी खास जगह होगी ये। और सिर्फ इतने पर ही अपने कदमों को थामिएगा नहीं। क्योंकि रोहतास गढ़ किला भी आपको देखना है, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान है। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। और भी बहुत कुछ है यहाँ सासाराम में, जिसके बारे में बात करेंगे इस अगले ट्रैक के बाद।

0: नेचर लवर हैं आप तो बिल्कुल सही जगह आ पहुंचे हैं। मेरे यानी नाज के साथ बिहार के सासाराम की तस्वीर आपके सामने है, जिसमें नेचर के नेचुरल रंगों की कमी नहीं है। माझर कुंड बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ, जो सासाराम से लगभग 10 किलोमीटर दूर कैमूर हिल्स पर ही मौजूद है। इसके बाद यहीं पर है धुआं कुंड भी, जहां ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज किसी मधुर संगीत सी सुनाई देती है। दूध से सफेद पानी से लबरेज ये झरना बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता है, जहां सुबह को उगते सूरज और शाम को ढलते सूरज का नजारा कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनके अलावा कशिश वाटरफॉल और तुतला भवानी वाटरफॉल भी है यहाँ, जहां आपको जरूर जाना चाहिए। और फिलहाल एंजॉय करना चाहिए मेरे साथ ये अगला ट्रैक, जो हमारे सासाराम के इस सफर को चार चांद लगाने के लिए काफी है।
1: लागा गोरी गुजरिया से

चलते चलते अब चलिए बात कर लेते हैं सासाराम के स्वाद की भी। तो ऑथेंटिक बिहारी कुजीन आप यहाँ पर चखेंगे, जिसमें सबसे स्पेशल है यहाँ का लिट्टी चोखा। बैंगन के चोखे और सत्तू की लिट्टी तो आप पूरे बिहार में कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ सासाराम में आपको मिलेगी यहाँ की फेमस डीप फ्राइड लिट्टी, जिसे तीखी चिकन करी या फिर प्याशी मछली की करी के साथ परोसा जाता है। चना घुगनी और कचरी शाम के समय स्ट्रीट फूड के तौर पर बड़े चाव के साथ खाई जाती है। सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट में आपको मिलता है सत्तू पराठा विद गर्मा गर्म चोखा, दाल पीठा जिसे फरे भी कहा जाता है, और लंच में आप एंजॉय करिए यहाँ की स्पेशल कढ़ी विद बड़ी फुल प्लेट गर्मा गर्म राइस के साथ। मशहूर मिठाइयों की अगर हम बात करें तो खुरमा और बेलग्रामी, लौंग लतिका, फिर अनरसे और ठेकुआ तो है ही, जिन्हें टेस्ट करना आपको किसी भी सूरत में भूलना एकदम मना है। और भूलना नहीं है हमें ये बताना भी कि मेरे यानी नाज के साथ आपको कैसा लगा सासाराम का ये सफर। फिलहाल घड़ी ने कर दिया है इशारा कि मैं लूं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और नमस्कार।

0: अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The India-UK Free Trade Agreement has come into force from today. To celebrate the occasion, the Union Ministry of Commerce and Industry is organizing a nationwide program covering all the states and UTs. The Directorate General of Foreign Trade, in collaboration with the Gems and Jewellery Export Promotion Council and Customs Authority and other stakeholders, will organize a flag-off program at the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata this afternoon, in which export consignment will be sent to United Kingdom to commemorate the initiation of India-UK Free Trade Agreement. In this regard, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has written an article in an English daily. He said the FTA will create unique opportunities for the businesses while further accelerating Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047. He noted that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Mr. Goyal said the agreement will benefit women, farmers, youth, MSMEs, innovators, professionals and fisherfolk, creating various opportunities. He also assured that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by placing them in the sensitive list, and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. Mr. Goyal expressed optimism that more than 75,000 Indian professionals and over 900 companies are expected to be benefited from the agreement. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of FICCI, Anand Swaroop, has said the agreement will go a long way in enhancing India's participation in the global value chains and encouraging innovation-led growth. Mr. Swaroop congratulated Prime Minister Narendra Modi on the operationalization of the India-UK CETA. He said it will also help enhance the competitiveness of Indian industry. ASSOCHAM President Nirmal Kumar Minda said the agreement marks a historic milestone in India's FTA journey, bringing together two of the world's oldest democracies through a comprehensive free trade partnership. He said the agreement is expected to significantly benefit textiles, leather, marine products, gems and jewellery, engineering goods and chemicals sectors. Chairman Trade Promotion Council of India Mohit Singla said the landmark agreement opens a new chapter of opportunity for the Indian exporters. The United States has resumed the blockade of Iranian ports in response to Tehran's recent attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. During an interview with a TV news channel, US President Donald Trump said that the Hormuz is open if people want to go through it, but not for Iran. Meanwhile, New Delhi says it is closely following the developments in West Asia, following the renewed escalations of tensions. Briefing media in New Delhi, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for a safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz. In a related development, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, has launched a comprehensive Seafarer First initiative to safeguard Indian seafarers operating in the conflict-affected region. In FIFA Cup football, Spain stomped into the final, stunning France by 2-0 in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas last night. In the other semi-final, defending champions Argentina will face England at Atlanta Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% higher in the forenoon session today. The Sensex rose 495 points to 77,550, while the Nifty gained 139 points to 24,191 when reports last came in. The Met Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today, while in eastern and northeastern states, including Chhattisgarh, there is a forecast for heavy to very heavy rainfall till tomorrow. Hot and humid weather conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, coastal Karnataka, north interior Karnataka, Punjab, Rayalaseema, and Uttar Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

0: London. नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में। आज आपके स्वागत सत्कार में हैं हम, तो स्वीकारें मनीषा
1: और रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
0: जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप सुन रहे हैं। तो कार्यक्रम का आगाज और अंदाज बढ़े आगे, उससे पहले बता दें आज का प्रश्न क्या है आपके लिए। रश्मि जी बताएंगे आप?
1: आज आपको बताना है मनीषा कि कौन सा काम करते वक्त आपको सबसे ज्यादा बहाने याद आते हैं, ये बताइए जरा। भाई अक्सर हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें काम करना तो पसंद है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं पसंद होते, तो वो कौन से ऐसे काम हैं कि भाई आपको नहीं अच्छा लगता, फिर एकदम से कुछ ऐसा होता है कि उसको काम को ना करने से पहले ही हम असमर्थता जता देते हैं। तो जवाब लिख भेजिए अपना fmgoldga@gmail.com पर और मौका दीजिए दूसरों को भी मुस्कुराने का।
0: बिल्कुल।
2: एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन,

0: इस खूबसूरत सी आवाज में लता मंगेशकर की रेशमा और शेरा फिल्म से सुन रहे थे आप ये गीत। और साथियों, आपको पता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने कि कौन सा है हमारा आज का प्रश्न, और वो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए सबसे ज्यादा बहाने आपको याद आते हैं। और आपको बताना है fmgold@gmail.com पर, fmgold@gmail.com। याद रखेगा, आपके संदेशों की प्रतीक्षा है। रश्मि जी, आप क्या कहते हैं बारे
1: जी
0: में?
1: मैं देख रही हूँ कि बड़ी मीठी मीठी वाणी में आप बोल रही हैं, तो है ना, तो मीठा बोलना बहुत जरूरी होता है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल तो दोस्तों आषाढ़ का महीना चल रहा है, और इस मौसम में बारिश की आंख मिचौली से हम सब प्रभावित हो रहे हैं। और कहीं बारिश हो रही है तो कहीं उमस की तपिश ऐसी ही शीतलता का एहसास करा दे हम आपको, तो कैसा रहेगा?
0: शीतलता, ये शब्द इतना शीतल है कि इससे ठंडी जुबान जो हमारी होती है उसमें अगर ये शीतलता आ जाए तो कोई भी मौसम हो, हर स्थिति में हमें उस शीतलता का एहसास मन में हमेशा होता है ना?
1: जी, वो तब होता है जब आप मीठे मीठे बोल बोलते हैं। हाँ। भाई बोलो ऐसे कि मन ना दुखे और सुनने वाला फूल सा महके, है ना मनीषा?
0: हाँ, हाँ।
1: और हम तो यही कहेंगे कि मीठे बोल बोलने से कोई मोल भी नहीं लगता।
0: हाँ।
1: और इसमें जो दिल के धागे होते हैं वो खुल जाते हैं।
0: बहुत सुंदर। और मुझे एक बात याद आ रही है रश्मि जी, जो जी। हमारे पुराने जो संत कवि होते थे उनकी बातों में एक पंक्ति होती थी जो हम सभी को याद होगी, जो हमने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी और को अपने जीवन में उतारी भी होगी। और वो संत कबीर दास जी की बानी है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आप हूं शीतल होए।
1: यानी वाणी मीठी और विनम्र हो तो सुनने वाला वशीभूत हो जाता है, और यही मिठास भी जो अगर हमारी जुबान में हो तो दूसरों के साथ साथ बोलने वालों को भी बहुत सुकून का एहसास होता है।

0: जी बहुत बढ़िया। और जो ये गीत तुमने सुनवाया ना मनीषा भाई, इसमें कहा था रात गंवाई सोए के दिन गवाया खाए और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदली जाए, उसमें तो कहा ही गया। तो ये तुम्हारे जो प्रश्न है उससे संबंधित था
1: बिल्कुल
0: कि भाई खाने पीने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ जिंदगी बच्ची बल्कि अच्छे कर्मों में करके जीवन को सार्थक बनाना
1: और साथ ही
0: चाहिए।
1: ये संदेश भी था कि मीठे बोल बोलने से कितने फायदे होते हैं।
0: जी
1: तो ये जो खूबसूरत सा गीत था रश्मि जी, हमने अपने दोस्तों को जो सुनाया वो अखियों के झरोखों फिल्म से था और इसे हेमलता और जसपाल ने गाया था।
0: जी
1: और अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जो आज का प्रश्न है हमारे साथियों के लिए कि भाई कौन सा काम ऐसा है जिसे करते समय आपको सबसे ज्यादा बहाने याद आते हैं। और
0: ईमेल
1: रश्मि
0: है
1: जी,
0: fmgoldga@gmail.com
1: हाँ, और
0: पर
1: रश्मि जी बहुत सारे संदेश आ चुके हैं
0: तो पढ़ दीजिए उन संदेशों को।
1: जिसमें पहला संदेश नवीन भाटिया जी का आया और उन्होंने कहा है कि जब उनके पेरेंट्स दूध लेने के लिए उनको बोलते हैं या फिर सब्जी लाने जाने के लिए बोलते हैं तो उन्हें उस समय बहाने याद आते हैं, क्योंकि ये काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: और नवीन जी सबसे पहले हमेशा संदेश करते हैं। दूसरा संदेश हमारे पास आ गया है महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ का, और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो काम करना अच्छा लगता है, हमेशा काम करने के बहाने ढूंढता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहाना बनाना अच्छा नहीं लगता, और इंसान को काम करते रहना चाहिए, जो नहीं कर सकते उसे मना कर देते हैं। बहुत खूबसूरत बात
1: बहुत
0: उन्होंने कही
1: अच्छी
0: है।
1: बात उन्होंने बताई।
0: जी
1: और वैसे ही एक संदेश आया है, ये है उग्रसेन यादव जी का, और उन्होंने कहा है मुझे बाजार से कुछ भी लाना अगर होता है तो मैं बहाने ढूंढता हूं, क्योंकि मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: जी और एक और संदेश हमारे पास आया है, उमेश कुमार ख्याल से कह रहे हैं कि जब घर का काम करना होता है तो ऑफिस के काम का बहाना बना देता हूँ कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। भाई ये क्या बात हुई उमेश जी, घर में भी थोड़ा मदद कर दिया कीजिए है ना। और भाई जगन कह रहे हैं कि हमें पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। भाई हम कहेंगे कि आप हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए जनाब, हमने आपसे सवाल पूछा है कि कौन सा काम ऐसा है जिसे करते हुए आपको बहाने बनाने पड़ते हैं। fmgoldga@gmail.com और हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाबों का। मनीषा
1: बिल्कुल, अब हम रुख करते हैं अपनी अगली दिशा की ओर हमारे कार्यक्रम में, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई खास दिवस लेकर आता है। तो आज का जो खास दिन है वो है 15 जुलाई, यानी आज के दिन की ये खास बात है दोस्तों कि आज है विश्व युवा कौशल दिवस।
0: जी काम की बात हो रही थी और तुम कौशल की बात कर रही हो।
1: युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए इस दिन को और सशक्त बनाने के लिए हम मनाते हैं। और जानते हैं आज के परिवेश में, क्योंकि हम तकनीक और डिजिटल ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं और ये मांग हमारे समय की भी है कि इसमें हम और अपने आप को मजबूत करें।
0: और मनीषा आज का दिन याद दिलाता है हमें भारत रत्न के कामराज की, उनकी आज जयंती है, और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और अभावग्रस्त बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाने वाले थे श्री के कामराज, और जन नेता के रूप में हमेशा याद करते जाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही है एक और विशेष दिन, जयंती पुण्यतिथि,
1: वो है स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और संविधान सभा की सदस्या दुर्गाबाई देशमुख की जयंती।
0: जी
1: और जो कि महिला शिक्षा, सामाजिक न्याय और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत जानी जाती हैं हमारे समाज में।
0: जी
1: और इतिहास की तरफ हमने रुख किया, लेकिन अब रश्मि जी रुख करते हैं आज की प्रश्नावली के बारे में, फिर से याद दिला देते हैं अपने साथियों को, और वो बहुत ही मजेदार है आज का प्रश्न कि कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए आपको सबसे ज्यादा बहाने याद आते हैं, बशर्ते आप हमारे साथ उसे साझा करें fmgoldga@gmail.com पर।

जी हाँ, ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे प्यार किए जा फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। और रश्मि जी, हमारे पास बहुत सारे संदेश आ चुके हैं, उस

0: में से कुछ श्रोता साथी बहुत बेचैन हैं कि हम उनके संदेश क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं, और उसमें हमारे एक साथी हैं, वो हैं सुरेंद्र एम मित्तल जी दिल्ली से, और उन्होंने हमारा जो प्रश्न है आज का प्रश्नावली उस पर तो कुछ कमेंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने संदेश में एक बात कही है अपने दिल की कि मक्कार और स्वार्थी लोगों से उन्हें इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता, बस मजबूरी होती है तो वो करते हैं
1: जी।
0: और अगला पत्र आपके पास होगा
1: जी। सुदर्शन मुखी कह रहे हैं कि भाई हमें जो है काम करना पसंद है और बहाने काम करने के ढूंढने चाहिए, काम ना करने के नहीं। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में पड़ होएगी बहुरी करेगा कब। और लोग सुंदर चेहरा अक्सर भूल जाते हैं, पर सुंदर भूल जो बोले हैं वो कभी नहीं बोलते, सुंदर जो कार्य हैं वो कभी नहीं बोलते।
0: बहुत सुंदर अच्छी बात जी, जी। बिल्कुल।
1: और इसके अलावा हमारे साथ गौरी शंकर जुड़ गए हैं नागलोई से, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे काम करवाता है और टाइम पर पैसे नहीं देता तो उसे टालने के लिए आनाकानी करनी पड़ती है, जबकि वो समझ जाता है लेकिन कुछ आदमियों की आदत होती है तो वो मुश्किल से ही सुधरती है। बिल्कुल सही बात गौरी शंकर जी की।
0: और एक और संदेश है जिसमें इन्होंने सिर्फ अपने मन की बात लिखी हुई है, चरण दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ कई साथी हैं जिसमें सुशील शर्मा जी उनके साथ हैं जिनका आज जन्मदिन है जी, बहुत बधाई। हमारे रेडियो परिवार के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो आज का प्रश्न है कि कौन सा काम करते हुए आप बहाने याद करने लगते हैं, आपको बताना है fmgoldga@gmail.com पर
1: जी। और हमारे साथ कामायनी जुड़ गई हैं, वो कह रही हैं मुझे फोन पर बात करना कम पसंद है, तो जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं फोन नहीं उठाती हूँ और ना करती हूँ, हालांकि ये अच्छी आदत नहीं है, बहुत लोग रूठ भी जाते हैं लेकिन बाद में मैं उन्हें मना देती हूँ। तो देखिये अभी आजकल तो फोन ना करना, तो फोन से थोड़ा दूर रहने की सलाह सभी लोग आप दिए देते हैं, पर हाँ एक संतुलित तरीके से फोन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल जमाना है जुड़े रहने का।
0: बिल्कुल। और बातों का गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक संदेश।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और दोस्तों हम सभी की ना कोई आदत भी जरूर होती है, जैसे किसी की आदत संगीत सुनने की होती है काम करते हुए, किसी की किताबें पढ़ने की, और किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है। लेकिन जानते हैं आदतें हमारी किसी भी तरह की हों बदल सकती हैं, जैसे चाय की जगह हम कभी कॉफी पीने की आदत में पड़ सकते हैं, है ना। पुराना मोबाइल हो तो उसे नए में बदल सकते हैं, और कई बार लोग भी जीवन की भागदौड़ में पीछे छूट जाते हैं यानी हमारी आदत से गायब हो जाते हैं। रश्मि जी आपके क्या विचार हैं?
1: हम कहेंगे आदतें तो बदल सकती हैं वो ठीक है दोस्तों, लेकिन ज़रूरतों का क्या, यानी ज़रूरत भरोसा सहारा वो बहुत ज़रूरी है। किसी का हमारे लिए बेहद खास होना यानी आपके जीवन में आदत की तरह नहीं ज़रूरत की तरह शामिल हो, ऐसे गुण और ऐसे जो अपने अंदर इस तरह की मुकम्मल कीजिए कि भाई दूसरे का तो दिल जीतना ही है।
0: वाह बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। और पक्के रिश्ते वो होते हैं दोस्तों जो साथ रहे ना रहे पर होते सदा साथ हैं, वहाँ भावनाओं की जो डोर होती है ना वो अदृश्य होती है पर साथ में पक्के तरीके से बंधी होती है।
1: तो मनीषा, जब मुश्किल में कोई आपको याद करे, जब कोई आपसे कोई सलाह लेना चाहे या उसके ऊपर कोई परेशानी आए, तो उसकी ज़रूरत अवश्य बने। यही सबसे बड़ा फ़र्क है सिर्फ मौजूद रहने का या किसी की ज़िंदगी में मायने बनकर उसके बीच में उसकी मदद करने का।
0: बिल्कुल, तो कोशिश हो कि हम ऐसे बने जिन्हें

0: आजाद इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप गीत। और साथियों आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। और घर आंगन कार्यक्रम की एक विशेषता है जो हमने शुरू की है आपके लिए प्रश्नावली के रूप में। और आज का प्रश्न है आपके लिए जिसके संदेश आपको भेजना है fmgoldga@gmail.com पर। और वो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले बहाने याद आ जाते हैं।
1: और कुछ बहाने भी आए हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आई हैं। तो हमारे पास संदेश आ चुका है, संदीप अरोड़ा शास्त्री नगर से कह रहे हैं कि मैं अक्सर ऑफिस से घर पहुंचकर घर के हर काम में पूरा सहयोग देता हूं, फिर वो चाहे खाना बनाने का ही काम क्यों ना हो, बल्कि फैमिली को टाइम देने का सही समय यही है। काम भी हो जाएगा और समय भी मिल जाएगा, बीवी भी खुश और मैं

0: खुश भाई, बहुत खूबसूरत ये संदेश, घर के काम में हाथ बटाना कोई बहाने ना बनाना, इससे ज्यादा कोई और क्या चाह सकता है।
1: बिल्कुल। और एक संदेश है जो बिल्कुल अलग जवाब के साथ है, वो है कृष्णा कुमार गुप्ता का, और ये महोबा उत्तर प्रदेश से हमें उत्तर भेज रहे हैं। और वो कहते हैं कि देखिए, बहाना बना सकते हैं हम, लेकिन जब रेडियो का कार्यक्रम हम सुन रहे होते हैं उस दौरान हमें कोई भी बहाना याद करने की भी जरूरत नहीं होती, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सोनाली कह रही है कि मुझे बेवजह घूमना या बाहर जाना पसंद नहीं है, इसलिए जब कोई ऐसा मौका आता है तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। इसके अलावा मुझे फोन पर ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं, तो इसी वजह से दोस्तों के बीच में कम लोकप्रिय हूं, लेकिन कम और अच्छी बातें करके रिश्तों की गरिमा बनाए रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे और साथी हमसे जुड़ गए हैं। आप हैं भाई, वाह, बहुत दूर, जिला बीड़ अंबाजोगाई महाराष्ट्र से दीप्ति वैद्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो कह रही हैं, काम तो करते रहना चाहिए, काम करते रहो तभी तो काम के रहोगे, सीधी सी बात है। फिर भी मुझे भीड़ में जाके खरीदारी करना अच्छा नहीं लगता। बात तो सही है और अच्छा संदेश। इसके अलावा शीशपल अकेला गाजियाबाद से जी कह रहे हैं कि मुझे काम करने पर विश्वास है, बहाने बनाने पर नहीं। बहुत बढ़िया भाई, हमारे श्रोता कितने समझदार है ना मनीषा, सारे कर्मठ है, काम काजी है और बढ़ चढ़ के काम करने में विश्वास रखते हैं, तभी तो हमारा देश प्रगति के पथ पर चल सकता है,
1: आगे जा रहा है। बिल्कुल। और समय के साथ चलना, आगे बढ़ना ही तो हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: तो समय ना गंवाते हुए आगे चले अगली जानकारी के ऊपर।
1: बिल्कुल। बहुत सी बातों के लिए अब डिजिटली हम बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, तो ऐसी चीजों के लिए हमें एक जानकारी आपको देना है डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए करियर के बारे में, क्योंकि डिजिटली आजकल हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, NCS पोर्टल 2015 से वहां चलाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म पता क्या है? नेशनल करियर सर्विस पोर्टल।
0: हम कहेंगे डिजिटल पर डिपेंडेंस तो बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि इससे बहुत सहूलियत हुई है मनीषा, क्योंकि जब आप डिजिटली कनेक्टेड होते हैं तो बहुत कम समय में बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। देखिए, पूरा देश, पूरा विश्व आज एक दूसरे से जो है ध्वनि अदृश्य तरंगों से जुड़ा हुआ है, और ऐसा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जो तुमने बताया, इस पे नौकरी, करियर और कौशल विकास की दुनिया में जो लाखों युवाओं के लिए ये नई उम्मीद लेकर आता है NCS, और ये नौकरी देने वाले नियोक्ताओं, नौकरी तलाशने वालों के लिए और काउंसलर और प्रशिक्षण संस्थाओं को एक सीधे मंच पर जोड़ता है। और NCS सिर्फ नौकरी ढूंढने का पोर्टल नहीं है, बल्कि ये करियर के लिए काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटर्नशिप, रोजगार मेले और साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी देता है।
1: बिल्कुल। पोर्टल में आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं दोस्तों, अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार अवसर वहां सकते हैं। वहीं नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी अपनी जरूरत के अनुसार उम्मीदवार को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि देश भर में आयोजित होने वाले जॉब फेयर और भर्ती अभियानों की जानकारी और सीधी भर्ती का मौका आपको यहां सीधे सीधे मिलता है। इसलिए अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो NCS पोर्टल की वेबसाइट www.ncs.gov.in पर आप विजिट भी कर सकते हैं।

0: यकीन इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे आप इस गीत को। और साथियों आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम गोल घर आंगन कार्यक्रम आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम। और आपका जो प्रश्न है आज का वो है कौन सा,
1: और उस प्रश्न के बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। जी हाँ, क्या बहाने बनाते हैं आप। और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश गोगिया जी, वो कह रही हैं जब मेरी पत्नी मुझे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाना चाहती है तो मैं बहाने बना देता हूँ। भाई वाह, मुझे लग रहा है अगर वो शो सुन रही है घर आंगन मनीषा तो वो जरूर जान गई होगी कि गोगिया जी क्या करते हैं ना, बहाने बनाते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी, वो कह रहे हैं सुबह चाय पीने के बाद जब मैं सब्जी सफाई वगैरह करता हूँ सब्जी की तो मैं रोज जो हूँ व्यायाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, काम भी करते हैं और व्यायाम भी करते हैं तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छी बात है। तो जुड़े रहिए एफएम गोल्ड चैनल के साथ। और एक दो और संदेश भी हमारे पास आ गए हैं, अगर तुम कहो मनीषा तो मैं वो भी पढ़ दूं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ वो कह रहे हैं कि बहाने बनाने, मैं जो बहाने बनाता हूँ वो ये है, कहते हैं कि भाई कभी कहते हैं कि आज तो सोमवार है आज काम शुरू करने का मन ही नहीं करता, और कभी कह देते हैं, मैं कह देता हूँ कि आज मेरा जो दिमाग है वो मेंटेनेंस मोड में है।
0: अरे वाह।
1: तो कहते हैं इसी तरह के मैं बहाने बनाता हूँ। और आप हैं विनय मयूर विहार से। और एक और हमारे साथ श्रोता जुड़ी हैं सुरभि, वो कह रही हैं कि भाई मैं क्या करती हूँ कि कभी ऐसे कह देती हूँ कि पहले मैं टेबल साफ कर लूँ फिर मैं करूँगी, इस तरह के मैं बहाने बना देती हूँ काम करने के, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं मुझे काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे मजेदार संदेश,
0: ये बड़े ईमानदार से बहाने थे सुरभि के। और देखिए हम बहानों की बात तो करते रहेंगे लेकिन कुछ बात सावधानियों की भी कर लेते हैं
1: जी,
0: क्योंकि रश्मि जी एक जो आदत है या जरूरत है वो हमारे साथ अब हमेशा जुड़ गई है और वो है मोबाइल की आदत या मोबाइल की जरूरत
1: जी।
0: और मोबाइल का प्रयोग करते समय हमें हमेशा इस बात की जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है कि उसके डू और डोंट्स क्या हैं, यानी कि मोबाइल रखते समय, मोबाइल को चार्ज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आप करेंगे दोस्तों तो वो परेशानी का सबब बनती है या बन सकती है, इसलिए हम आपको हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं मोबाइल चार्जिंग से जुड़ी, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है 24 घंटे हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, वो चार्ज करते हैं, चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो मोबाइल को याद रखिए, अपने तकिए के नीचे कभी भी रख कर चार्ज करते मत रहिएगा और उसे रात भर चार्जर में लगा कर मत छोड़िए। और इसी तरह मोबाइल की जो लिथियम आयन बैटरी है ना वो चार्जिंग के दौरान गर्मी पैदा करती है, ऐसे में फोन को अगर आप किसी भी ऐसी जगह में रखते हैं जहां हवा का आना जाना कम है तो वो जोखिम भरा हो सकता है
1: जी। और मोबाइल चार्जिंग के दौरान हमेशा ओरिजिनल या प्रामाणिक चार्जर का इस्तेमाल करें और क्षतिग्रस्त केबल या ढीले चार्जर का उपयोग भी न करें। जब फोन असामान्य रूप से गर्म होने लगे तो चार्जिंग तुरंत बंद कर दें और चार्जिंग के दौरान फोन में के प्रयोग से भी बचें। कई बार ऐसा होता है कि आप लगा भी देते हैं चार्जिंग में, इस्तेमाल भी करते हैं, और सबसे जरूरी जब उपयोग ना हो तो चार्जिंग स्विच भी हमेशा ऑफ करके रखें। ये सारी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मनीषा आगे क्या कहना,
0: मोबाइल को स्मार्ट बनाने के साथ साथ रश्मि जी हमारी सुरक्षा भी जरूरी है, वही असली स्मार्टनेस है। और ध्यान रहे फोन को फुल चार्ज करें लेकिन स्वयं की सुरक्षा को कभी भी डिस्चार्ज ना होने दें।

0: और मनीषा इस बीच एक और संदेश दिग्दर्शन मेरठ कैंट से कह रहे हैं, मेरा नाम दिग्दर्शन है, यदि मुझे घर में कुछ काम बताया जाता तो समझो बस वो हो ही गया, बहाने बनाने का कोई मतलब ही नहीं उठता, वरना घर में क्लेश हो जाता है, पत्नी चैन से बैठने नहीं देती। पर ये आपकी अच्छी आदत है, इसे बनाए रखिए, काम करते रहिए, कामकाजी बने रहिए, कर्मठ बने रहिए, तभी तो अच्छी सब जगह अच्छाई फैलेगी। और भाई काम करना बहुत जरूरी है ना।
1: हाँ, और जमाने को दिखाना है इस फिल्म से। आप इस अंतिम गीत को सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम में आशा रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी के आवाज में। इसी के साथ हम इस गीत के साथ आपको यहीं छोड़ रहे हैं और जाने की अनुमति लेते हैं आपसे
0: जी।
1: मनीषा और
0: रश्मि,
1: हमें दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: kangen.
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: Both the countries, India and the United Kingdom.
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का, और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे संगीतकार रोशन की। जी हाँ, रोशन साहब की बात आज हम करेंगे कलाकार बेमिसाल के जरिए, जिनका पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ, जिन्हें रोशन के नाम से जाना गया। एक जाने माने संगीत निर्देशक थे वे। अभिनेता फिल्म निर्देशक राकेश रोशन और संगीत निर्देशक राजेश रोशन के पिता थे, और एक्टर ऋतिक रोशन के दादा भी थे। 1948 से लेकर 1967 तक उन्होंने हिंदी फिल्मों में कमाल कर दिया था। सुपरहिट संगीत उन्होंने दिया। कम उम्र में ही उनका रुझान संगीत की तरफ था और उन्होंने संगीत में शिक्षा भी प्राप्त की थी। अच्छा, उनकी विशेषता हम आपको बताएं तो उनकी विशेषता फिल्म कवाली थी, और इन रचनाओं के लिए उनकी जमकर सराहना भी की गई थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रोशन साहब 50 और 60 के दशक में म्यूज़िक इंडस्ट्री के किंग थे, जिन्होंने बरसात की रात से लेकर दीवार और दिल ही तो है जैसी सफल फिल्मों का म्यूज़िक कंपोज किया था। तो चलिए, फिलहाल हम उनकी बात करेंगे आज कलाकार बेमिसाल के जरिए। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं रुचिका स्वागत करती हूँ आप सभी का।

जी हाँ, कलाकार बेमिसाल के ज़रिए आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन की। और अभी आपने ये जो गीत सुना, उन्हीं के संगीत से सजा हुआ ये गीत था, आशा भोसले जी की आवाज़ में, और फिल्म थी दिल ही तो है। आपको बता दें कि उनका जन्म 14 जुलाई 1917 को हुआ था। कम उम्र में ही उनका रुझान संगीत की तरफ था और उन्होंने संगीत में शिक्षा भी प्राप्त की। 1940 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के कार्यक्रम निर्माता ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने रोशन को एसराज बजाने के लिए भी नियुक्त किया था। हालांकि 1948 में रोशन एक संगीतकार के तौर पर काम खोजने के लिए मुंबई पहुंच गए थे और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी छोड़ दी थी। और वहां पहुंचने के बाद उनका संघर्ष, उनका सफ़र जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया, और इस दौरान संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक भी बने। और 1950 में फिल्म आई बावरे नैन, जिसका संगीत बेहद पसंद किया गया था और ये फिल्म बड़ी म्यूजिकल हिट भी बन गई थी। उसके बाद रोशन साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई फिल्मों में उन्होंने सुपरहिट संगीत दिया। 1960 में वो दौर आया जब रोशन म्यूजिक की दुनिया में दीपक की तरह रोशन हुए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, और फिल्म थी आरती। आपको बता दें कि कलाकार बेमिसाल के ज़रिए आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन की। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 1960 का दशक रोशन साहब के लिए स्वर्ण युग साबित हुआ था। इस दौरान रोशन साहब ने बरसात की रात, आरती, ताजमहल, चित्रलेखा, ममता और देवर जैसी फिल्मों को संगीत दिया। खास तौर से गीतकार साहिर लुधियानवी के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। बरसात की रात, ताजमहल, ममता, अनोखी रात जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनकी जुगलबंदी दिखाई दी। तो चलिए फिलहाल बरसात की रात फिल्म से ये सुपरहिट कवाली आप सभी के लिए। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz।

0: तो हम हैं। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन की। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 1960 के दशक में रोशन के लिए ये दशक एक स्वर्ण युग साबित हुआ था और एक से बढ़कर एक सुपरहिट संगीत से उन्होंने फिल्मों को सजाया। ख़ास तौर से उनकी फिल्मों की बात करें तो 1950 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी बावरे नैन, जिसका संगीत पसंद किया गया था, और उसके बाद 1954 में चांदनी चौक फिल्म का भी संगीत पसंद आया। लेकिन 1960

आठ उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, बरसात की रात फिल्म का जो संगीत था वो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुआ था और पसंद किया गया। वहीं आरती फिल्म थी दिल ही तो है, ताजमहल, चित्रलेखा, भीगी रात, दादी माँ, देवर, ममता, बहू बेगम, नूर जहाँ, अनोखी रात जैसी वो तमाम फिल्में हैं जिनमें रोशन साहब ने संगीत दिया और वो फिल्में सुपरहिट साबित हुई।

आपको बता दें कि संगीतकार रोशन को फिल्म ताजमहल के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड्स भी प्राप्त हुआ था।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुरदनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। आज ओडिशा के लिए मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता CETA और सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक समझौता जो आज से नाफिज हुआ है, भारत और बरतानिया के दरमियान साझेदारी में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब मोदी ने ये बात कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कही। वजीर आजम ने मजीद कहा कि CETA से भारत के किसानों, कारोबारियों और MSMEs को काफी फायदा पहुंचेगा, साथ ही कई फाल शोबों को बरतानिया की मार्केट में ज्यादा रिसाई हासिल होगी। वजीर आजम ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी, पेशा वाराना खिदमात और जिद्दत तराजी में इश्तराक को वसत हासिल होगा और हुनर याफ्ता भारतीय अफराद की ज्यादा आमदोरफ्त में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत और बरतानिया मुश्तरका खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता आज से लागू हो गया है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुरदनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान ये समझौता नाफिज होने की खुशी में तिजारत और सनत की वजारत मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है, जिसके दायरे में सभी रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके आएंगे। गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल हीरे जवाहरात की बरामद को फरोग देने से मुतालिक काउंसिल और कस्टम अथॉरिटी और दूसरे मुतालिका इदारों के इश्तराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है, जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी जाएगी। इस सिलसिले में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजनामा में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि ये जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरिद मौके फराहम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नस्पुल एन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समझौते से मुआशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत के अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। सनती इदारों ने भारत बरतानिया आज़ाद तजारती मुआहिदे को भारत के आज़ाद तजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संगे मील करार दिया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा कि मजकूरा मुआहिदा आलमी वैल्यू चेन्स में भारत की शराकतदारी और इख्तरा पर मबनी तरक्की को फरोग देने में कामयाब और मुआविन साबित होगा। जनाब स्वरूप ने भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तजारती मुआहिदे के निफाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। एसोचैम के सदर निर्मल कुमार मिंदा ने कहा कि मस्कूरा मुआहिदे के जरिए दुनिया की दो सबसे कदीम जमहूरियतें साथ आई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार एक नई तवानाई और जोशो खरोश के साथ योग और आयुर्वेद को आलमी मंजरनामे पर लाई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के सोश्रुतम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आयुर्वेद की कदीम जर्राही को साइंसी मेयारात पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि और ज्यादा भलाई

0: नीज बेहतरी के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीके अपनाने की जरूरत है।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्रणाली की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुष की वजारत आलमी सेहत तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आयुर्वेद के तरीक़ाए इलाज को आलमी मेयार का बनाने के काम को मुस्तहकम किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये नई रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से जोड़ेगी। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। वजीर मुमलिकत मोहतरमा शोभा के साथ मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग में सोशल सिक्योरिटी को फरोग देने, काम करने वाली खवातीन की शराकत दारी में इजाफा करने, आलमी हुनरमंदी को बरूए कार लाने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कानून साजों को बामानी बहस व मुबाहिसे और तामीरी तबादलाए ख्याल के लिए इज्जत मिलती है, न कि ऐवान में रखना अंदाजी के लिए। विधायी गौरव यात्रा के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि राजस्थान की जमहूरी मुजाकरात और तौर तरीकों की एक शानदार रिवायत है। इस यात्रा का अहतमाम राजस्थान कानून साज असेंबली के 75वें साल के मौके पर अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। असेंबली को जमहूरियत का एक स्कूल करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अवामी नुमाइंदों की नुक्ताचीनियों को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। अच्छे कामकाज की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शफाफियत और जवाबदेही वक्त का तकाजा है।
2: लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो, मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेही जनपद भी होना चाहिए। समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए, वही जनपद सफल होगा और वही शासन सफल होगा।
0: भारत ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न होने और आलमी तनाज़ियात पर मुअस्सर तौर पर तवज्जो न देने के नतीजे में इस आलमी इदारे से अवाम का एतमाद उठ रहा है। ये बात अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने मुस्तकबिल के लिए कसीर पहलू वाली हिकमत अमली के मौजू पर वजीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि सलामती काउंसिल मौजूदा तनाज़ियात में बामानी तरीके पर मुदाखलत करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी अमन और सलामती बरकरार रखने की उसकी अहलियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। शिमाल मशरकी भारत के बास हिस्सों बिहार, मगरबी बंगाल और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश होने का अंदाजा लगाया गया है। फीफा आलमी फुटबॉल कप 2026 में स्पेन फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी

0: Over 900 companies are expected to be benefited from it. He also assured that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by replacing them in the sensitive list, and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. Defence Minister Rajnath Singh has said the India-UK trade agreement marks a significant step in strengthening India's economic growth and global partnerships. Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi has said the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, is a landmark step that strengthens the country's economic interests, safeguarding the farmers and agricultural sector. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of FICCI, Anand Swaroop, has said the agreement will go a long way in enhancing India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth. Mr. Swaroop congratulated Prime Minister Narendra Modi on the operationalization of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. He said it will also help enhance the competitiveness of Indian industry.
1: This agreement would open up new opportunities for the Indian industry in both goods and services. The cooperation in innovation, technology and talent mobility will enhance Indian industry's competitiveness. The agreement is a major landmark in India's FTA journey and will go a long way in promoting India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth in both the countries, India and the United Kingdom.
0: ASSOCHAM President Nirmal Kumar Minda said the agreement marks a historic milestone in India's FTA journey, bringing together two of the world's oldest democracies through a comprehensive free trade partnership. He said the agreement is expected to significantly benefit textiles, leather, marine products, gems and jewellery, engineering goods and chemical sectors. Chairman Trade Promotion Council of India Mohit Singla said the landmark agreement opens a new chapter of opportunity for the Indian exporters. The 11th anniversary of the Skill India mission is being observed today. Prime Minister Narendra Modi had launched the mission in 2015 with the aim to equip youth with industry-relevant skills for employment, entrepreneurship and sustainable livelihoods. More from our correspondent.
2: Skill India has empowered millions of youth with industry-relevant skills, creating opportunities for employment, entrepreneurship and nation-building. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has empowered more than 6 crore youth through its various schemes. Over 1 crore youth are getting trained every year under the Skill India mission. Under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 1 crore 65 lakh youth have been trained. As India moves towards Viksit Bharat by 2047, investing in skills remain key to unlocking every citizen's potential and driving inclusive, sustainable growth. With Dipendra Kumar, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
0: The World Youth Skills Day is being observed today. It is celebrated every year on the 15th of July after the United Nations General Assembly's declaration in 2014. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. President Draupadi Murmu has called for the adoption of the latest techniques in Ayurveda for the greater good of society. Addressing the inaugural function of Saushrutam 2026 in New Delhi today, the President said that the central government has established Ayurveda and Yoga on the global stage with renewed energy. She expressed satisfaction that efforts are being made to establish the ancient tradition of Ayurvedic surgery on scientific standards.
3: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा
0: The Union Home Ministry has designated a new special court for the trial of offences investigated by the National Investigation Agency NIA and other scheduled offences under the NIA Act across Maharashtra. The ministry has taken the decision after consultation with the Chief Justice of the Bombay High Court and the Government of Maharashtra. Lok Sabha Speaker Om Birla has said that times are changing rapidly and people now expect responsive, transparent and accountable governance along with responsible public representatives. He said legislative institutions play a vital role in ensuring good governance through transparency and accountability. Mr. Birla was addressing the inaugural session of the Vidhai Gaurav Yatra organised in Jaipur to mark the 75th anniversary of the Rajasthan Legislative Assembly. India has warned that people's confidence in the United Nations is declining due to the failure to reform the UN Security Council and effectively address global conflicts. Speaking at a ministerial roundtable on making multilateralism fit for the future at the UN, India's permanent representative P. Harish said the Security Council has failed to intervene meaningfully in the ongoing conflicts, raising questions about its ability to uphold international peace and security.
4: The Security Council has been ineffective in putting an end to human suffering among the affected populations. The foundational principle for the establishment of the United Nations, maintenance of international peace and security, has therefore been called to question. The underlying reason for inadequacies of the Security Council is evident. An 80-year-old architecture designed for the 1940s is ill-equipped to address contemporary challenges. As a collective, the UN has not been able to move the needle on reforming the Security Council.
0: Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, entered the 36th consecutive day today, with thousands gathering in Rawalkot amid growing unrest. Addressing the rally, Joint Awami Action Committee leader Sardar Aman Khan accused Pakistan of forcibly occupying the region. He said POJK is an occupied territory and not a disputed territory. He vowed that the movement would continue until victory, even if protesters had to sacrifice their lives. The rally witnessed strong anti-Pakistan slogans, with demonstrators pledging to continue their agitation. Meanwhile, the United Kashmir People's National Party strongly condemned the reported killing of 6 civilians by Pakistani security forces during clashes in Rawalkot. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. Furthermore, heatwave conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. According to the Met Department, hot and humid weather conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rayalaseema and Uttar Pradesh till tomorrow. In Bihar, due to heavy rainfall in Nepal's catchment area, the water levels of the Gandak, Bagmati, Kamla Balan and Kosi rivers in Bihar have been rising continuously. In Gopalganj, the Gandak river has crossed the danger mark by 2 centimetres. More from our correspondent.
5: As the water level of the Gandak River continues to rise, 1,83,400 cubic water had been discharged from the Valmiki Nagar Gandak barrage in West Champaran district by 12 noon today. By 11 p.m. last night, the discharge had reached 2,21,000 cubic. In view of the rising river level, the Water Resources Department has issued an alert. It has also cancelled the leave of all engineers until further orders. The district administration had advised people living in nearby areas to remain vigilant and move to safer locations if necessary. Meanwhile, in Shivhar, the rising water level of the Bagmati River has led to riverbank erosion. At several places, water has begun spreading inside both embankments of the river. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
0: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन। समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान। आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
7: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
8: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है, उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
6: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, स्वच्छनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
6: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
6: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
9: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
6: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की

0: भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर से अबूधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आग्रह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का

0: ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान की बात में बहुत स्वागत है आप सभी का, और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सीमा सती, और मेरे साथ हैं
7: बिल्कुल मैं हूं गौतम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार।
6: नमस्कार। और जैसे कि हर दिन अपने आप में कुछ खास होता है, कुछ खास बात लिए होता है, तो आज भी है 15 जुलाई और ये भी अपने आप में खास बात है। और अगर हम आज की बात करते हैं, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
7: बिल्कुल।
6: और अगर आपके बताएं कि आज इस दिन के लिए क्या खास है, तो इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, युवाओं को रोजगार, बेहतर आजीविका और तकनीकी कौशल के लिए जागरूक और प्रशिक्षित करना होता है। और खास तौर पे हमें इस तरीके की हम बात करें तो यहाँ पर हम शिक्षा विकास दिवस यानी कि एजुकेशन डेवलपमेंट डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो क्यों ना हम आज अपने भी जो हमारे युवा हैं जो आज इस कार्यक्रम को भी सुन रहे होंगे, तो खास तौर पे उन्हें हम एक बार फिर से जागरूक करें कि अपने स्किल को जितना भी हो सके डेवलप करिए।
7: बहुत सही कहा आपने सीमा, कौशल युक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी जो है वो शक्ति बन सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि युवाओं को ज्ञान और कौशल का अवसर देकर उज्जवल भविष्य का निर्माण करें।
6: बिल्कुल, और उज्जवल भविष्य बिल्कुल होगा। और क्योंकि आज जो हमारा जो प्रोग्राम है ना, उसमें भी कुछ ऐसी ही चर्चा होने वाली है जो कि आपके भविष्य को बहुत ब्राइट यानी कि बहुत उज्जवल बना सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आज जैसे कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं गौतम, पहले क्या होता था कि जो किसान होता था ना वो बादल देखता था, है ना, और अंदाज़ा लगाता था हर चीज़ का। लेकिन अब जो है सब कुछ बदल गया है। अब क्या होता है, उसे कुछ अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे देखना है अपना मोबाइल। और अब तो बहुत सारी इतनी सारी कहते हैं ना कि सारी चीज़ें, मिट्टी की अगर जानकारी लेनी है, मौसम की जानकारी लेनी है, पानी की जानकारी लेनी है, सब की जानकारी आज किसान खुद उसके हाथ में है। और ये सब चीज़ हुई है हमारी डिजिटल क्रांति से। और यही जो क्रांति है जो कि गाँव को शहरों से जोड़ती है, और या यूँ कहें कि सपनों को हकीकत से जोड़ती है। और आज हम सभी खास तौर पे किसान भाइयों की बात करें तो आज खेतों में भी वो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज कुछ ऐसी ही चर्चा करने वाले हैं हम।
7: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और आज जो हमारा विषय है वो हम अपने किसान भाइयों को, अपने श्रोताओं को बता दें, तो आज का विषय जो है हमारा है स्मार्ट कृषि द्वारा खेती में डिजिटल क्रांति। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ जो कि आज स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर MS नैन साहब जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद गौतम जी।
7: सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब ये रहेगा हमारा कि डिजिटल क्रांति है क्या?
8: डिजिटल क्रांति से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं स्मार्ट कृषि की, जिसकी बात जो

0: मुख्य विषय है स्मार्ट कृषि के माध्यम से डिजिटल क्रांति। तो स्मार्ट कृषि हम उस आधुनिक तकनीकों को कहते हैं जिसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ड्रोन आदि का इस्तेमाल करके अनुमान आधारित कृषि को आप डेटा आधारित कृषि कह दें बना पाएं, और इससे फसल उत्पादन में, फसल की बढ़वार में, आपके पैदावार में, उसके साथ साथ पानी की बचत, लागत कम करने में, ये सारी तकनीकें हमारे लिए एक अहम रोल अदा करती हैं।
1: जी हाँ। और अगर जैसे स्मार्ट खेती की बात हो रही है और उसके द्वारा हम खेती को हम किस तरह से डिजिटलाइज करेंगे, तो अगर ये भी सबसे पहले एक सवाल यहाँ पर आता है कि अगर कुछ किसान भाई हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन ना हो, तो वो किस तरह से स्मार्ट खेती का फायदा ले पाएंगे?
0: देखिए, ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंटरनेट से और कुछ ना कुछ स्मार्ट खेती और डिजिटलाइजेशन इस बात पे निर्भर करती है, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा मॉडर्न या आधुनिक जो उपकरण हैं उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो या मतलब वो कोई उपकरण, ये साझा तरीके के भी से भी हो सकते हैं, एक ग्रुप आधारित भी हो सकते हैं। आजकल तो सरकार द्वारा एफपीओ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। एफपीओ, एक एफपीओ में यदि आपके उपकरणों की उपलब्धता हो जाएगी तो एफपीओ के सारे सदस्य उससे लाभान्वित हो सकेंगे।
2: जी। और डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जैसे हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, तो इंटरनेट का दुनिया, इंटरनेट का युग बोला जा रहा है, तो कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या महत्व है?
0: कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ नहीं है, ये एक सभी तकनीकों को आपस में जोड़ने का एक सूत्र है
2: जी,
0: जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। यह एक सेंसर और मशीनों के बीच संपर्क स्थापित करने का एक तंत्र है जिसके परिणाम स्वरूप एक जटिल प्रणाली बनती है जो प्राप्त डेटा के आधार पर आपके खेत का प्रबंधन करती है। इस प्रणाली के बदौलत किसान अपने खेत में होने वाली प्रक्रियाओं की निगरानी कर सकते हैं और दूर से ही रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं। अपने टैबलेट, फोन या अन्य मोबाइल डिवाइस से खेत में हो रहे या आपके ग्रीन हाउस में हो रहे या बाग में हो रहे किसी भी कार्य को आप नियंत्रित कर सकते हैं और एक सकारात्मक निर्णय दूर से ही ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है हमारे आज किसान भाइयों को। और अगर हम बताएं एक बार कि आज चर्चा हो रही है स्मार्ट खेती द्वारा खेती में डिजिटल क्रांति की, और हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर एमएस नैन जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और आज संबंधित विषय से अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो आप जरूर फोन कीजिए 2342-1081 और 2342-1083 पे।
2: जी बिल्कुल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो हमारा विषय है अगर उससे संबंधित आपके जहन में कोई सवाल है तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। और डॉक्टर साहब, अगर बात कर रहे हैं हम लोग स्मार्ट कृषि के बारे में, तो स्मार्ट कृषि में जीपीएस की भी कोई भूमिका होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जीपीएस आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं
2: जी,
0: इसके माध्यम से फसलों को की निगरानी की जा सकती है, मृदा की निगरानी की जा सकती है। उसके अलावा आप जैसे कई बार कीटों का प्रकोप हो जाता है, कीट नियंत्रण में जीपीएस प्रणाली काफ़ी प्रभावी होती है
2: जी।
0: आप किस जगह पे, किस स्थान पे, किस खेत में ज़्यादा कीट हैं, किस स्थान पे कम कीट हैं, उसकी निगरानी करके एक ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि कहाँ पे आपको प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है, कहाँ पे आपको अभी नियंत्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है
2: जी।
0: जैसे हम जीपीएस के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसी के आधार पर उसको, उस डेटा को हम यदि दूसरे IoT से जोड़े, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़े, तो एक सटीक निर्णय आपके पास अवेलेबल हो सकता है। ये सारी कुछ प्रणालियां हैं, कुछ तकनीकें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक सटीक निर्णय लेने में हमारी किसानों की मदद करता है
2: जी।
1: जी हाँ। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंटरनेट का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम गांव की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है या फिर बिजली चली जाती है, तो ऐसे में वहां पर इंटरनेट को किस तरह से हम सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: इंटरनेट को देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अभी भी हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट की सुविधा कमोवेश कम है
3: जी।
0: भारत सरकार ने एक भारत नेट नाम से एक सुविधा स्थापित की है जिसके माध्यम से लो बैंड कनेक्टिविटी लगभग हर स्थान पे अवेलेबल हो जाती है। उसका फायदा लिया जा सकता है और आपके जो ब्रॉडबैंड से है उससे भी आपके

0: वरना आजकल ज़्यादातर जिसके पास भी स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उन फोन्स में इंटरनेट की सुविधा भी है और आजकल इंटरनेट उतना महंगा भी नहीं बचा है। समय के साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी महंगी नहीं बची है, इसको हम अवेलेबल करा सकते हैं। और दूसरा, हमारे पास हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है
1: जी।
0: कृषि विज्ञान केंद्र पे ये सारी सुविधाएं पहले से कनेक्टेड हैं। लगभग हर कृषि विज्ञान केंद्र को एक हब के तौर पे विकसित किया गया है, जहां सूचनाएं, कृषि से संबंधित नवाचार और उसके साथ साथ उनको किस प्रकार से खेत पे अप्लाई करना है, उस सब के लिए एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट कृषि का, तो आजकल एआई का भी बात अब बहुत चर्चा में है, एआई की बात करते हैं लोग, तो कृषि में भी एआई का कुछ महत्व है, कैसे किसान भाई इस एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: देखिए, एआई मतलब एआई क्या, दूसरे शब्दों में कहो तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है आपके पास बहुत सारा डेटा है एक सिचुएशन के बेस पे, और वो डेटा के साथ साथ आपको एक शुरू से आखिर तक का डेटा है, जिससे आप की एक निर्णय प्रणाली बनती है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनता है। जब आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना दिमाग, जैसे एक व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के में ये बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे व्यक्तियों का दिमाग लगा हुआ है, बहुत सारा एक आपके पास नेटवर्क है, जिसके आधार पे मशीन आपको निर्णय लेती है। मशीन निर्णय लेती है तो कृत्रिम बौद्धिमत्ता मतलब बुद्धि तो वही है, व्यक्ति वाली बुद्धि है, कृत्रिम बौद्धिमत्ता मतलब एनालिसिस के आधार पर, डेटा के एनालिसिस के आधार पे आप निर्णय लेते हैं
1: जी। और डॉक्टर साहब, मतलब अगर हम लोग बात करें स्मार्ट कृषि से किसानों की आय बढ़ सकती है, वो कैसे, कि किसान कैसे स्मार्ट कृषि की तरफ अग्रसर हों?
0: देखिए, स्मार्ट कृषि का मतलब आप पहली बात एक आध उदाहरण के साथ हम बात लेना चाहेंगे। स्मार्ट कृषि में जैसे हम IoT का प्रयोग करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग करें,
1: बिल्कुल,
0: और मशीनों का प्रयोग करें, तो आपके खेत में सेंसर आधारित डेटा अवेलेबल होगा, जिसके आधार पे आप सटीक सिंचाई, कब सिंचाई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है, कितना पोषक तत्व की ज़रूरत है और कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत है। यदि ये डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, तो हम जो अपव्यय कर सकते हैं या कर लेते हैं, जैसे मान लिया फ्लडिंग कर दिया, सिंचाई करते हुए फ्लडिंग किया। दूसरा, यदि हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि हमको इस दिन इतने पानी की ज़रूरत है, तो हम उतना ही पानी लगाएंगे, उतने ही पोषक तत्व देंगे जितना हमारी फसल को ज़रूरत है।
1: बिल्कुल,
0: एक अध्ययन के आधार पे ये पता लगा है कि यदि आप स्मार्ट तरीके से कृषि करते हैं, तो लगभग आप 85% पानी बचा पाते हैं, अपने खेत में 85% पानी बचा सकते हैं, और 50% तक ऊर्जा बचा सकते हैं, यानी कि बिजली, कोयला या जो भी ऊर्जा के स्रोत आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप 40% तक आपने उर्वरक या दूसरे जो भी सूक्ष्म तत्व हैं वो बचा सकते हैं, और 60% तक फसल में होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है
1: जी।
0: कुल मिला के यदि आप कहो तो मोटा मोटी संसाधनों का अपव्यय कम होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी आमदनी बढ़ेगी
2: जी। हाँ बिल्कुल, और जैसे कि एक फिर से यही सवाल आता है कि जब हम यहाँ पे स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, LOT की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, तो हमारे जो सामान्य किसान भाई लोग हैं, तो किस तरह से इसे अफोर्ड करेंगे, किस तरह से इसे, इसको क्या वो खरीद पाने में सक्षम रहेंगे, तो किस तरीके से वो काम कर सकते हैं?
0: एक एक चीज के बारे में बात करते हैं श्रीमती। जैसे आपने ड्रोन की बात की, अब हर व्यक्ति तो ड्रोन नहीं खरीद सकता, और हर व्यक्ति यदि ड्रोन खरीदेगा तो वो इकोनॉमिकल भी नहीं होगा। एक भारत सरकार की एक स्कीम है, नमो ड्रोन दीदी
1: जी।
0: वो नमो ड्रोन दीदी जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत कुछ महिला के स्वयं सो

0: समूह ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उन समूहों को सब्सिडी के आधार पर ड्रोन प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ड्रोन ड्राइविंग का लाइसेंस यानी पायलट का लाइसेंस दिया जाता है, और उस तरी उस ड्रोन दीदियाँ जो ड्रोन दीदी हैं हमारी, उन ड्रोन्स को हमारे सभी कृषकों के खेतों पे प्रयोग करती हैं विभिन्न पर्पजेज के लिए, जैसे आप कह सकते हो छिड़काव के लिए या पेस्ट मॉनिटरिंग के लिए या किसी भी दूसरे पर्पज के लिए जहां आप कमर्शियल स्केल पे प्रयोग किया जा सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी, यदि आप एक ड्रोन लेके और एक गांव को या दो गांव को सर्व करते हैं तो अफोर्डेबिलिटी तो अपने आप ही आ जाएगी। दूसरा उस उदाहरण हम देना चाहेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर्स का, बड़े बड़े उपकरण हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन भारत सरकार की एक स्कीम है कस्टम हायरिंग सेंटर्स की, गांव में गांव के स्तर पर, एफपीओ के स्तर पर, स्वयं सहायता समूह के स्तर पर आप कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकते हैं, जिसको आप प्रयोग के आधार पे पे फॉर यूज बोलते हैं, उसको प्रयोग कीजिए और पेमेंट कीजिए, उस आधार पे ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स को आराम से चलाया जा सकता है। और भारत में इस तरह के बहुत सारे हर राज्य में बहुत सारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित भी हो चुके हैं।
1: जी हाँ जी, तो बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है हमारे श्रोताओं को, और बहुत अच्छी बात ये भी है कि इससे आपको ये भी जागरूकता मिल रही है कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल सर ये भी आ रहा है कि जैसे हमने डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केट भी कोई चीज़ होती है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया।
1: मार्केट में कहते हैं किसान और बाजार, अब बीच में जो बिचौलिए थे उनका क्या रोल है और उस तरीके से उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है या निजात मिल रही है?
0: देखिए, सरकार ने इस पे बहुत पहले से काम शुरू कर दिया है, एक हम ई नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसके माध्यम से लगभग 1400 से ज्यादा मंडियां एक प्लेटफार्म पे जुड़ गई हैं, जहाँ पे किसान अपने मोबाइल पे अपने घर बैठा बैठा या किसी इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हर देश की हर मंडी का, जो 1400 या उससे भी अधिक जो मंडियाँ जुड़ी हुई हैं, उसमें मेरे उत्पाद का इस वक्त क्या भाव चल रहा है वो देख सकता है। ई नाम के माध्यम से वो ई बिक्री कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अपनी फसल का या अपने उत्पाद का मूल्य प्राप्त कर सकता है। तो ये डिजिटलाइजेशन के कारण ही ये सब हो पाया है। ऐसे ऐसे दूसरे भी उदाहरण हैं, ये तो मार्केटिंग के क्षेत्र में हुआ। एक कभी भारत सरकार ने भारत विस्तार करके एक स्कीम लॉन्च की है फरवरी 2026 में, जिसमें आपको यही कृत्रिम बौद्धिमता के आधार पर ही आपके प्रश्नों के, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के जवाब उनकी भाषा में ही दिए जाते हैं, किसानों की भाषा में ही दिए जाते हैं, और ये भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ही यूज करता है।
1: जी, और जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत हमारा जो स्मार्ट खेती पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं, डिजिटल क्रांति पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं, तो क्या हमारे युवा जनरेशन के लिए क्या हम विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में भी कुछ इस तरीके का प्रोग्राम ला रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा जागरूक हो सकें या उनकी रुचि इस तरफ आते?
0: देखिए, युवाओं के लिए दो, इसमें कई प्रकार के अवसर हैं। जैसे आज आप कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि आज कौशल विकास दिवस है, विश्व कौशल विकास दिवस है, और इस वर्ष का जो थीम है वो भी साझे भविष्य के लिए कौशल विकास है।
1: जी।
0: 2026 का जो विषय है वो साझे भविष्य के लिए कौशल। तो मेरा यहाँ युवाओं को यही सलाह रहेगी, देखिए भविष्य बनाने के लिए और भविष्य में विकास के लिए कौशल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और आजकल विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में, ICAR के विभिन्न संस्थानों में
2: जी,
0: यहाँ इस पे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और कई कई विभाग में तो इनमें डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। अभी बहुत सारे युवा कृषि ऐप बना

0: आके कुछ विकिपीडिया के माध्यम से, एग्रोपीडिया के माध्यम से और डाटा संग्रहण के माध्यम से अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में अलग अलग अपना कौशल विकास करके अलग अलग प्रकार के व्यवसायों से जुड़ के अपनी आजीविका कमा रहे हैं, अपने साथ साथ वो कृषि के विकास में भी अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
1: जी, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में, तो वापस अपने विषय की ओर आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग डिजिटल तकनीक की बात कर रहे हैं, स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं, तो किसान भाई फसल लगाते हैं और कई बार क्या होता है, कीट एवं रोग जो है उसको बर्बाद कर देते हैं, तो उसमें डिजिटल तकनीक से कैसे बेहतर उपाय हो सकता है?
0: जैसा कि पहले भी हम इस विषय पर बात कर चुके हैं कि डिजिटल तकनीक से दो तीन प्रकार से इसमें फायदा हो सकता है या ये उपयोगी हो सकता है। सबसे पहली बात कि यदि हम आजकल जो हमारे पास उपकरण उपलब्ध हैं उनके माध्यम से खेतों की निगरानी करें।
5: जी,
0: निगरानी करें तो हमारे पास सटीक डाटा आ जाएगा। हमको एक एक खेत को जाके निरीक्षण करने की बजाय यदि हम ड्रोन से उसकी निगरानी करें, या मतलब आपके सैटेलाइट से निगरानी करें, तो हमें ये पता लग सकता है कि किस खेत में या किस एरिया में किस कीट का प्रकोप है या किस बीमारी का प्रकोप है। तो एक तो डिजिटलाइजेशन का ये फायदा हुआ कि आप आदमी की ज़रूरत की बजाय मशीन उसको एनालाइज कर रही है और आपके तकनीक उसको एनालाइज कर रही है। वो ठीक से ये भी एनालाइज कर पाएगी। हम एक साइंटिफिक भाषा में थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब वो स्तर जब आपका कीट या बीमारी उस स्तर पर आ गया है कि अब वो आपको आर्थिक नुकसान करना शुरू कर दिया।
5: जी बिल्कुल।
0: तो थ्रेशोल्ड लेवल का भी मशीन से पता लग सकता है, तकनीक से पता लग सकता है। अब जब थ्रेशोल्ड लेवल पे का पता लग गया कि अब हमको इसके उपचार की जरूरत है, उसके लिए भी हमारे पास तकनीक अवेलेबल हैं। जैसे आपको लार्ज स्केल पे स्प्रे करना है,
5: जी,
0: वीड कंट्रोल या पेस्ट कंट्रोल एक लार्ज स्केल पे करना है, तो मुझे लगता है कि यदि आप ड्रोन के माध्यम से आप छिड़काव करेंगे तो वो प्रभावी भी होगा, एक सार भी होगा और कीट या बीमारी के नियंत्रण में प्रभावी भी होगा।
5: जी, डिजिटल क्रांति में भारत सरकार और क्या प्रयास कर रही है जो किसान भाई को फायदा हो और किसान भाई डिजिटल क्रांति की ओर जुड़े और अपने खेती में नई नई तकनीकों को का इजाद करके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें?
0: देखिए, कई सारे पहल हैं, जैसे एग्रीस्टैक करके एक है, एग्रीस्टैक करके जिसमें आपके सारे डाटा को डिजिटलाइज किया जा रहा है।
5: जी।
0: दूसरा, भूमि के रजिस्ट्री का डिजिटलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से आपके DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और आपके नाम के आपको जगह जगह पे ऑफिस से ऑफिस में भटकना नहीं पड़ता। उसके अलावा जैसे हम किसान सारथी की बात करें, ये एक भारत सरकार की ही पहल है जिसमें लगभग 4 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल आपको क्वेश्चन कर सकते हैं और वो

0: क्वेश्चंस जो प्रश्न हैं वो उनके उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र होते हैं और वो एक्सपर्ट्स उनका समय समय पर जवाब देते हैं। उसी तरीके से अब मैंने भारत विस्तार की बात किया तो भारत विस्तार वो किसान सारथी की एक एडवांस्ड चीज़ है, ये आवाज़ आधारित है
1: जी।
0: इसमें आप अपनी भाषा में सवाल करेंगे, चैटबॉट आपको आपकी ही भाषा में जवाब देगा और डेटा आधारित देगा। तो ये सारी इस तरीके की भू अभिलेखों का जो डिजिटलाइजेशन है वो भी साथ साथ में चल रहा है। और इसके अलावा आप देखें तो डिजिटलाइजेशन लगभग हर फील्ड में, हर यहाँ तक कि आप कहिए कि रजिस्ट्रेशन आपके जो आप ये पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, उन तक का भी डिजिटलाइजेशन, कौन चीज़ कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं अवेलेबल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी का भी डिजिटलाइजेशन हो गया है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स भी अब डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं और उनका डेटा जनरेट किया जा रहा है ताकि आपके फसल बीमा से जुड़ी हुई राशि का जो भी लेन देन होना है उसमें आसानी रहे
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो किसान भाइयों को इसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, तो भारत सरकार क्या मतलब प्रशिक्षण के क्या प्लेटफॉर्म है किसान भाइयों को सीखने के लिए?
0: देखिए, सबसे पहला और सबसे नज़दीक जो किसान भाइयों का सहायता केंद्र है वो हर जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है।
1: बिल्कुल,
0: कृषि विज्ञान केंद्र में हर किसान को उसके प्रयोग में दक्ष होने की ज़रूरत है
1: जी।
0: उसमें क्या उपकरण लगते हैं, वो उपकरण किस आधार पे काम करता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। किसान को उसकी प्रयोग उपयोग में दक्षता की ज़रूरत है
1: जी।
0: उसके लिए हमारे पास विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि से जुड़े हुए विभिन्न संस्थानों, ICR इंस्टीट्यूट और इन सब में प्रशिक्षण की सुविधा है और समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। यदि मैं अपने संस्थान की, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करूं, तो हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चरल फिजिक्स करके एक विभाग है, वो इसमें इससे संबंधित प्रशिक्षण भी देता है और किसानों के साथ जुड़ा हुआ भी है और किसानों को जोड़ने के लिए सदा ओपन रहता है
2: जी। हाँ, और डॉक्टर साहब एक सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत जल्दी भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी भी हो रही है, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं।
0: जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा है और आज मैं चूंकि वैसे तो 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है लेकिन ICR आज 15 तारीख को टेक्नोलॉजी डे मना रही है और मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसी वक्त जो ये ज्वलंत मुद्दा है जलवायु प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और कृषि पे होने वाले प्रभाव, इस विषय पे इस वक्त एक सम्मेलन चला हुआ है, एक वार्ता चली हुई है जिसमें किसान भाई और बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी सलाह दे रहे हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिसके जो होगा ही होगा, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। जलवायु परिवर्तन समय के साथ होता है, लेकिन हमें अपनी कृषि को इसके तन्यक बनाना है, मतलब रेजिलिएंट बनाना है। रेजिलियंस के लिए तकनीकियों की जरूरत है और तकनीक आपकी समय के साथ किसानों को अपनाने की जरूरत है।
2: तो बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ आज कार्यक्रम का समापन करने का टाइम आ गया है गौतम, और सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर साहब को। थैंक यू सो मच सर।
0: मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्टूडियो में आके हमें किसान भाइयों से वार्तालाप करने का मौका दिया।
2: और इसी के साथ आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, और आज कार्यक्रम सम्पन्न करते हैं सीमा सती और
1: गौतम झा के साथ, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को
2: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये समझौता एक ऐतिहासिक कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री जोशी ने कहा कि ये समझौता देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसानों तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वहीं ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉ राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। महाराष्ट्र में मुंबई के हावा शेवा और सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉ सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में तेलंगाना से ब्रिटेन के लिए निर्यात की पहली खेप को आज सुबह हैदराबाद से रवाना किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। राष्ट्रपति ने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
2: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 3:11:05 हुए हैं और वक्त है आप ही के अपने कार्यक्रम मनभावन का, वो कार्यक्रम जिसमें आप सुनते हैं अपनी ही फरमाइश के गीत। जी हाँ, अपनी ही फरमाइश के, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने दूसरी बार इसलिए दोहराया है क्योंकि कार्यक्रम तो है आपकी फरमाइश का, लेकिन आपकी फरमाइश अक्सर ये रहती है कि हम अपनी पसंद का गीत सुनवाते हैं, तो आपकी फरमाइश गीत के लिए होनी चाहिए, हमारी पसंद के लिए नहीं। आज कार्यक्रम की शुरुआत ही मैं इसी बात से, इसी रिक्वेस्ट से, इसी अनुरोध से, इसी गुजारिश से कर रही हूँ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर ये कार्यक्रम है आपके लिए मन भावन। मन भावन में आपके साथ आज मैं रहूँगी नईम अख्तर, लेकर वो पिटारा जिसमें होंगे आपकी पसंद के गीत। अब अपनी पसंद के गीत आप हम तक पहुँचाएंगे कैसे? तरीका वही, जाना पहचाना पुराना, या तो व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल कीजिए। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर है 9868868753, यानी 9868868753। और ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। हमारे वो सभी श्रोता जो हमारे नियमित श्रोता हैं, हमेशा FM गोल्ड सुनते हैं, उन्हें ये ईमेल आईडी बहुत आसानी से और फ़ोन नंबर भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे वो श्रोता जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता कि हमारा ईमेल आईडी क्या है, और नईम ने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, तो नईम आपको अपना ईमेल आईडी बहुत आसानी से स्पेल आउट करते हुए दोहरा देती है, fmgoldairdelhi@gmail.com। अब तो ठीक है ना, अब मत कहिएगा नहीं बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया था, ईमेल आईडी हम तक पहुंच नहीं पाया, हम फरमाइश कैसे भेजते। हमने आप तक अपनी ईमेल आईडी पहुंचाई है, आप हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाइए। और एक फरमाइश जो कार्यक्रम के शुरू में ही हम ले रहे हैं, वो भेजिए हमें चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, विमला नहीं बिमला अनेजा ने, इन दोनों ने सुनना चाहा है ये गीत।

0: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:25:40 कार्यक्रम मन भावन। मन भावन में आपकी पसंद के गीत, आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ हम बैठे हैं आप ही के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मन भावन। और मन भावन में अभी जो गीत आपने सुना वो गीत सुनना चाहा था स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया ने। और अगला गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो भेजा है सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने। इन्होंने लिखा है कि आप पूछा है प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो? जी बिल्कुल मूसा मोहसिन साहब, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। और आगे लिखते हैं कि दुआओं में याद रखना जी दोस्त, बस यही एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको, हमें, हम सभी को है। दुआओं की सख्त ज़रूरत रहती है हर मोड़ पर, हर वक्त, हर कदम पे। तो हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खैर जो गीत इन्होंने सुनना चाहा है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी ये बता देते हैं कि आप अपनी पसंद का गीत हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अपनी पसंद का गीत हम तक भेजने के लिए आपको ईमेल करना होगा, ईमेल आईडी हमारा रहेगा आपके लिए वही जाना पहचाना पुराना fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। तो भेजिए हमें फरमाइश। और कार्यक्रम शुरू होते ही हमने ये कह दिया था कि प्लीज़ ये मत लिखिएगा कि हमारी फरमाइश, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। तो इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद, कार्यक्रम के शुरू में ही ये कह देने के बावजूद, धड़ल्ले से हमारे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें लिखा हुआ है अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जी हमारी पसंद आप ही की पसंद है, हम तो जानते ही नहीं गीत क्या होते हैं, संगीत क्या होता है, फिल्में कौन सी होती हैं, वो तो सब हम आपकी पसंद का सुनवाएंगे ना। अब देखिए जब हमको पता ही नहीं तो हम कहाँ से सुनवाएंगे। तो बेहतर है आप ही लिख के भेज दीजिए, हमें बता दीजिए, हम गीत सुनवा देंगे, है ना। अब आप समझ लीजिए हम यहाँ पर एकदम अनाड़ी बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता है, आप भेजेंगे तो हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। और अब जो गीत हम सुनवा रहे हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन की पसंद का, वो है प्रोफेसर फिल्म का ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:38:55 हो रहे हैं। कार्यक्रम मन भावन आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट और बचे हैं और इन 20 मिनटों में हम जो गीत आप तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी जो गीत आपने सुना वो गीत हमारे पास फरमाइश भेजी थी राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। तो ये आपके पसंद का गीत तो आप तक पहुंच गया। और दोस्त हम अपना ईमेल आईडी आपको दोहरा देते हैं, हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपनी फरमाइश का गीत हम तक पहुंचा सकते हैं वो है fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर आप अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाइए। मैं हूं आपके साथ नईम अख्तर और अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो हमारे पास ईमेल किया है सोनीपत हरियाणा से मुशर्रफ, सूफिया, इस्मत, बरीरा, आयशा, अब्दुल रहमान, अलबा और अनन्या ने। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है सहारनपुर से शारिक, शाहिदा, अहमद और माहम की। आप सभी ने गीत सुनना चाहा है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये गीत फिल्म आप तो ऐसे ना था। और मज़ेदार बात यह है कि ये गीत जो है फिल्म में एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार है और तीनों बार अलग अलग आवाज़ों में है।

वालों ने उन्होंने खास तौर पर लिखकर भेजा है, रफी साहब वाला गीत सुनवा दीजिए। तो रफी साहब वाला गीत आपकी नजर ये रहा, सुनिए, लुत्फ लीजिए और बाकी सभी श्रोताओं से यही कहेंगे, सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:51 और मन भावन कार्यक्रम में जो गीत अभी आपने सुना, पीतल की मोरी गागरी, तो ये गीत था फिल्म दो बूंद पानी का और इसको सुनने की फरमाइश भेजी थी किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। तो आपकी पसंद का गीत हमने सुनाया, गीत बहुत मधुर था, बहुत प्यारा था, लेकिन बहुत दिनों बाद हमने सुना, हमें भी अच्छा लगा। और अगला गीत जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत, रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रुचिका रामेकर ने इस खूबसूरत मधुर नगमे को सुनना चाहा है।

यकीन मानिए हम भी नहीं भूलेंगे कि आपके पास आपके लिए कुछ गीत लेकर आपसे मिलने के लिए हमें बार बार बार बार बार बार यही आना है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। नईम अख्तर को अभी आज के कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए, आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सबसे कुछ ही पलों में होंगे समाचार और उसके फौरन बाद कुछ और फिल्मी नगमे लेकर आपके लिए मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है। इससे शहरी आवाजाही बेहतर होगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रूपये से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,900

0: 98 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि ये प्रोजेक्ट प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत के 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौता एक ऐतिहासिक कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉ राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद शामिल हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के न्हावा शेवा और सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉ सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100श्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Union Cabinet today approved the development of an over 43-kilometer, 6x4-lane elevated corridor connecting NH31 and the Varanasi Ring Road along the river Varuna for decongestion of Varanasi city in Uttar Pradesh. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. We now take you live to the press briefing.
0: Fiscal outlays for different pillars, वो जैसे-जैसे स्कीम के कंटूर्स आपके सामने रखेंगे, करीब 20 दिन के अंदर-अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही आपके सामने आ जाएगा। इंसेंटिव स्ट्रक्चर को चेंज करना पहले से

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 4:10, ये लीजिए 4:11 और आप इंतजार कर रहे हैं उस फिल्मी संगीत का जिसका वादा हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले किया था। तो फिल्मी गीतों को लेकर आपके लिए हाजिर हूँ मैं नईम अख्तर। आगाज करते हैं इस गीत से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है वो ये हमेशा कहता है आए हो तो जाना तो होगा ही। तो ठीक है, अभी नईम अख्तर को थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे 5:10 पर फिर मुलाकात होगी गाते गुनगुनाते कार्यक्रम को लेकर। अभी आपके लिए और बहुत कुछ है आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। अब से अगला ही कार्यक्रम जो आपके लिए होगा वो होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यानी रोज़गार समाचार। तो ये सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: The Department of Consumer Affairs, Government of India, has invited online applications for the engagement of 2 young professionals on a purely temporary basis. Selected candidates will receive a consolidated monthly remuneration of 40,000 rupees. Detailed information regarding eligibility criteria, qualifications, experience,

0: समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन औषध अनुभाग आमंत्रित कर रहा है वैज्ञानिक अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट cdsco.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट नेटवर्क और सिस्टम्स, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल सिविल आर्किटेक्ट मैकेनिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर तथा केमिकल। इसके अतिरिक्त जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटैलिटी, जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट। पता है www.iitism.ac.in। भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय भर्ती एवं प्रोन्नति विभाग कॉरपोरेट केंद्र मुंबई आमंत्रित कर रहा है परिवीक्षा अधीन अधिकारियों यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए आवेदन। कुल 1500 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 234 अनुसूचित जाति के लिए, 144 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 390, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 144 तथा सामान्य वर्ग के लिए 588 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक की इस वेबसाइट से, जिसका पता है sbi.bank.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप करियर्स सेक्शन में करंट ओपनिंग्स को खोल सकते हैं, वहां आपको तमाम जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आमंत्रित कर रहा है सांस्कृतिक प्रतिभा क्षेत्र से 2 पदों को भरने के लिए आवेदन। एक पद सैक्सोफोन वादक का है और एक अन्य पद पश्चिमी शास्त्रीय पियानो वादक का है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के लिए सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के होने चाहिए। वेतनमान, योग्यता तथा अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अगले 30 मिनट तक हम इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या हैं उनके पास खास रिपोर्ट्स, और खेल के मैदान की गतिविधियां तो होंगी ही, साथ ही साथ आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे एक नज़र। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा।
2: नमस्कार विशाल, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल

0: लिसनर्स, और एक अरसे के बाद हम लोग के साथ में कह सकते हैं शो करने का मौका मिला, इज इट इट विशाल? एंड वेल, विशाल हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो. हस्बैंड दस्तूर लाते हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स न्यूज, सिंस इट्स अ न्यूज मैगजीन, सो इन दिस कलरफुल मैगजीन वील टेक यू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री, एंड दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड दिस परिक्रमा. जी हाँ, लेके चलेंगे आपको देश विदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में, स्पेशली अपने देश के हिस्सों में जहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स रहते हैं, एंड देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट नीड टू बी ब्रॉट टू द लिसनर्स, बट दे आर नॉट यू नो पार्ट ऑफ हार्ड न्यूज बुलेटिन एज वी कॉल यू नो विशाल, एंड दैट्स वाई वी आर हियर विद दिस न्यूज मैगजीन परिक्रमा. सो वील ब्रिंग यू दो स्टोरीज एज वेल. विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज शो विद द हेडलाइंस.
1: जी, प्रमुख समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं. भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी.
0: यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 6-lane ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर बिटवीन नेशनल हाईवे 19 एंड वाराणसी रिंग रोड इन उत्तर प्रदेश. ऑल्सो अप्रूव्स सेमीकॉन 2.0 एंड मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया.
0: इंडिया अर्जेस फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, वॉन्स इन एक्शन इज इरोडिंग ग्लोबल पब्लिक कॉन्फिडेंस.
1: ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट.
0: एंड इन फीफा वर्ल्ड कप, डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना टू टेक ऑन इंग्लैंड इन द सेकंड सेमीफाइनल एट अटलांटा स्टेडियम टुनाइट. And as always, we throw open the show with our very interesting segment, Dateline India, in which we take a look at the important developments that are taking place at the national global level. And today, Vishal, we all know that we are going to talk about National Youth Skill Day.
2: कुछ

0: Well, विशाल, आई थिंक यूथ या जवानी वाकई में वो फेज होता है जिसमें इंसान, हर इंसान को लगता है कि हम दुनिया फतेह कर
1: कुछ भी मुश्किल नहीं होता
0: Absolutely. And that is why it's very important that we as a country are a very young country because a majority of the population is comprises of the youth. And yes, we are celebrating World Youth Skills Day that is observed every year on 15th of July. It's a day that reminds us that skills are not just about getting a job, they are about building confidence, creating opportunities and preparing for the future.
1: 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे घोषित किया था. इसका मकसद युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी कौशल सिखाने के महत्व को उजागर करना है.
0: That's right. And in fact, when we talk about our country, Vishal, we all know that the government has given so much attention to youth. Ki itni sari schemes aayi, Startup India was a revolutionary step that, everybody, instead of, seeking for jobs, they were, people were becoming job creators.
1: Aur Saira, jo aaj ka jo zamana hai, usme keval kitabi gyan hi paryapt nahi hai. कि हम ये सोचे कि हमने डिग्री ले ली और बस हो गया काम. आज जो है आपको तेजी से बदलते हुआ जो परिवेश है पूरी दुनिया का, उसके हिसाब से अपने आप को बदलना होगा और नए नए कौशल सीखने होंगे, नई नई तकनीकें सीखनी होंगी. और जैसे आपने भारत सरकार की बात की कि तमाम तरीके के मिशन चलाए जा रहे हैं और स्किल इंडिया मिशन भारत में चल रहा है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY भी सरकार के स्तर पर चलाई जा रही है जिसमें युवाओं को कौशल विकास पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है.
0: दैट्स राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट टुडेज एज, अगर आप देखें पिछले 3 सालों में ही कितना ज्यादा दुनिया बदल गई है, स्पेशली विद दी एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई थिंक इट्स अ बिग बिग गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू यूथ स्किल्स. जो एंट्री लेवल स्किल्स, हम लोग जिनको स्किल्स समझते थे, अब वो स्किल्स ही आपको रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज AI इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. सो यू हैव अ कॉन्स्टेंट नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ. जो एंट्री लेवल जॉब्स होती थी कि रिपोर्ट बनाओ, ये डेटा इसमें डालो, ये करो, तो वो एंट्री लेवल जॉब्स अब नहीं है.

0: Because you have to upgrade, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग केयर एंड यू नो जस्ट इन वन क्लिक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टू बी कॉन्स्टेंटली अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट एडवांसेज इन द यू नो टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली AI, एंड दैट इज हाउ वी कैन प्रॉब्ली चेंज द होल स्किल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड.
1: जी, और ये बिल्कुल सच है. आज सफलता के लिए टेक्निकल जानकारी के साथ साथ अन्य स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. युवाओं को टेक्निकल, डिजिटल, AI का आपने जिक्र किया सायरा, ग्रीन, सोशल, इमोशनल और सिविक स्किल्स के साथ साथ ऐसे मानवीय गुणों के संतुलित मेल की आवश्यकता है जिनकी जगह टेक्नोलॉजी कभी नहीं ले सकती. और क्रिएटिविटी जैसे कि हम कह सकते हैं, टीम वर्क जिसे हम कह सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग भी एक पार्ट है इसका.
0: ऑफ कोर्स, इन फैक्ट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि AI पे यू नो दो इट्स अ रेवोल्यूशनरी एंड गेम चेंजर वी कैन से, बट दीस डेज इवन व्हेन पीपल वांट टू राइट अ सिंपल एप्लीकेशन दे जस्ट टेल यू नो ChatGPT खोलो, राइट एन एप्लीकेशन फॉर दिस. आई थिंक दैट शुड नॉट ऑल्सो बी द केस, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि जो सिंपल टास्क हमारी ब्रेन थी वो एक ऑटोमेटिक प्रूनिंग हो जाए और वो सिंपल टास्क यू नो फॉर्मुलेटिंग सिंपल सेंटेंसेज भी हमारा ब्रेन करना भूल जाए. सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर द वंस, humans are the ones who have created AI, and AI has not created humans. It's still called artificial intelligence. So your real intelligence hai, that should always you know be above AI, and the youth should especially you know hone their real intelligence.
1: Yahan ek shabd ki zarurat hai, wo hai wisdom.
0: Yes.
1: Apna vivek ka istemal bhi karna hoga.
0: That's very true. And as you rightly said, Vishal, that there was a time when it was a common belief ki bhai degree le lo aur phir future secure hai, and these days we all know that degree holds not that much value, because it's just the skills that really matter. Because so many people, there are so many you know institutions that are mushrooming all over the country and they are doling out degrees. You pay them, they give you a degree. So kahin na kahin degree ka wo mahatva nahi hai, but aapki apni skills kya hai, that holds real importance.
1: Ji, aur industry aur sansthan jo hain aaj aise yuvaon ki talash mein hain jinke paas na keval apne सब्जेक्ट की नॉलेज हो बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स हो, तकनीकी क्षमता भी हो, क्रिएटिव सोच हो और समस्या सुलझाने की काबिलियत भी उनके अंदर हो और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की इच्छा शक्ति भी हो.
0: Absolutely, Vishal. In this era of global competition, skills have become one of the greatest assets a person can have. Young people with better skills have greater opportunities for employment, self-employment, and even entrepreneurship.
1: इसके लिए अब skill development सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का जरिया नहीं रह गया है. ये किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की बुनियाद बन चुका है.
0: And of course, जब हम लोग बात youth की करते हैं, then we cannot ignore our country, because as I mentioned that you know a major population of our country comprises of the youth.
1: जी, और भविष्य की बात करें तो इस साल विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर.
0: That's right, and of course our country has the largest population of the youth, so of course we can imagine that if these young minds they receive quality education, digital literacy and industry relevant training, then India will not only accelerate its own economic progress but can also become the world's leading hub for skilled human resources. That's a future worth working towards. And what a meaningful theme aapne bataya, that skills for a shared future. It reminds us that skills are not just about personal growth, they are about building a better society together. And Prime Minister Narendra Modi has said that the government has made separate ministry for skill development.
2: ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है. हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाए और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है, मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है. अलग से बजट तय किया है और अनेक योजनाएं शुरू.
1: जी, विश्व युवा कौशल दिवस एक बेहतर भविष्य बनाने में कौशल की शक्ति को पहचानने का दिवस है. स्किल इंडिया मिशन और इसकी प्रमुख पहलों के जरिए भारत युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से कौशल से सशक्त बना रहा है और रोजगार पाने की क्षमता, उद्यमिता और जीवन भर सीखते रहने की भावना को भी बढ़ावा दे रहा है.
3: Skill India has empowered millions of youth with industry relevant skills, creating opportunities for employment, entrepreneurship and nation building. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has empowered more than 6 crore youth through

पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। कल हुए नव यौवन दर्शन के बाद तीर्थ यात्रियों के इस शहर में आध्यात्मिक उत्साह चरम पर है। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। कल की रस्में औपचारिक पहंडी विजय के साथ शुरू होगी, जिसके बाद पारंपरिक छेरा पहरा होगा। इस रस्म के दौरान पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। उड़ीसा सरकार ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, ट्रैफिक कंट्रोल और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: और बात है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य किसानों और बागवानों को प्राकृतिक खेती की वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक तकनीकों से परिचित कराना है, ताकि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो, खेती की लागत घटे और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इन कार्यशालाओं में प्रत्येक बैच में लगभग 30 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान जीवामृत, बीजा मृत, घन जीवामृत, दशपर्णी अर्क और पौध मलहम जैसे जैव आदानों को तैयार करने और उनके प्रभावी उपयोग का व्यवहारिक अभ्यास कराया जा रहा है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, फसल संरक्षण और कम लागत में बेहतर उत्पादन के उपायों की भी जानकारी दी जा रही है। सोलन जिले के कंडाघाट विकास खंड की तुंदल पंचायत में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत किसानों को जैव आदान तैयार करने और उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश Kapoor.
2: And now we head towards Maharashtra, Nagpur. The third BRICS Transport Ministers meeting that is being held in Nagpur under India's BRICS presidency placed special emphasis on sustainable and future-oriented transport systems. We have a report.
3: भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नागपुर में आयोजित तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के बीच सहयोग और मजबूत करने पर जोर दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ब्रिक्स देश मिलकर भविष्य के लिए टिकाऊ, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है।
4: मुझे बहुत खुशी है कि नागपुर में ब्रिक्स कंट्रीज का कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन कवर करती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है अलग अलग ब्रिक्स देशों में, एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है।
3: बैठक में हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन, डिजिटल परिवहन प्रणाली और बहुमाध्यमीय संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
0: नागपुर से अब ये चलते हैं आपको गुजरात, जहां अहमदाबाद ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की है। अहमदाबाद नगर निगम ने भाडज में एक ही घंटे में 3.25 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और इस ऐतिहासिक महाअभियान के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता।
5: अहमदाबाद के भाडस इलाके में रविवार का दिन एक महा इतिहास का गवाह बना। यहाँ मात्र एक ही घंटे के भीतर मियावा की पद्धति का उपयोग करते हुए 3,61,000 से अधिक स्वदेशी पौधों का रोपण किया गया। पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और सामूहिक जनभागीदारी का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं मिले। इस महाअभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से किया जा सकता है कि इसमें 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों, एनजीओ, एनसीसी छात्र एवं शहर के जागरूक नागरिकों ने एक साथ मिलकर पसीना बहाया। 91,000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में फैले इस आयोजन में 35 अलग अलग स्वदेशी प्रजातियों के पौधे लगाए गए। यह पहल केवल एक रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले

अधिक के क्षेत्र में फैले इस आयोजन में 35 अलग अलग स्वदेशी प्रजातियों के पौधे लगाए गए। यह पहल केवल एक रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की नींव है। मियावाकी पद्धति, जो कम जगह में सघन वन विकसित करने के लिए जानी जाती है, यहाँ कार्बन अवशोषण और जैव विविधता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। हरियाली लोकसभा के इस संकल्प के साथ अहमदाबाद ने वैश्विक स्तर पर एक संदेश दिया है कि विकास

0: stunning France by 2-0 in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas last night. And now if we take a look at the business world, well, benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex rose 130 points, almost 0.2% to close at 77,185. Nifty added 26 points to settle at 24,079. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आखिर में हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे उन व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म. और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हमारे सामने है बाल गंधर्व, आज इनकी पुण्यतिथि है. कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ और अभिनय समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं. मराठी रंगमंच के ऐसे ही अमर सितारे थे बाल गंधर्व. इन्होंने रंगमंच पर अपने अभिनय की शुरुआत सबसे पहले शकुंतला का चरित्र निभाकर की थी. नारायण श्रीपाद राजहंस के नाम इनका वास्तविक नाम था, लेकिन जाना इनको अधिक जाता था बाल गंधर्व के नाम से. बाल गंधर्व मराठी रंगमंच पर महिला चरित्रों को निभाते थे, क्योंकि उस समय में महिलाएं रंगमंच पर किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाती थीं.

0: And if we talk that, you know, how he got the title Bal Gandhar, well, he got his name after a singing performance in Pune. Lokmanya Tilak, who, of course, we know that, you know, a very renowned freedom fighter, he was in the audience. And after the performance, he patted Narayan Sripad Rajhans on the back and said that Narayan was a Bal Gandhar. So, us din se, jo hai, unka jo title tha, wo ekdam unke liye hi chaspa ho gaya, keh sakte hain. And then that was how Narayan Sripad Rajhans was then known as Bal Gandharv. We all know that he has changed, you know, he was a game changer, especially in Marathi theatre. And not just Marathi theatre, unko keh sakte hain, usko seemit kar dega. Pure theatre ka hi unhone keh sakte hain, rukh badal diya with his stunning performances, as especially in female characters, jaise ki aapne bataya, kyunki auraton ka us waqt jo hai stage pe kaam karna bura samjha jata tha. Who's the next on our list, Vishal?
1: अब बात एक ऐसी महिला की करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के स्वास्थ्य और मातृ शिशु कल्याण को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं. इनका नाम है डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी. आज इनकी पुण्यतिथि है.
0: And another leading woman that we are going to talk about is Durga Bai Deshmukh. We all know that she, of course, was a freedom fighter, lawyer, social worker and politician, and a member of the Constituent Assembly of India and of the Planning Commission of India.
1: जी, सायरा, मैं डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी के बारे में कुछ और जानकारी साझा करना चाहूंगा. ये देश की जानी मानी चिकित्सक थीं और समाज सेविका थीं. इन्होंने पुणे के एक अस्पताल में वर्षों तक सेवा देते हुए जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम किया, और विशेष रूप से खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में इनके प्रयासों को देश विदेश में सराहा गया. और समाज और चिकित्सा के क्षेत्र में कोया जी के योगदान के लिए इन्हें रेमोन मैक्सेसे पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था.
0: और वहीं जो दूसरी महिला के साथ साथ बात करिए जा रही थी, दुर्गा बाई देशमुख की, ऑफ कोर्स अनदर वुमन हु worked a lot for women's emancipation. She founded the Andhra Mahila Sabha in 1937. She was also the founder chairperson of the Central Social Welfare Board. And well, in 1953, she married C.D. Deshmukh, who was the first Indian governor of the Reserve Bank of India and finance minister in India's central cabinet from the year 1950 to 56.
1: अब बात करेंगे प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार की. आज इनका जन्म हुआ था. जी, ये साहित्यकार थे मलयाली भाषा के, एम टी वासुदेव नायर, और लोकप्रिय ये एम टी के नाम से ज़्यादा हुए. लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक रहे हैं. आधुनिक मलयालम साहित्य में विपुल और बहुमुखी लेखक माने जाते हैं.

0: Well, M.T. Vasudevan Narayanan Nair, a very accomplished Indian author, lecturer, screenplay writer, filmmaker and literary statesman, a prolific and versatile writer in modern Malayalam literature, and was one of the masters of post-independence Indian literature. And his Randhamuram, which retells the story of the Mahabharata from the point of view of Bhimsen, is widely credited as his masterpiece. Another personality on our list is Tilakan. Of course, we all know that Tilakan was a very renowned name in Indian literature, of course, and born in Arirur and in the present day Pathanamthitta district of Kerala. He had his primary education from Kerala itself and went on to create a lot of name in the world of acting. And let's hear more.
1: എല്ലാ കനലുകളും ഈ നെഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരറിയുന്നത്? സന്തോഷം മാത്രമേ പങ്കുവെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ദുഃഖം ഒരിക്കലും പങ്കുവെക്കരുത്. അതിന്റെ തീയിലിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് വേഗുന്ന ഒരു സുഖം.
2: आज के दिन जन्म हुआ था मोगूबाई कुर्दीकर का. जयपुर अतरौली घराना की जानी मानी शास्त्रीय गायिका थीं. वो अल्लादिया खां की प्रमुख शिष्या और 20वीं सदी की लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय महिला गायिका किशोरी अमोनकर की गुरु और माता के रूप में भी जानी जाती हैं. और अब इजाजत दीजिए विशाल और सायरा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की. नमस्कार.
3: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी. इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा. नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है.
4: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर. 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है. 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कम्प्लीट होगा. दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर. 46 किलोमीटर का ये होगा. 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा.
3: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी.
4: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ. इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में. 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में. और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया.
3: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी. इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो अपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है. लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है. मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी. NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है. इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है. उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करेगा. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत के

0: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। महाराष्ट्र में मुंबई के नहवा शेवा और संताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में शौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में जारी संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet today approved a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the total capital cost of the project stands at over 14,400 crore rupees.
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे।
3: द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज अ फुल्ली एलिवेटेड 6-lane एंड 4-lane कॉरिडोर अलोंग द वरुणा रिवर। इट विल हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 43 किलोमीटर्स विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,998 करोड़ रुपीस एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सिमेटली 4 इयर्स। द सेकंड प्रोजेक्ट इज अ फुल्ली एलिवेटेड 6-lane कॉरिडोर रनिंग अलोंग साइड द गंगा रिवर। इट विल स्पैन 46 किलोमीटर्स एंड इज एस्टिमेटेड टू बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 14,448 करोड़ रुपीस।
2: 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: Mr. Vaishnav said the cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. He said building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The Cabinet approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. Mr. Vaishnav said the scheme will be implemented for the next 5 years. The Cabinet also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom came into effect today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. Extending his greetings on the occasion, Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that these agreements will create new opportunities for businesses, entrepreneurs, farmers, manufacturers, MSMEs and skilled workforce in the country. Prime Minister Narendra Modi said CETA and the Agreement on Social Security are a significant moment in the partnership of India and the United Kingdom. On the Agreement on Social Security or the Double Contribution Convention, the Prime Minister said it will provide invaluable support to Indian professionals working temporarily in the UK and strengthen the competitiveness of Indian enterprises. Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Chaudhary has emphasized that India must build a skilling ecosystem based on trust, quality and lifelong learning to make the country the global skill capital.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:11 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का। गाते गुनगुनाते में आपके साथ आज मैं हूँ नईम अख्तर और हम आपको आज क्या सुनवाने वाले हैं, कौन से गीत 80 और 90 के दशक के सुनवाने वाले हैं, इसका अंदाज़ा आपको करवाने के लिए एक साउंड सुनवा रहे हैं, एक आवाज़ सुनवा रहे हैं। पहचानिए कि ये आवाज़ किसकी है।

सही पहचाना, सही पहचाना, ये सीटी की ही आवाज़ है। अगर आप में से किसी ने ये सोचा कि ये फिल्म खामोशी की आवाज़ है, तो खामोशी तो खामोशी होती है ना, खामोशी में आवाज़ कैसे होगी, खामोशी की आवाज़ तो खामोशी ही होती है। लेकिन आज हम आपको जो गीत सुनवाने जा रहे हैं उसका क्लू हमने आपको इस गीत की सीटी सुनवा कर ही दी है। हालांकि ये जो फिल्म थी ये 1970 के दशक की फिल्म थी, ये गीत हम आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है गाते गुनगुनाते वो 80 और 90 के दशक के ऐसे गीतों का है जो गाने सुपरहिट भी हुए और आपने पसंद भी किए। तो उन्हीं कुछ गीतों को लेकर आपके पास आए हैं जिन गीतों में और कुछ हो ना हो, सारी आवाज़ों के बीच एक आवाज़ जिसे सीटी की आवाज़ कहते हैं वो आवाज़ ख़ास तौर पर उभर कर आती है। कुछ गीतों को सुनते हैं, कुछ सीटी के बारे में बात करते हैं, कुछ पुराने गीतों को याद करते हैं जो जिनमें सीटी थी, और कुछ 1990 के दशक के बाद के जो गीत हैं, नए सहस्राब्दी के गीत, उनको भी याद करते हैं। फिलहाल सुनते हैं इस गीत को जो 1998 में आया था।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 5:26:20 कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में आपके साथ आज कुछ ऐसे गीत हैं जिन गीतों में संगीत के वाद्य यंत्रों के साथ साथ गायकों की आवाज़ के साथ साथ एक ऐसी आवाज़ भी शामिल है जो आवाज़ हमें अपने आसपास अक्सर सुनने को मिलती रहती है। और आज भी ऐसा दौर बना, ऐसा वक्त बना कि आज भी इस आवाज़ को फिल्मों में भी, फिल्मी गीतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये करीब फिल्म की धुन है जिसके अंदर आपको सीटी की आवाज सुनाई देती है। खैर, ये फिल्म तो आई थी 1998 में और जो दो गीत हमने आपको सुनाए थे, 1998 की फिल्म सत्या सपने में मिलती है और 1993 की फिल्म बाजीगर ऐ मेरे हमसफर, इन्हीं दोनों गीतों में आपने भरपूर सीटी सुनी। अब सीटी इन्हीं दिनों में आई हो, इन्हीं सालों में आई हो, ऐसा भी नहीं। अगर हम थोड़ा सा क्या, बल्कि फिल्मों की एकदम शुरुआत में जाएं, जब टॉकीज़ की शुरुआत हुई थी तो 1941 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था खजांची। खजांची फिल्म में एक गीत था सावन के नज़ारे हैं, और सावन के नज़ारे हैं इस गीत के अंदर हमें सुनने को मिलती है सीटी। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग इस गीत में साइकिल पर जा रहे हैं और मस्ती के आलम में है, सीटी बजाते हुए जा रहे हैं, जैसे कि यूथ होता है, युवा होते हैं, युवा सीटी बजाना उनको पता भी नहीं चलता कि क्या कर दिया उन्होंने, सीटी बजाते हैं और चलते हैं आगे। ऐसा ही कुछ इस गीत में दिखाया गया था, लेकिन ये कुछ ऐसे दौर की बात है, 1941 की बात, जिस दौर में सीटी बजाना कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। संभ्रांत घरों के लोग या सभ्य परिवारों के लोग सीटी नहीं बजाते थे, सीटी बजाना बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था। और यही वजह थी कि जब इस गीत में, खजांची फिल्म के सावन के नज़ारे हैं गीत में, सीटी बजाती हुई दिखाई गई तो समाज में एक शोर मच गया। चारों तरफ ये कहा जाने लगा कि समाज को बिगाड़ने का काम ये फिल्में और फिल्मी गीत करने वाले हैं, क्योंकि इस गीत में देखो जी सीटी बजाई गई है। और माना यह जाता है कि शायद यही वो गीत था हिंदी फिल्मों का जो पहला गीत था जिसमें सीटी की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था। तब चाहे शोर मचा हो या ना मचा हो, लेकिन इस गीत के जरिए एक नींव तो डल ही गई। फिर उसके बाद 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत आई, इसमें भी सीटी अशोक कुमार को बजाते हुए दिखाया गया, लेकिन तब तक भी कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया था समाज में कि उसको बहुत माना जाता, लेकिन हाँ गीत हिट हुआ था। उसके बाद 1955 का साल आया, तकरीबन 15 साल बाद, यानी कि डेढ़ दशक बीत चुका था, फिल्म आई न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक गीत आया नखरेवाली, किशोर कुमार वाला गीत। जी हाँ, बिल्कुल सही याद आया आपको, इस गीत को कभी सुनिएगा, क्योंकि आज हम इस गीत को आपको नहीं सुनवा सकते, 1955 की ये फिल्म है और हम 80 और 90 के दशक के गीत सुनवा रहे हैं, तो इस गीत में भी आपको सीटी सुनाई देगी। लेकिन इन 15 सालों में, 14-15 सालों में समाज में इतना बदलाव जरूर आ चुका था कि तब तक सीटी की एक्सेप्टेंस तकरीबन हर घर में थोड़ी बहुत हो चुकी थी, युवाओं में तो पहले ही थी, और ये गीत जो था ये भी बहुत हिट हुआ। ये हुई पुरानी कुछ बात। और अगर हम वापस आए 80 और 90 के दशक में, तो एक फिल्म आई थी 1991 में, सौदागर। ये एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म ने प्यार को प्यार की जैसे लफ्ज को एक नई परिभाषा दी। इससे पहले प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, ये सारे शब्द हुआ करते थे। फिर होते होते 70 और 80 के दशक में, 70 के ही दशक से बल्कि आई लव यू बहुत फेमस हो गया था। लेकिन ये वो फिल्म थी सौदागर जिसने आई लव यू को शॉर्ट किया, उसको ईलू बनाया, और ईलू उस जमाने में इतना हिट हुआ था कि हर युवा की जबान पे ईलू सुनाई दिया करता था। लेकिन हम यहाँ पे ईलू का जिक्र इसकी इस खास बात की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इस गीत में भी आपको बहुत खूबसूरत सीटी की आवाज सुनाई देती है।

गुनगुनाते और गाते गुनगुनाते में हम आज लाए हैं कुछ ऐसे गीत जिन गीतों में हम गायकों की आवाज़ के साथ साथ आपके लिए सीटी की आवाज़ भी लेकर आए हैं। 1957 की बात करते हैं। 1957 में एक फिल्म आई, फिल्म 9 तो 11। उसमें आंखों में क्या जी, रुपहला बादल, हम हमहरा ही प्यार के, हमसे कुछ ना भूलिए, मतलब अगर आप उसको सुनेंगे 9 तो 11 फिल्म के, तो तकरीबन सभी गीतों में उसमें आपको सीटी सुनाई देगी। इसी साल 1957 में ही जमाना नाम से एक फिल्म आई थी। इसमें एक बहुत ही मज़ेदार बात यह हुई कि इस फिल्म के गीत चले बजाते सीटी में दो खास बातें हुई हैं। एक तो ये कि इस गीत में ही सीटी शब्द आया है, यानी कि एक्सेप्टेंस यहां तक पहुंच चुकी थी सीटी की। यहाँ तक एक्सेप्टेंस पहुँच चुकी थी सीटी की कि सीटी तो बजाई जा ही रही थी गीत में, इस गीत में सीटी शब्द का भी इस्तेमाल हुआ और बाकायदा गाया गया चले बजाते सीटी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इस गीत की ये थी कि इस गीत को जिन दो अदाकाराओं पर पिक्चराइज किया गया था वो थी शुभा खोटे और अनिता गुहा। यानी ये गीत शायद फिल्म जगत का, हिंदी फिल्म जगत का पहला ऐसा गीत था जिसमें दो महिलाओं को फिल्म के पर्दे पर सीटी बजाते दिखाया गया था। उसके बाद 1958 के साल की बात करें तो कई फिल्में आईं जिसमें कई गीत थे। देख कबीरा रोए का, हम पंछी मस्ताने, आखिरी दांव का, हाय उनकी वो निगाहें, हावड़ा ब्रिज का तो बहुत ही खूबसूरत गाना था ये क्या कर डाला तूने, जिसमें अशोक कुमार मधुबाला दोनों ही लगातार सीटी बजाते दिखाई देते हैं और बहुत ही खूबसूरत मधुर नगमा है। इसके अलावा इसी साल यानी 1958 में ही घर संसार फिल्म का ये हवा ये नदी का किनारा और अनाड़ी फिल्म का किसी की मुस्कुराहटों पे होनिसार, ये 1959 की फिल्म थी। फिर 1960 में फिल्म आई बसंत जिसमें चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, ये गीत भी फिल्म में गाने में सीटी लिए हुए था अपने साथ। यूं 50 का दशक ख़त्म हुआ और 60 के दशक की शुरुआत हुई। 1965 में पिकनिक फिल्म में आँचल को उड़ाने दो, 1969 में खामोशी फिल्म में तुम पुकार लो जिससे हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 1970 में कटी पतंग फिल्म का ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, 1975 में ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे आपको याद होगा फिल्म के गीत के आखिर में सीटी की एक लंबी धुन सुनाई जाती है, और ऐसे ही 1975 में फिल्म जूली के गीत दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, इस गीत में भी आपको सीटी सुनाई देगी। तो ये सारे गीत थे जिनमें गीत जब शुरुआत होती है तो उसमें सीटी सुनाई देती है, पर एक गीत हम आपको सुना रहे हैं 1988 की फिल्म का। फिल्म उस वक्त बेहद हिट हुई थी, एन चंद्रा की फिल्म तेजाब, और इस फिल्म के वैसे तो सभी गीत बहुत अच्छे थे लेकिन एक गीत ऐसा भी था जो चंकी पांडे पर, अनिल कपूर पर और उनके दोस्तों पर फिल्माया गया है। रात के वक्त गाड़ी ड्राइव करते हुए वो इस गीत को गाते हैं, गीत के बोलते सो गया ये जहां, और उस गीत में सीटी आती है। ध्यान दीजिएगा, पहले अंतरे के बाद आपको इस गीत में सीटी सुनाई देगी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी FM गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:54 यानी सिर्फ 6 मिनट हमारे पास बचे हैं आपसे बात करने के और आप तक कुछ और गीत पहुंचाने के। चलिए फटाफट से हम कुछ और गीतों की बात कर लेते हैं, सीटी वाले गीतों की बात। नए सहस्त्राब्दी में आए अगर हम तो सन 2000 में फिल्म आई थी मोहब्बतें, इसमें चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं में जो सीटी है वो आपको याद आ गई होगी। और मैं हूं ना 2004 की फिल्म किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। इसके अलावा लगे रहो मुन्ना भाई का 2006 की फिल्म का टाइटल ट्रैक बोले तो बोले वो कैसी होगी हाय। फना फिल्म का 2006 का गीत चांद सिफारिश जो करता हमारी। 2006 की ही एक और फिल्म थी धूम 2 जिसका गीत था धूम अगेन। और 2006 में ही ICU नाम से एक फिल्म आई थी जिसका गीत था सुबह सुबह। आला बर्फी ये 2012 की फिल्म बर्फी का गीत था। 2015 में रॉय फिल्म का गीत आया तू है कि नहीं। और मजेदारी वाली बात यह है कि 2014 में जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की फिल्म आई हीरोपंती जिसमें एक गीत आया जिसने ये बताया कि सीटी ने अब इतना लंबा सफर जरूर तय कर लिया है कि 2014 तक पहुंचते वो सीटी से विसल हो गई है। तो इस गीत में के बोल थे विसल बजा। खैर अभी आपको सुनवा रहे हैं 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है का एक गीत जिस गीत में आपको सीटी सुनाई देगी। और गीत तो खैर है ही अपने आप में बहुत खूबसूरत।

वापिस अगर 1980 के दशक में आए तो 1981 की फिल्म नसीब का चल मेरे भाई, 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता का जिंदगी मिलके बिताएंगे, 90 के दशक में 1992 की फिल्म खेल का एक बात मान लो तुम, 1995 में बरसात फिल्म का हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, माचिस फिल्म का 1996 की जो फिल्म थी छोड़ आए हम वो गलियां, यस बॉस का 1997 की फिल्म मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, और 1997 की ही फिल्म गुप्त का मेरे ख्वाबों में तुम।

1998 की फिल्म गुलाम का गीत आदित्य खंडाला में भी आपको सीटी सुनाई देती है, और 1998 की ही फिल्म प्यार तो होना ही था का टाइटल ट्रैक प्यार तो होना ही था। करीब फिल्म के तो हमने दोनों गीत आपको एक सुनवा भी दिया, एक का इंस्ट्रूमेंटल लगातार बैकग्राउंड में चल रहा था तो आपने सुना होगा। 1999 में फिल्म आई हम साथ साथ हैं, इसमें ABCDE वाले गाने में भी आपको सीटी सुनाई दी, तो सीटी सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाने का जहां भी मौका लगे बजाते रहिए। नईम को अभी गाते गुनगुनाते से इजाजत दीजिए। 100.1 MHz पर आपके लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा विमलेश के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रूपये से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कम्पेरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था, आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगोआपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: expanding the Indian Railways network by about 145 kilometres. The Cabinet also cleared the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom came into effect today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market. Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that these agreements will significantly expand market access, strengthen trade and services, and facilitate greater mobility for professionals. Prime Minister Narendra Modi said CETA will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. In an article in an English daily, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assured that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by placing them in the sensitive list. He added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. The first Indian shipment to the United Kingdom after the operationalisation of the free trade agreement between two countries was flagged off by UK Deputy High Commissioner Chandru Iyer in Bengaluru. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today said the government is making efforts through various schemes to provide the benefits of scientific research directly to the farmers. The minister said this while addressing the ICAR Technology Portfolio for Corporate Social Responsibility Conclave 2026 in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met with European Union Commissioner for Startups, Research and Innovation, Ekaterina Zaharieva, at Brussels in Belgium. In a social media post, Dr. Jaishankar said during the meeting they discussed opportunities for research in clean and green energy technologies. The U.S. reimposed a naval blockade on Iran and intensified its airstrike campaign today in retaliation for Tehran's attacks on ships trying to pass through the Strait of Hormuz. Iran's paramilitary Revolutionary Guard threatened today to halt all energy exports from West Asia over the blockade. In FIFA World Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta in the US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक के साथ मैं प्राची प्रिया श्रोताओं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्ष 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए आधिकारिक रूप से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है 13 जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी की औपचारिक शुरुआत कर दी इस अवसर पर उन्होंने भारत का शांति विजन भी प्रस्तुत किया आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कैसे काम करती है भारत की उम्मीदवारी क्यों महत्वपूर्ण है भारत का शांति विजन क्या है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग क्यों लगातार तेज होती जा रही है श्रोताओं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इसी परिषद में लिए जाते हैं आइए अब विस्तार से समझते हैं कि सुरक्षा परिषद आखिर काम कैसे करती है उसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं और भारत की ये उम्मीदवारी क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है
3: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी परिषद की होती है दुनिया में कहीं युद्ध या संघर्ष की स्थिति बनती है तो समाधान का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होती है यदि स्थिति और गंभीर हो जाए तो परिषद युद्ध विराम की अपील आर्थिक प्रतिबंध हथियारों पर रोक या

0: यात्रा प्रतिबंध और आवश्यक होने पर सामूहिक सैन्य कार्रवाई जैसे निर्णय ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके निर्णयों का पालन सभी सदस्य देशों के लिए अनिवार्य होता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है। हर वर्ष 5 सीटों पर चुनाव होते हैं और कोई भी देश लगातार 2 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता। इन चुनावों में मतदान संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। किसी देश को निर्वाचित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश मतदान करें तो किसी उम्मीदवार को कम से कम 129 मत हासिल करने होंगे। यदि पहले दौर में कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो आगे भी मतदान कराया जाता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को आवश्यक समर्थन नहीं मिल जाता। भौगोलिक संतुलन बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटें अलग अलग क्षेत्रीय समूहों के लिए निर्धारित हैं। इनमें अफ्रीका और एशिया प्रशांत समूह के लिए 5 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए 2 तथा पूर्वी यूरोप के लिए 1 सीट निर्धारित है। भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की 1 सीट पर अपनी उम्मीदवारी पेश की है। इस सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा। चुनाव जून 2027 में होने हैं और इस बार मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के चुनावों में कई अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हुए सुरक्षा परिषद के चुनाव में जर्मनी जैसे प्रभावशाली देश को भी पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया के सामने हार का सामना करना पड़ा। इससे ये स्पष्ट हुआ है कि अब केवल कूटनीतिक प्रभाव ही जीत की गारंटी नहीं है। यही कारण है कि इस चुनाव को आगामी संयुक्त राष्ट्र चुनावों की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाओं में से एक माना जा रहा है।
1: श्रोताओं, मौजूदा वैश्विक हालात में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका पहले से कहीं अधिक अहम हो गई है, लेकिन बदलती चुनौतियों के बीच ये बहस भी तेज हुई है कि क्या मौजूदा व्यवस्था आज की जरूरतों के अनुरूप है। ऐसे समय में भारत ने अपनी उम्मीदवारी के साथ शांति विजन प्रस्तुत किया है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावी और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा भी दिखाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अपनी उम्मीदवारी के साथ शांति विजन भी दुनिया के सामने रखा है। इसका पूरा अर्थ है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, यानी नियमों, विश्वास और ईमानदारी के आधार पर सभी के समग्र विकास को सुरक्षित करना। भारत का मानना है कि आज की दुनिया में शांति, सुरक्षा और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी एक क्षेत्र में प्रगति और दूसरे क्षेत्र में संघर्ष लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इसीलिए आज की दुनिया को ऐसा वैश्विक तंत्र चाहिए जहां सभी देशों की आवाज सुनी जाए, जहां ग्लोबल साउथ की आवाज को बराबर महत्व मिले। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो, समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे, आतंकवाद और उसके वित्त पोषण पर प्रभावी कार्रवाई हो, नई तकनीकों का जिम्मेदारी से उपयोग हो और जलवायु न्याय तथा सतत विकास को भी समान महत्व मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी बदलती दुनिया के अनुसार खुद को बदलना होगा। आज भी परिषद की संरचना काफी हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है, जबकि दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति अब काफी बदल चुकी है। ऐसे में भारत, ब्राजील, जर्मनी और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग लगातार उठ रही है। भारत का ये मानना है कि सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए। कई बार स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार के कारण महत्वपूर्ण फैसले नहीं हो पाते। इसीलिए विशेष रूप से युद्ध, आतंकवाद, नरसंहार और मानवीय संकट जैसे मामलों में वीटो के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कई बार स्थायी सदस्यों के बीच मतभेद के कारण महत्वपूर्ण फैसले अटक जाते हैं। हाल के वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया जैसे मुद्दों पर भी ये स्थिति देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग नई नहीं है। वर्ष 2005 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने मिलकर G4 समूह का गठन किया। इस समूह का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और इसे आज की वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रतिनिधिक बनाना है। चारों देश एक दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन भी करते हैं। पिछले दो दशकों में G4 लगातार ये कहता रहा है कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना अब बदलती दुनिया की वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाती, इसीलिए परिषद का विस्तार किया जाए, विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व मिले और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और प्रभावी बने। इसी दिशा में G4 ने सुरक्षा परिषद के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा। इसके तहत परिषद का विस्तार कर इसे 25 या 26 सदस्य ही बनाने की बात कही गई। प्रस्ताव में 6 नए स्थायी सदस्य और 14 या 15 अस्थायी सदस्य जोड़ने का सुझाव दिया गया। नए स्थायी सदस्यों में 2 अफ्रीका, 2 एशिया प्रशांत, 1 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा 1 पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से चुने जाने का भी प्रस्ताव है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: श्रोताओं, भारत ने अपनी उम्मीदवारी के साथ शांति विजन के माध्यम से वैश्विक शांति, सुरक्षा और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था की अपनी सोच भी दुनिया के सामने रखी है। ऐसे में इस पहल की प्रासंगिकता और बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका को लेकर हमने बात की पूर्व राजदूत अनिल वाधवा से। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: भारत का शांति विजन केवल युद्ध रोकने तक सीमित नहीं है, इसमें आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा वैश्विक दक्षिण की आवाज को निर्णायक प्रक्रिया में उचित स्थान दिलाने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, वही इस पहल की आधारशिला है। भारत यह भी स्पष्ट रूप से मानता है कि 21वीं सदी की वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार और विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। इसीलिए भारत की उम्मीदवारी केवल एक सीट प्राप्त करने का प्रयास नहीं है, बल्कि एक अधिक न्याय संगत, समावेशी और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण का एक संकल्प है।
1: श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत का योगदान भी उसकी इसी सोच को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बाद से भारत लगभग 50 शांति अभियानों में करीब 3,00,000 सैनिकों और कर्मियों को भेज चुका है। वर्तमान में भी भारत के 4,300 से अधिक कर्मी 10 शांति अभियानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत का लक्ष्य केवल वर्ष 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करना नहीं है, उसका व्यापक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधिक, अधिक प्रभावी और आज की दुनिया की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।
3: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्धिः अद्यतन कार्यान्वितो जातः। अयं सन्धिः भारतस्य कृषकेभ्यः, उद्यमेभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यश्च नवीनां गतिं प्रदास्यतीति प्रख्यातवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः आश्वसितवान् यत् व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्ध्यन्तर्गतं दुग्धोत्पादनानि, शाकानि, खाद्यतैलानि इत्याख्यानि कृषि उत्पादनानि पूर्णरूपेण सन्ति सुरक्षितानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः समाजस्य महते कल्याणाय आयुर्वेदे आधुनिक प्रविधीनाम् उपयोगाय आह्वानं व्यदधात्। भारतेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः परिष्काराय कृतः दृढाग्रहः, संकेतितञ्च यत् विषयेस्मिन् शिथिलत्वेन संयुक्त राष्ट्रे जनानां क्षीयते निरन्तरं विश्वासः। अद्यतावत् ओडिशा राज्ये प्रचण्ड वृष्ट्यै प्रसारितास्ति रक्तवर्णीया संचेतना। अपि च फीफा विश्वचषके अद्य रात्रौ एटलांटा क्रीडांगणे द्वितीये उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे अर्जेंटीना देशः इंग्लैंड देशेन साकं प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् अद्यतन कार्यान्वितः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्धिः

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaura Dhawan Lal with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्रिया एंड उदयन, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains 130 points. Nifty settles at 24,079. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. And Cabinet approves Semicon 2.0 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Also gives nod to national investment policy for Urea 2026.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 130 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,079 पर बंद हुआ. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार समझौता और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है. और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 तथा यूरिया 2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी.

0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम जानें कि आज दिन के अंतराल में प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 130 अंक यानी लगभग 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.3% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.7% की बढ़त देखी गई। इससे पहले बाजार बढ़त के साथ खुले और सत्र के पहले हिस्से में तेजी रही। वहीं दूसरी ओर दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। हालांकि बाजार कुछ समय के लिए घाटे में आ गए थे, लेकिन सूचकांकों ने जल्दी ही अपना रुख बदला और बचे हुए सत्र के दौरान उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex rose 130 points, almost 0.2% up, to close at 77,185. The Nifty added 26 points, or 0.1%, to settle at 24,079. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 gained nearly 0.3%, and the small-cap 100 index jumped almost 0.7%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher during the first half of the session. However, both indices gave up their early gains in the latter half amid profit booking. Although the indices slipped briefly into negative territory, they soon recovered and traded in a choppy range for the remainder of the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एटर्नल 3% से अधिक, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.8% और SBI के शेयरों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में पावरग्रिड और लार्सन एंड टूब्रो में लगभग 1.7% और अधिक तथा टाटा स्टील के शेयरों में 1.5% से अधिक की गिरावट आई।
0: In sectoral indices on the BSE, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, capital goods jumped 1.3%, PSU banks rose over 0.9%, and hospitals as well as consumer durables added more than 0.7%. In contrast, utilities dropped nearly 1.3%, metal fell 1%, and IT lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,207 advanced, 2,081 companies declined, and 154 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.97 पर कारोबार कर रहा था। उदयन, कल हमने देखा कि बाजार में गिरावट आई और आज हमने देखा कि बाजार में एक हल्का सा हम कह सकते हैं कि हरे दायरे में कारोबार करते हुए हमारे सूचकांक नजर आए। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा कि फाइनेंशियल जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, उसने आज बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या कारण रहा होगा इसका?
2: देखिए, जब रिस्क ऑन थोड़ा पॉजिटिव मूड रहता है
1: जी,
2: तो फाइनेंशियल्स नॉर्मली, क्योंकि हमारे जो सूचकांक है उसका एक बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो फाइनेंशियल्स का होता है, तो वो नेचुरली वहाँ उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट चला जाता है जो प्रोमिनेंट कंपनीज होती हैं। तो जब आपका स्लाइटली रिस्क ऑन बिहेवियर है, जब आपका पॉजिटिव सेंटिमेंट है या रिबाउंड कर रहे हैं, तो तब उसकी तरफ रुख जरूर होता है। बाकी जो मोर और लेस जो है, जो नंबर्स की उम्मीद हो रही है, बाकी जो चीजें हो रही हैं, इट्स मोर और लेस ऑन ट्रैक, तो दिक्कत वहां पे बिल्कुल नहीं है। जो

0: जो निर्णय लिए जाते हैं वहाँ पे फेडरल रिजर्व, उसका असर ग्लोबल मार्केट्स, विश्व के मार्केट्स पे भी पड़ता है और हमारे देश में भी पड़ता है
1: प्रत्यक्ष रूप से. आज हमने अपने बैंकिंग सेक्टर में भी देखा
0: बिल्कुल,
1: कि उसमें उछाल
0: बिल्कुल,
1: आया.
0: बिल्कुल, बिल्कुल. So, वो एक असर पड़ जाता है. तो वहाँ पे मुद्रास्फीति जो है ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं को ही असर करता है, वो हमारे बाजारों पर भी असर पड़ता है. वहाँ पे अगर बुलिश रहता तो यहाँ पे भी आता है.
2: Right. Moving on to our next story, the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom came into force today. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Prime Minister Narendra Modi said that the CETA and the agreement on social security is a significant moment in the partnership between India and the United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added that the CETA will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. Talking to Akashvani News, High Commissioner of the UK to India, Lindy Cameron said that this agreement is a great deal for both sides.
3: It's just wonderful to be here today on the 15th of July, celebrating the deal going into force, making it faster, cheaper, easier to do business between the UK and India. I mean, after so much hard work on both sides, and huge credit to the Ministry of Commerce and Industry here, who've done a brilliant job. My team too have done an amazing job. It's a great deal for both sides. We have very complementary economies.
2: Speaking to Akashvani, Global Trade Research Initiative founder Ajay Srivastava highlighted the key sectors benefiting from the deal.
4: The deal aims to increase trade between the two nations from $66 billion to a massive $100 billion in the next few years. So what's in it for India? Exports of Indian textiles, garments, footwear, cars and seafood gets a boost from tariff cuts by the UK government. Plus, a new tax rule ensures that Indian professionals working temporarily in the UK won't get double taxed on the social security. On the other side, Indian consumers can look forward to cheaper prices on British industrial goods, silver, luxury cars.
2: While speaking to our news correspondent, Executive Director of Indian Chamber of Food and Agriculture, Sanjay Sethi, said that this agreement will give a boost to the agriculture sector.
5: इससे एग्रीकल्चर को बहुत विशेष लाभ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि राइस, चाय, स्पाइसेस, मैरिन प्रोडक्ट, इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इन सब उद्योगों पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है. इसके साथ साथ जो ग्रोथ है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि यूके में प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जाता है बड़ी भारी तादाद में, और इंडिया में सब तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को अब अपनी कमर कसनी होगी. FSSAI ने फूड की सेफ्टी के लिए बड़े अच्छे कदम उठा रहे हैं और उसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट से तुरंत देखने को मिलेगा. इस एग्रीमेंट की सक्सेस अल्टीमेटली इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारे सब स्टेक होल्डर्स, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो मंडियों के व्यापारी हैं या फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, ये सब मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को एक नई लंबे समय तक ग्रो होने वाली अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, जिससे कि रूरल प्रोस्पेरिटी भी हमारी बढ़े और एक सस्टेनेबल लंबे समय तक ग्रोथ हमको मिले.
2: Talking to Akashvani News, Executive Director of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Sabyasachi Ray, said that the gems and jewellery sector will be immensely benefited by this agreement.
6: See, gem and jewelry sector is a very large sector from India. We are employing more than 5 million people across the country. Though our exports is $30 billion, but it reaches every corner of the country. All types of jewelry manufacture, whether you talk about Western jewelry, ethnic kind of jewelry, handmade jewelry. And we are one of the largest exporter of diamonds in the world. Like 14 out of 15 diamond set in jewelry anywhere across the world is manufactured in India. And also emerald, we are again the largest manufacturer of emeralds in the world. Tanzanite, we are the sole manufacturer of cut and polished tanzanite across the world. So we are having more than 200 clusters of manufacturing. All these will be benefited with this agreement.
1: और अन्य खबरों में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को भी मंजूरी दी है. नई दिल्ली नई दिल्ली में हुए एक प्रेस वार्ता में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमिकॉन 1.0 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को

0: और आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि ये योजना आर्थिक विकास में मदद करेगी, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करेगी। मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है। 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए हैं क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी। इसमें करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे।
0: मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया बनाने वाली इकाइयां लगाने के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। नई नीति में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए स्थिर और परिवर्तनशील लागत को अलग अलग करने के साथ कई और महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। उद्यन सेमिकॉन 2.0 उद्देश्य जो लेकर के भारत सरकार चल रही है वो वैश्विक सेमीकंडक्टर को मानचित्र पर लाने की एक परिकल्पना है। ये किस तरीके से फलीभूत होते हुए आप देखते हैं?
2: देखिए, अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो जो चिप्स हैं, वो हम हर चीज़ तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो सक्षमता है, वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड चिप्स बनाने में आप सीधा तो नहीं जा सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे वो जो गैप है कटिंग एज और आपके बीच में, उसको कम करना है। तो आपने देखा होगा कि इन सरकार ने और दूसरे उद्योगों ने कंपनियों ने एक प्लान बना रखा है कि कैसे वो गैप को धीरे धीरे करके कम करना है। तो ये उसका ही हिस्सा है जिसमें वो आप आगे बढ़ रहे हैं और आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जो चिप्स हैं वहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो हमारे जो कटिंग एज और हमारे बीच में इतना बड़ा फासला जो है वो कम हो जाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको वेरी एडवांस चिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई जगह में रेगुलर यूज़ के जो हैं वहाँ पे आप उसके लिए भी चाहिए होता है, उसके लिए भी आप अगर इंपोर्ट करें वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाए। तो जो सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में बात हो रही है, तो वो आप देश में ही बने और वो आप विश्व के लिए बनाएं, तो उसी का ही एक हिस्सा है, वो इसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा ही है।
0: जी, आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने को कहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। यूनिट ने स्पष्ट किया कि भारत में क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। PIB ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
3: Global crude oil prices extended gains today amid escalating tension in West Asia. Brent crude was trading over 0.3% up at $85.03 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $79.66 per barrel when reports last came in. Brief comment, Udayan, on the rate of rise of oil.
2: Obviously, we don't like this. We import most of our oil from abroad. Mm-hmm. But I think from the market's point of view, the figure is 90. As long as it remains below 90, I think the markets and the general sentiment will be able to handle it. But the every time it's going to increase, you're going to see the first place, you're going to see an impact would be on the value of the rupee. That's where it starts. Then it'll start. It impacts your equity and other forex inflows. Mm. So, what we need to, if there is somebody who's watching this, what we need to hope for is that it doesn't cross the figure of 90, because it's got fiscal.

0: implications and other implications as well. So we would want it to be lower it gets, the better it is. But we don't stay in an ideal world, which we have realized. So, you know, we hope it doesn't go up too
1: much. Right. Fingers crossed. Yeah, absolutely. Yeah, yeah. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% down at 1,42,560 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% down at 2,22,200 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona mamuli badhat ke saath 1,42,328 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi 0.3% ludhak kar 2,22,488 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यन जाते जाते, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए एक संक्षिप्त टिप्पणी में सोने और चांदी के भाव पर चाहूंगी.
0: देखिए, ये सोने की पॉपुलैरिटी बरकरार ही रहेगी जब तक आपके ये दो जो संघर्ष चल रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आपके स्टॉक फाइनेंशियल एसेट्स पे होता रहता है. तो वो बट ये ख्याल रहे कि आप उसमें एक्सेस ना जाए. अगर 100 रुपए निवेश करें, 10 रुपए से ज्यादा ना सोने में हो और वहीं पे बरकरार रखें. तो अगर और ये नहीं कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है, बाकी ETFs वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं.
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदयन कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए.
0: धन्यवाद.
1: Once again, thank you, Udyan. And now, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains 130 points. Nifty settles at 24,079. India-UK comprehensive economic and trade agreement comes into effect. And cabinet approves Semicon 2.0 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Also gives nod to national investment policy for Urea 2026. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो आपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की दो दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। द स्कीम प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीस इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created.
2: 3,000 direct jobs nay create honge.
1: In other major decisions, the government gave nod to the development of an over 43-kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor connecting National Highway 31 and the Varanasi Ring Road along the river Varuna for decongestion of Varanasi city in Uttar Pradesh. The cabinet also cleared a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. It approved 2 multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. The cabinet also cleared the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, or CETA, between India and the United Kingdom came into effect today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, also became effective. reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the UK. The landmark deal grants zero-duty access to 99% of Indian exports in the UK market. Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that these agreements will significantly expand market access, strengthen trade and

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत ही अहम फैसले लिए हैं, जो पूरे देश के विकास के लिए, हमारे मूलभूत ढांचे के विस्तार के लिए अहम है। क्या हैं ये फैसले और किस तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेंगे, इस सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद
2: अदिति जी। आज कई तरह के अलग अलग फैसले लिए गए हैं, विभिन्न जो हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, उससे जुड़े हुए, सेमीकंडक्टर जो हमारा इकोसिस्टम है, या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, रेलवेज, या एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बहुत अहम फैसला है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से बहुत जुड़ा हुआ एक अहम फैसला लिया गया है। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 मिशन से जुड़े कैबिनेट निर्णय के बारे में क्या कहा।
4: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है।
2: इसको आप कैसे देखती हैं इस परिदृश्य में कि सेमीकॉन 1.0 कुछ वर्ष पहले लाया गया था?
3: आपने जैसा कि कहा कि बहुत ही मूलभूत परिवर्तन के लिए बड़े बड़े आज डिसीजंस लिए गए हैं। अगर आप सारे डिसीजंस को एक तार में पिरोकर देखना चाहें तो आप जानेंगी कि ये मोस्टली आत्मनिर्भरता की तरफ देश को ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों की घोषणा आज हुई है, जिसमें सेमीकॉन 2 जो आपने कहा, जो सबसे अहम आज का डिसीजन है, वो देखिए अहम इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व का जो सबसे इम्पोर्टेंट सब सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप किसी भी बड़े देश को देख लीजिए, जो जो देश इकोनॉमिक तरक्की जल्दी कर पाए हैं वो देश हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे हमारा

0: कॉम्पिटिटर है चाइना,
1: जी.
0: तो उससे हम कम्पीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में. अब मोबाइल एक्सपोर्ट्स में भारत ऑलरेडी दूसरे नंबर का देश बन चुका है. हम चाइना से ही पीछे हैं और हम बहुत तेजी से प्रगति करने वाले हैं. और सेमीकॉन की इंडस्ट्री सोनू जी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिसका सेमीकॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो पूरे स्ट्रेटेजिक सेक्टर को आज की डेट में ड्राइव कर रहा है. ना सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया की है, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दें और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें. आप जानती हैं कि माइक्रोन का बहुत बड़ा एक प्लांट ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में जा चुका है. उसके बाद केन्स का प्लांट जो 46 एकर्स में फैला हुआ है उसका भी अब शुरुआत हो चुकी है, तो उसी को आगे ले जाने के लिए आज इसकी घोषणा की गई है.
1: सो ये जो एक इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जैसे आप कह रही हैं कि 12 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे सेमीकॉन 0.1 के अंदर और ऑलरेडी 3 ऑपरेशनल हो चुके हैं, बाकियों पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है. सो आपको लगता है ये मोमेंटम जो बना रहे उसके लिए आज का जो ये अनाउंसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका किस तरह से हमारे जो रोजगार सृजन पर भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसके बारे में भी अगर आप हमें बता सकें.
0: देखिए कम से कम इससे 60,000 जॉब्स की जनरेशन का प्लान है. और आप ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. आज की डेट में करीब अगर पूरे देश का लैंडस्केप आप देखिए 105 स्टार्टअप्स हैं जो इसी सेक्टर में कार्यरत हैं इस टाइम. और जो फंडिंग सपोर्ट ले रही हैं वो ऑलरेडी जो मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ भी जा रही हैं अपने लेवल पर वो करीब 24 हो चुकी हैं. और कम से कम ये जो प्लांट्स आज की डेट में काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जैसा कि आपने देखा कि आज अश्विनी वैष्णव जी ने जब अपनी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज वहां बताई कि हमारे देश की दूर दराज गांव की लड़कियां
1: जी
0: उनको हम चिन्हित करके फिर सेमीकंडक्टर के ऑपरेशंस में उनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है. थाईलैंड जा रही हैं बच्चियां. झारखंड की एक लड़की का वहां पर वक्तव्य हुआ और उसने बताया कि वो कह रही है कि मैं कभी झारखंड से बाहर नहीं गई और सीधा थाईलैंड गई और सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लेके अब वो सेमीकंडक्टर प्लांट में कार्यरत है. तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे रूरल इंडिया की लड़कियों को ट्रेन करके और 60% जो बच्चे और जो वर्कफोर्स इस वक्त सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस में भारतवर्ष में है उसका 60% महिलाएं हैं. सो ये भी इम्पोर्टेंट है. एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि जो नया सेमीकंडक्टर का करिकुलम बन गया है क्योंकि अब हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के सेक्टर की तरफ जा रहे हैं. तो करीब 500 कॉलेज भारत के ऐसे हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है और 8,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रतिवर्ष सेमीकंडक्टर करिकुलम को पढ़ रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो ये सब कल को जाकर हमारे वर्कफोर्स को एनर्जाइज करने वाले हैं.
1: और इस सरकार ने हमेशा ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का उस पर बहुत बल दिया है, उसके विकास पर. और सड़कों को लेकर आज जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास एक 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो 6-लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर है और दूसरा प्रोजेक्ट है 43 किलोमीटर से ज्यादा 6x4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर. इन दोनों में जो 25,400 करोड़ रुपए का खर्च बताया है सरकार ने किया जाएगा, इनके प्रमुख फायदे क्या होंगे इस जो एरिया में रहते हैं लोग? और अगर हम कारोबार की बात करें, टूरिज्म की बात करें, थोड़ा विस्तार से बता सकें तो.
0: देखिए आजकल हमारे शहरों की सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर वक्त से पहुंच पाए. उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है. हम जब सड़क पर बहुत सारा वक्त जाया करते हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो वक्त जाया करते हैं तो वो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, हमारी अर्बन मोबिलिटी को लो करता है और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है. बहुत सारी ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जो हमें ये बताती हैं कि मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स अगर हम बनाते हैं तो उससे ना सिर्फ अर्बन कनेक्टिविटी बढ़ती है सोनू जी, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम बेहतर काम कर पाते हैं, हम इकोनॉमी में अपना बेहतर योगदान दे पाते हैं. तो ये एक साइक्लिकल इम्पैक्ट होता है पूरी इकोनॉमी पर. और जैसा कि कनेक्टिविटी से जाहिर सी बात है कि आसपास के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको भी बहुत गति मिलेगी क्योंकि आसान हो जाएगा आवागमन. ये जो दो प्रोजेक्ट्स वाराणसी के लिए घोषित हुए हैं इनसे बहुत सारी अर्बन मोबिलिटी की जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं जैसे ट्रैफिक चोकिंग की वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ना सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स को इसका फायदा होने वाला है, वाराणसी एक बहुत ही बड़ा इस वक्त टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया है. रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अहम

0: डेस्टिनेशन बन गया
1: इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन है।
0: और आप देखिए इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड है उसको भी गति मिलती है ना, जब ग्लोबल टूरिस्ट आते हैं और कनेक्टिविटी इंप्रूव नजर आती है, सीमलेस ट्रांसपोर्ट नजर आता है, तो फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन लेके भारत का बाहर जाते हैं, उससे फिर हमारी ग्लोबल और इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है।
1: और अगर हम वापस फिर एडवांस टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स के लिए जो अप्रूवल आया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का 62,500 करोड़ रुपीस का आउटले है 5 सालों के अंदर, और उसमें इंसेंटिव सपोर्ट की भी बात की गई है, और एक जो बड़ा उन्होंने कहा है कि लक्ष्य है कि भारतीय ब्रांड्स बिल्ड हों, इसको आप कैसे देखती हैं? अभी तक जो मोबाइल फोन में हमने प्रगति देखी है पिछले 11 वर्षों में, उसको देखते हुए ये आपको और कितना एक आगे ले जाने वाला स्टेप दिखाई देता?
0: देखिए जो मोबाइल फोन्स हैं इस वक्त भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में टॉप का प्रोडक्ट है, और हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और हम पिछले दशक के कंपैरिजन में देखें तो 2014 में हमारा जो स्थान था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में वो हम 9th स्पॉट पर थे पूरे विश्व में, और आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 3rd नंबर पर आ गए हैं। तो ये 10 साल का हमारा प्रोग्रेस है। वहीं अगर हम विद इन द सेक्टर किसी प्रोडक्ट की बात करें तो मोबाइल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो इस वक्त टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी है इंडिया से। मतलब आप समझिए कि डीजल से भी आगे हम डीजल का एक्सपोर्ट करते हैं, फ्यूल का भी कुछ एक्सपोर्ट हम करते हैं, और आज ही अश्विनी वैष्णव जी ने भी बताया कि ये टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बन चुका है। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि 10 साल पहले टॉप 100 में भी नहीं था। टॉप 100 एक्सपोर्टेड आइटम जो इंडिया से है उसमें मोबाइल फोन का जिक्र नहीं था, और आज वो टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बन गई है। तो ये जताता है और दर्शाता है कि देश में इनहेरेंट कैपेसिटी और इनहेरेंट पोटेंशियल कितना था। आपको याद है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई
1: जी,
0: आई थिंक 2021 में आई, और उसको कितना बड़ा उसका लाभ हुआ है इकोनॉमी को, कि आज की डेट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ गई है कि एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है
1: जी।
0: और सेकेंडली जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि इस वक्त भारत में 98% जो फोन यूज हो रहे हैं वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड फोन्स हैं। तो हम ना सिर्फ एक्सपोर्ट सेगमेंट में बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं मोबाइल सेक्टर में, हम इवन डोमेस्टिकली इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अब यूज भी कर रहे हैं। और जैसा कि सरकार का अनाउंसमेंट है कि इंडिया के मोबाइल ब्रांड्स को पूरे विश्व में एक्सेप्टेबिलिटी दिलानी
1: जी,
0: तो ये एक चैलेंज है। आई थिंक उसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए आज ये स्कीम लाई गई है।
1: अदिति, एक और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूरिया में आत्मनिर्भरता हम अचीव कर सकें उसके लिए जो पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई निवेश नीति यूरिया क्षेत्र से संबंधित एक कैबिनेट निर्णय के बारे में भी बात की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख मेट्रिक टन्स, उससे करीब 1 करोड़ मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। इस पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
1: इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं?
0: देखिए ये तो एक बहुत ही बड़ी स्कीम है जो आज अनाउंस हुई है, और मेरे हिसाब से इसका महत्व बहुत दूर और देर तक हम देखते रहेंगे। फॉर इंस्टेंस आपने अभी जब देखा वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ, तो जो सप्लाई चेन्स चरमराई उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर हुआ? उन्हीं कमोडिटीज पर जिस पर हमारी इम्पोर्ट निर्भरता है
1: जी।
0: जिसमें हम क्रूड को मानते हैं, हम पहले क्रूड लेकर आते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, फिर हम उससे फ्यूल बनाते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं। हमें कितना बड़ा हिट हुआ, हालांकि हमारी इकोनॉमी ने उसको बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब किया, देश ने फटाफट डाइवर्सिफाई किया सोर्सेज ऑफ क्रूड को। सिमिलरली यूरिया का इम्पोर्ट एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, और देखिए हमारा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, हम ये ना भूलें सोनू जी कि हम जितने मर्जी एडवांस्ड हो जाएं, हमारे देश में जो रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की वो किसान है, और किसान के माध्यम से फार्मिंग है और एग्रीकल्चर है, तो उसकी तरफ जो ध्यान सरकार ने आज दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे होने

0: वाला है, इससे हर प्लांट जब ये बन जाएगा, 8 प्लांट्स की घोषणा हुई है, 6 ऑलरेडी बन चुके हैं पिछले 10 साल में, 8 और बनेंगे, जब एक एक ये प्लांट कायम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, 250 करोड़ प्रति प्लांट इम्पोर्ट पे जो जा रहा है, 250 करोड़ प्रति प्लांट जो जा रहा है वो हम सेव करने वाले हैं, और 1 करोड़ मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हम बढ़ाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि आपने देखा है कि ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड होता है यूरिया, तो इसके लिए हेल्प होगी फार्मर्स की।
1: सो बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाले सारे आज डिसीजंस थे, जिसमें 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स रेलवेज के भी शामिल हैं ओडिशा और झारखंड में, जिनसे जो रोड पर भार है वो कम होगा, रेलवेज की तरफ डाइवर्ट होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगे, एनवायरमेंट को फायदा होगा। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, आप आई और आपने इन अहम फैसलों पर, उनकी बारीकियों पर हमें जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थीं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सांझ ढली का। सांझ ढली में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

कर ले। जी हाँ, लोगों के कहने से कभी किसी से किनारा मत कीजिएगा। और हम तो कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि किसी से बिल्कुल संपर्क टूट जाए। थोड़ी बहुत बातचीत हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वक्त का पता नहीं चलता कब दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तो कभी किसी से किनारा ना करें, सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश करें। और जैसे कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन संगीत आप तक पहुंचाए, और उस कोशिश में हम हमेशा लगे रहते हैं। फिलहाल आपने जो गीत सुना वो फिल्म बहू बेगम से था, और अब ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

जी हाँ, इस गीत को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये गीत बस कभी ख़त्म ना हो, चलता ही जाए। रफ़ी साहब की आवाज़ में ऐसा ही कुछ जादू है। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं समेटने की बारी आ चुकी है, और अभी आपने तेरे घर के सामने फिल्म से गीत सुना रफ़ी जी की आवाज़ में, और अब बड़े घर की बहू की फिल्म से आप ये गीत सुनेंगे, और मैं विमलेश फिलहाल आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के अधिकार संबंधी ऐतिहासिक विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी को बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समझौता किया। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं की लगभग 1,30,000 छात्राओं को इस महीने से मुफ्त साइकिल मिलेगी और दिल्ली यातायात पुलिस ने भारत मंडपम में भारत टेक्स आयोजन के लिए यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली कैबिनेट ने नागरिकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए दिल्ली विधेयक 2026 नागरिकों का समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विधेयक में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था की गई है। साथ ही बिना उचित कारण के सेवा प्रदान करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 का दंड, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 तक लगाया जा सकेगा। हालांकि किसी भी अधिकारी पर दंड लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर मिलेगा, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी कर यह निर्धारित करेगी कि कौन कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में होंगी। साथ ही आवेदक से लेकर सेवा प्राप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि कोई नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो नागरिक को अलग से अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मामला स्वतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील के रूप में पहुंच जाएगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण नियुक्त किए जाएंगे और एक स्वतंत्र वैधानिक दिल्ली राइट टू सर्विस आयोग का गठन भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी विभागों और अधिकारियों को सेवा प्रदान करने में होने वाली देरी और लापरवाही के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह कानून राजधानी में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सरल, प्रभावी तथा तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर बनेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वर्ष 2011 के दिल्ली नागरिकों का समयबद्ध सेवा प्रदान का अधिकार अधिनियम का स्थान लेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

0: इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है।
1: इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। यमुना के किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन भी किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मीनेश सी शाह ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली को 2,800 नई वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इन बसों को पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई बसें अंतिम गंतव्य तक संपर्क सुविधा बेहतर करेंगी और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौ श्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
2: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नवाचार, संवर्धन, कटाई के बाद की तकनीक, सस्टेनेबल पैकेजिंग, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए लंबे समय की साझेदारी बनाना है। साथ ही देश के औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधन के सतत प्रयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक सार्वजनिक यातायात सुनिश्चित करने के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करने का फैसला किया है। ये पहल कामकाजी महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं के दैनिक यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे उन्हें शहर के सबसे व्यस्त रास्तों पर सुबह और शाम के व्यस्ततम समय के दौरान बिना किसी रुकावट के आरामदायक सफर की सुविधा मिल सके।
3: इस प्रस्तावित नेटवर्क के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 समर्पित इलेक्ट्रिक बस सर्विस शामिल हैं। इनमें राजधानी के 15 प्रमुख व्यस्त रूट पर महिलाओं के लिए 30 विशेष बस सेवाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस समेत दूसरे बड़े शिक्षण संस्थानों और प्रमुख रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली 13 समर्पित रूटों पर 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सेवाएं शामिल हैं। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना और रेगुलर बस सेवाओं में भीड़ भाड़ को कम करना है। उन्होंने बताया कि इन रूटों की पहचान उन कॉरिडोर के आधार पर किया गया है जहां महिला यात्रियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, जिससे उनकी दैनिक यात्रा और रोजाना आने जाने की जरूरतों को सही और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि हर बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV सर्विलांस, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से सीधे जुड़े हुए पैनिक बटन, दिव्यांग जनों के लिए लो फ्लोर रैंप और जरूरत पड़ने पर बस मार्शल और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्राची प्रिया।
0: दिल्ली सरकार इस महीने से कक्षा 9 की लगभग 1,30,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित करना शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पहल छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि साइकिल से स्कूल

0: तक का सफर आसान होगा, नियमित उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा और ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी लड़की की शिक्षा दूरी के कारण बाधित ना हो। दिल्ली सरकार हर बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जुलाई महीने को पॉक्सो जागरूकता महीने के रूप में मना रही है। इसके अंतर्गत 25 जुलाई को पहली बार बच्चों की सुरक्षा पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह जानकारी दी। श्री सूद ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सीधा संवाद होगा। साथ ही पॉक्सो, साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता और संवाद के माध्यम से सरकार बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दो वर्ष पूर्व शुरू किए गए साइंस ऑफ हैप्पीनेस कोर्स को अभी तक 2000 से अधिक विद्यार्थी अपना चुके हैं। इस मूल्य संवर्धन कोर्स को डीयू के 17 कॉलेजों और एक विभाग द्वारा अपनाया गया है। इस अवसर पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में इन सभी संस्थानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों ने कोर्स को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कुलपति ने पाठ्यक्रम की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रसन्न रहना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये तभी संभव है जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विकास टांक आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की उपस्थिति में श्री टांक ने भाजपा की सदस्यता ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने युवाओं को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि युवाओं का कौशल विकास ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित दिल्ली की नींव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को अच्छी गुणवत्ता का कौशल प्रदान करने और उनके लिए नए अवसर पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को यूथ फॉर गवर्नेंस प्रोग्राम, विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, आईटीआई को अपग्रेड करने, एआई और रोबोटिक्स आधारित लर्निंग और सीएम श्री स्कूलों में आईसीटी लैब्स जैसी पहलों के जरिए सशक्त बना रही है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे भारत टेक्स के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक मथुरा रोड, भैरव मार्ग और आसपास के इलाकों में किसी भी गाड़ी को रोकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। इन सड़कों पर गलत तरीके से पार्किंग करने और निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ISBT, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें और जहां भी संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यातायात पुलिस ने नागरिकों से रिंग रोड का उपयोग करने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली के हौज खास में कल आयोजित होने वाले 48वीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बलबीर सक्सेना मार्ग, चौधरी दिलीप सिंह मार्ग, चौधरी हुकुमचंद मार्ग और गौतम नगर रोड पर यातायात बाधित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से मुख्य सड़कों और जुलूस के रास्ते के पास गाड़ियां पार्क करने से बचने की सलाह दी है। सरकार ने उस सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि

वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान कल 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी को देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आज चंडीगढ़ में हरियाणा ई वाहन नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम और फरीदाबाद की जरूरतों को देखते हुए हरियाणा ई वाहन नीति 2022 में दिल्ली की तर्ज पर आवश्यक संशोधन किए जाने पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के अधिकार संबंधी विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी को बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समझौता किया। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं की लगभग 1,30,000 छात्राओं को इस महीने में मुफ्त साइकिल मिलेगी। और दिल्ली यातायात पुलिस ने भारत मंडपम में भारत टैक्स आयोजन के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था, आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के

0: वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप्स, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उद्योग जगत से अपनी आय का एक हिस्सा किसानों, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। अमेरिका ने आज ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान ने कहा कि इन हमलों में ईरान की होर्मुज जलनबरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों पर हमला करने वाली सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ने बुशर बंदरगाह पर हमला किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved 6-lane Greenfield Elevated Corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the total capital cost of the project stands over 14,400 crore rupees and will provide seamless connectivity between NH19 and the Varanasi Ring Road, significantly decongesting the city's road network and improving urban mobility. The Union Cabinet has also approved Semicon 2.0 program with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees for the development of India's semiconductor design and manufacturing ecosystem.
2: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: Us industry ko aur aage badhane ke
1: The Union Cabinet also approved the Mobile Phone Manufacturing Scheme, that is MPMS, with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. Mr. Vaishnaw said that the scheme will be implemented for the next 5 years. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom came into effect today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero-duty access to 99% of Indian exports in the UK market. Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that these agreements will significantly expand market access, strengthen trade and services, and facilitate greater mobility for professionals. Prime Minister Narendra Modi said, CETA will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today called for Corporate Social Responsibility Support, that is CSR, to strengthen agriculture through startups, skill development and agri-tech. The minister said this while addressing the ICAR Technology Portfolio for Corporate Social Responsibility Conclave 2026 in New Delhi. He urged the corporate sector to embrace the Indian ethos of trusteeship and dedicate a part of its earning towards the welfare of

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और वक्त बेहतरीन नगमों का, और बेहतरीन नगमों के साथ मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। और सबसे पहले ये प्यारा सा गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है, आइए सुनते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
1: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवन स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का उत्सव।

सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है।

0: और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हों। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं, स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय, विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रु भाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पोहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पोहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पोहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहाँ राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
3: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
0: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
4: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको कपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी को आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्य आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में, सारी कृत्यों का नियम

0: अमर आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वरण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
1: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती है। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
2: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पहंडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहंड में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्यचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
1: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
3: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
1: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
4: This is being laid on ensuring the smooth conduct of rituals, the nitis as we call, efficient crowd management, cleanliness and sanitation, drinking water, healthcare services, disaster preparedness and effective dissemination of public information. And all the concerned departments of the state government and also many of the government of India, they are working in close coordination to facilitate a very safe, orderly and spiritually fulfilling Ratha Yatra for the devotees coming from far across the world. The Sri Jagannath Temple Administration expresses इट्स ग्रेट।

0: Gratitude to all the Sebats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers, and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city, and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
1: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
2: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। और एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने आज 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं फीफा विश्व कप के रोमांच के साथ, जो अपने चरम पर पहुंच चुका है या चरम की सीमाओं को भी पार कर चुका है। अब विश्व कप में महज 3 मुकाबले बचे हैं और हर मुकाबला तय करेगा इस विश्व कप का विजेता कौन होगा। इसी कड़ी में आज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे से खेला जाना है। आइए जानते हैं इस अहम मुकाबले में किस टीम का पलड़ा कितना भारी है।
1: एटलांटा स्टेडियम में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच फीफा विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां इस बात का फैसला होगा कि फीफा विश्व कप के फाइनल में कौन सी टीम स्पेन से मुकाबला करेगी। ये मैच विश्व कप का सबसे रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना है और दूसरी तरफ मजबूत इंग्लैंड। दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगी लियोनेल मेसी वर्सेस केन बेलिंघम की राइवलरी। दोनों टीमों के अब तक के अभियान पर नजर डालें तो अर्जेंटीना ने ग्रुप जे में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसके बाद अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे को 3-2 से, फिर प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार वापसी करते हुए मिस्र को 3-2 और क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया था। टीम की सबसे मजबूत कड़ी लियोनेल मेसी हैं, जो अब तक विश्व कप में 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस को लीड कर रहे हैं। वहीं अर्जेंटीना के सामने इंग्लैंड की टीम होगी, जो ग्रुप एल में शीर्ष पर थी। इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 32 में शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से पटकनी दी थी। प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको को 3-2 और क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराया था। इंग्लैंड ने इस विश्व कप में दबाव की स्थिति में शानदार वापसी की क्षमता दिखाई है। अर्जेंटीना के लिए उसकी मुख्य ताकत मेसी रहने वाले हैं, जिनको अगर मिडफील्ड से मैक एलिस्टर, एंजो फर्नांडिस और डी पॉल का बखूबी साथ मिलता है तो टीम 1962 के बाद लगातार 2 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन सकती है। वहीं इंग्लैंड के अटैक में केन, बेलिंघम, साका और गॉर्डन जैसे करिश्माई खिलाड़ी हैं। अगर दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड ने 6 और अर्जेंटीना ने 3 मैच जीते हैं, जबकि 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमों के आंकड़े और संतुलन से एक बात तो स्पष्ट है कि फुटबॉल प्रेमियों को आज रात एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो एक रोमांचक मुकाबला फुटबॉल प्रेमियों का आज रात इंतजार कर रहा है। और एक ऐसा ही मुकाबला खेला गया कल, जहां स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। स्पेन ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराकर विश्व कप के खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
2: स्पेन फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ये दूसरा मौका है जब स्पेन विश्व कप फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले टीम ने साल 2010 में फाइनल का टिकट हासिल किया था और खिताब भी अपने नाम किया था। टेक्सास के डलास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और किलियन एम्बाप्पे ने स्पेन के डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि मुकाबले में पहली सफलता स्पेन के हाथ लगी जब 19 वर्षीय लामिन यमाल को रोकने के प्रयास में फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने फाउल कर बैठे, जिसके चलते स्पेन को पेनल्टी मिली। मैच के 22वें मिनट में मिकेल ओयरजाबल ने बिना कोई गलती किए पेनल्टी को गोल में तब्दील करते हुए स्पेन को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। A glimpse, just a glimpse of the World Cup final. इसके बाद फ्रांस ने पहले हाफ में बराबरी करने की काफी कोशिशें की, लेकिन टीम स्पेन के मजबूत डिफेंस को नहीं भेज सकी। दूसरे हाफ में पूरी तरह से स्पेन का दबदबा मैच पर देखने को मिला। मैच के 58वें मिनट में स्पेन के पेड्रो पोरो ने शानदार गोल करते हुए स्पेन की बढ़त को 2-0 कर दिया।
3: The world is opening up for this glittering Spanish cohort.
2: फ्रांस के कोच ने डेजिरे डुए और रयान चेरकी को मैदान पर उतारकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एम्बाप्पे ने कई बार स्पेन के डिफेंस को भेदने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन उनके आगे चट्टान की तरह खड़े नजर आए। फ्रांस की टीम निर्धारित 90 मिनट में कोई गोल नहीं कर सकी और स्पेन ने मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। खिताबी मुकाबले में अब स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से, जबकि फ्रांस की टीम तीसरे स्थान के लिए मुकाबला करेगी। रिपीट, जबकि फ्रांस की टीम तीसरे स्थान के लिए खेलेगी। फ्रांस का सामना दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो 48 टीमें थी, 104 मुकाबले खेले जाने थे। अब 101 मुकाबले हो चुके हैं, 3 बचे हैं, और अगर साथ साथ देखा जाए तो गोल्डन बूट की रेस भी उतनी ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है जितनी ही खिताबी दौड़ है, जहाँ पे एम्बाप्पे 8 गोलों के साथ शीर्ष पर हैं और मेसी भी 8 गोलों के साथ हैं। हालांकि कल के सेमीफाइनल में एम्बाप्पे कोई गोल नहीं कर सके और उनकी टीम फ्रांस का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो चुका है, तो ऐसे में आज बहुत अच्छा मौका होगा मेसी के पास कि वो अपनी टीम के लिए गोल करें और टीम को जीत भी दिलाएं, साथ ही गोल्डन बूट की अपनी दौड़ को और मजबूत करने का काम करें। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां भारत ने आखिरकार इंग्लैंड दौरे पर विजय शंखनाद कर दिया है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बर्मिंगम के एजबिस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड के 259 रन के लक्ष्य को भारत ने 45 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराकर इंग्लैंड दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की है। बर्मिंगम के एजबिस्टन में खेले गए मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों की संतुलित गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में 258 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 76 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि लियाम डॉसन ने 68 और बेन डकेट ने 43 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।

0: प्रसिद्ध कृष्ण और गुरनूर बरार ने दो दो तथा जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने एक एक विकेट निकाला। 259 रन के जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत के दोनों स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित 11 और कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने श्रेयस अय्यर के साथ 101 रन की साझेदारी करते हुए टीम को वापस मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अय्यर 35 रन पर आउट हुए। अच्छे रंग में दिख रहे कप्तान गिल को क्रैम्प की समस्या के कारण 80 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से जाना पड़ा। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और छठे विकेट के लिए 105 गेंदों में 102 रन की अटूट साझेदारी की और टीम को आसान जीत दिलाई।
1: And the two spin bowling all-rounders for India have seen them over the line, Akshar Patel and Washington Sundar.
0: सुंदर 63 गेंदों पर 52 रन और अक्षर पटेल 52 गेंदों में 57 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और सैम करन ने एक एक विकेट लिया। बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाने वाले अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए सुनते हैं इस परफॉर्मेंस पर अक्षर पटेल ने क्या कहा।
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली जिस तरह के T20 सीरीज गए उसके बाद पहला विन, इस तरह का परफॉर्मेंस के बाद जब आता है तो आई थिंक बहुत ही यू नो सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम यही सोच रहे थे कि बस हम खेलते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचते कि उसको टारगेट करेगा, मैं उसको टारगेट करूंगा, क्योंकि जिस तरह के विकेट थे आई थिंक जब आप एक बार सेट हो गए तो आपको वो फिनिश करना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो हम यही बात कर रहे थे।
0: अब श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा, जहां टीम की नजर इस मुकाबले को जीत कर श्रृंखला को अपने नाम करने की होगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: तो शायद कुछ मरहम लगा होगा उन हारों का जो आयरलैंड से मिली, उसके बाद इंग्लैंड से मिली एक शानदार जीत के साथ, और टीम की और खेल प्रेमियों की उम्मीदें भी यही होंगी कि कल कार्डिफ में भी ऐसा ही करिश्मा दोहराया जाए और श्रृंखला अपने हिस्से में की जाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में शानदार बल्लेबाजी का उपहार शुभमन गिल को ताजा जारी ICC रैंकिंग में मिला है। गिल एक दिवसीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं और वो पहले स्थान के खिलाड़ी डैरिल मिचेल से मात्र 11 अंक पीछे रह गए हैं, जबकि दूसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर विराट कोहली और चौथे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। और अगर टीमों की रैंकिंग की बात की जाए तो भारतीय टीम एक दिवसीय क्रिकेट में पहले स्थान पर है और T20 रैंकिंग में भारत को हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है और भारतीय टीम अपना शीर्ष स्थान गंवा करके दूसरे स्थान पर आ गई है, जबकि फायदा अक्षर पटेल को भी हुआ है और वो 3 अंकों की छलांग लगा करके ऑलराउंडर्स की एक दिवसीय रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और अब रुख करते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता का, जहां एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज महिला वर्ग में 3 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग, प्राची ने 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: इंडोनेशिया के जकार्ता में खेली जा रही एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 23 वर्ग में भारत की निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में जापान की कोरिन कोकुफू को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि नितिका चंद्र ने 60 किलोग्राम वर्ग, काजल ने 65 किलोग्राम वर्ग, मुस्कान ने 75 किलोग्राम वर्ग और प्रियंका ने 80 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में रजत पदक हासिल किए। इससे पहले तनु ने 51 किलोग्राम वर्ग, प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग, शिवानी ने 70 किलोग्राम वर्ग और नैना ने 80 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में कांस्य पदक जीते थे। अगर अंडर 19 वर्ग की बात की जाए तो 51 किलोग्राम वर्ग में भारत की चंद्रिका पुजारी ने उज्बेकिस्तान की नजोकत मर्दोनोवा को 5-0 से और 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने इंडोनेशिया की दीरा अर्तिका को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि गुंजन ने 45 और 48 किलोग्राम वर्ग, जॉयश्री ने 54 किलोग्राम वर्ग, चाहत ने 60 किलोग्राम वर्ग, अंशिका ने 75 किलोग्राम वर्ग, मेघा शियोकंद ने 80 किलोग्राम वर्ग और प्राची टोकस ने 81 किलोग्राम वर्ग से अधिक की कैटेगरी में रजत पदक भारत की झोली में डाले। पुरुष के फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे, जिसमें अंडर 23 में 3 भारतीय मुक्केबाज और अंडर 19 वर्ग में 2 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए दाव आजमाएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
3: तो जकार्ता से आए हुए ये परिणाम इशारा करते हैं कि भारतीय युवा मुक्केबाजों का भविष्य कितना उज्ज्वल है और किस दिशा में जा रहा है। और ये परिणाम अभी यहीं नहीं थमे हैं, कल और मुकाबले खेले जाएंगे जहां 5 भारतीय पुरुष मुक्केबाजों की नज़र स्वर्ण पदक पर होगी, जिसमें विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम वर्ग में स्पर्धा करेंगे, गंगा 55 किलोग्राम में और 65 किलोग्राम में वंशराज नजर आएंगे स्वर्ण पदक के लिए दाव आजमाते हुए, जबकि आदित्य अंडर 19 वर्ग में 55 किलोग्राम और शुभम राजपूत 90 किलोग्राम

0: को आज हार का सामना करना पड़ा, जबकि महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भी अपने मुकाबले हार कर इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। लक्ष्य सेन को जापान के कोकी वतानबे ने 21-16, 21-14 से हराया, जबकि आयुष शेट्टी को थाईलैंड के कुनलावुत विदित्सन ने 21-19, 23-25, 21-15 से हराया। वहीं महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसन से 21-16, 16-21 और 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। अब भारत की जो मुख्य उम्मीदें हैं वो कल के मुकाबलों पर होंगी, जहां दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मैदान पर उतरेंगी और अपना प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी, जहां पे उनका सामना जो है वो हुआंग यून से होने वाला है। और मिक्स डबल्स जोड़ी में तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी कल अपना मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो भारत की पूरी उम्मीदें इस जोड़ी से और पीवी सिंधु से रहने वाली हैं कि ये भारतीय अभियान को किस तरह से आगे लेकर के जाते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे इस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी दुनिया के खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल sports.scan@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में।

0: सात गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
0: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है।

0: लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एस पी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया।
4: नमस्कार।
2: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
3: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए, और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे। और दूसरा, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है। हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है। जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी, क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
2: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कॉम्पोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है।
0: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या दलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ थे प्रोसेस फूड्स के ऊपर, वो घट के जीरो हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है, उसमें जीरो हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है, उसमें 18% था, उसमें जीरो हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स, वो बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें 18% है, जीरो हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था, उसमें जीरो हो जाएगा। और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था, उसमें भी जीरो हो जाएगा। और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था, उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे

0: उसमें भी 1% से कम है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है, इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारे वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है, पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त। तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारे वस्तुएं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने का डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है ये सारे सेक्टर्स में, और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं, इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है। उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स कटते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारी मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं, एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है एक कोटा के थ्रू। जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़ेगा। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारी इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। आप देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
0: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है

वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की, उसमें एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट

0: वो बहुत ही सरल की कृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो FTAs जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो को जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
2: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की, कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी। दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारी जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी। उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि एफटीए आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कम्पीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं ये समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
0: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर ली हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहाँ पे, जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफ़ी एक धक्का पहुँचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है उसमें एक काफ़ी एक धक्का मिला है उसको, और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश

0: हैं, यू को मिला के, मैं कह रहा हूँ एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था, उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो 15-20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही हैं, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज़्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज़्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज़्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमईज के हित हैं उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारे इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और उनको और ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज़्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
0: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीज़ों में, सब चीज़ों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब जीरो में आ चुकी है। नाउ जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियाँ जो हैं उसमें ज़्यादातर एमएसएमई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती हैं, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक

0: नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है, और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती हैं वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हरेक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी, और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे, और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
0: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा, हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया, थैंक यू,
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: समाचार।
1: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त कराने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत के भारत और ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसके बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के अंतर्गत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। यमुना के किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन भी किया जाएगा। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमलों में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार के प्रवक्ता फतेह मेह मोहजेरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं।

0: command centers, aircraft shelters, and other strategic locations. Three Indian women boxers won gold medals, while 10 others claimed silver medals at the Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta today. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta in the US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। विश्व दर्पण में आज के मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का आग्रह किया। चेतावनी दी कि निष्क्रियता वैश्विक जनविश्वास को कम कर रही। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमरीका के अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार तथा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
2: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्नर्ड लैंग से मुलाकात की। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और इससे दोनों देशों के व्यवसायों, उद्योगों और लोगों को मिलने वाले व्यापक अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविच से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से वैश्विक जनविश्वास कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्री हरीश ने कहा कि 80 वर्ष पुरानी संयुक्त राष्ट्र संरचना मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अब उपयुक्त नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए समझौते के अंतर्गत कार्य सूत्र सिर्फ कागजों में बनकर रह गए हैं। इस समझौते में हिंसा, नस्लवाद और विदेशियों से नफरत समाप्त करना, समानता को बढ़ावा देना और शांति स्थापना को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को पुनः सशक्त करना और सतत विकास में प्रगति के लिए आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की भूमिका को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। अल्प विकसित और विकासशील देशों पर श्री हरीश ने कहा कि भारत इन देशों में संसाधनों की आवाजाही के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश पीछे न रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों से अधिक प्रतिनिधित्व, जवाबदेह और विकासोन्मुख बनने का आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप, अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारियावा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि नवाचार केंद्रों, स्टार्टअप और होराइजन यूरोप के साथ सहयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में वार्ता की। बैठक में आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी उप मंत्री मिशेल बारानोवस्की के नेतृत्व में पोलैंड का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व MSME सचिव भारत खेरा ने किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना के बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकेबंदी फिर से लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों और दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग के बारे में नई धमकियों ने अंतरिम शांति समझौते को खत्म कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने आज धमकी दी कि नाकेबंदी के कारण पश्चिम एशिया से ऊर्जा का निर्यात रोक दिया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ब्रिटेन में सरकार ने आज 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है। ये कदम किशोरों को ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा लत लगाने वाली चीजों से बचाने के लिए उठाया गया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत टैक्स के तहत एक ही छत के नीचे भारत की पूर्ण टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला को लाने की प्रक्रिया पर वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा का लेख साझा किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पहल देश की विनिर्माण शक्ति, समृद्ध वस्त्र विरासत और विस्तारित होती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। भारत ने

मोहरा फिल्म से आपने ये गीत सुना, साधना सरगम और पंकज उदास की आवाज में इंडीवर का लिखा ये गीत और बीजू शाह के संगीत से सजा ये गीत। आप सभी का मैं रितिका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हर श्रृंगार में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कहते हैं ना कि किसी इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके सादेपन में होती है। जब दिल साफ हो तो ना तो गहनों की जरूरत होती है और ना ही किसी बनावट की, है ना। और यही सादगी हमने इस गीत के माध्यम से जानी सुनी और बहुत ही इसका हमने लुत्फ भी उठाया। और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसने मोहब्बत की मासूमियत को बेहद खूबसूरती से सुर में पिरोया है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

1994 में आई फिल्म कभी हाँ कभी ना से आपने ये गीत सुना, जतिन ललित के संगीत से सजा, कुमार सानू की आवाज में और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। कभी कभी आपने भी ये एहसास किया होगा कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जब हमें दुनिया की कोई खबर नहीं होती, है ना। बस अपनेपन का एहसास और दिल की धड़कनों की आवाज़ साथ होती है। और अब बारी उस गीत की जिसमें मिलने की चाहत

और हमारा भी आपसे मिलने को दिल हमेशा करता है। फूल और कांटे फिल्म से आपने ये गीत सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में समीर का लिखा ये गीत और संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। 11:10 पर मार्केट मंत्रा आप सुनेंगे और अब से थोड़ी ही देर में समय रहेगा समाचार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई U19 और U23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे महोदय. कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्रिया एंड उदयन, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains 130 points. Nifty settles at 24,079. India-UK comprehensive economic and trade agreement comes into effect. And Cabinet approves Semicon 2.0 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Also gives nod to national investment policy for Urea 2026.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 130 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,079 पर बंद हुआ. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार समझौता और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है. और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सेमिकॉन 2.0 तथा यूरिया 2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी.
0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम जानें कि आज दिन के अंतराल में प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 130 अंक यानी लगभग 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.3% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.7% की बढ़त देखी गई. इससे पहले बाजार बढ़त के साथ खुले और सत्र के पहले हिस्से में तेजी रही. वहीं दूसरी ओर दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी. हालांकि बाजार कुछ समय के लिए घाटे में आ गए थे, लेकिन सूचकांकों ने जल्दी ही अपना रुख बदला और बचे हुए सत्र के दौरान उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex rose 130 points, almost 0.2% up, to close at 77,185. The Nifty added 26 points or 0.1% to settle at 24,079. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 gained nearly 0.3% and the small-cap 100 index jumped almost 0.7%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher during the first half of the session. However, both indices gave up their early gains in the latter half amid profit booking. Although the indices slipped briefly into negative territory, they soon recovered and traded in a choppy range for the remainder of the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एटर्नल 3% से अधिक, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.8% और SBI के शेयरों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई. वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में पावरग्रिड और लार्सन एंड टूब्रो में लगभग 1.7% और अधिक तथा टाटा स्टील के शेयरों में 1.5% से अधिक

0: की गिरावट आई।
1: In sectoral indices on the BSE, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, capital goods jumped 1.3%, PSU banks rose over 0.9%, and hospitals as well as consumer durables added more than 0.7%. In contrast, utilities dropped nearly 1.3%, metal fell 1%, and IT lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,207 advanced, 2,081 companies declined and 154 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 26 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.97 पर कारोबार कर रहा था। उदयन, कल हमने देखा कि बाजार में गिरावट आई और आज हमने देखा कि बाजार में एक हल्का सा हम कह सकते हैं कि हरे दायरे में कारोबार करते हुए हमारे सूचकांक नजर आए, लेकिन हमने साथ में ये भी देखा कि फाइनेंशियल जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, उसने आज बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या कारण रहा होगा इसका?
2: देखिए, जब रिस्क ऑन थोड़ा पॉजिटिव मूड रहता है
0: जी,
2: तो फाइनेंशियल्स नॉर्मली, क्योंकि आप हमारे जो सूचकांक है उसका एक बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो फाइनेंशियल्स का होता है, तो वो नेचुरली वहाँ उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट चला जाता है जो प्रोमिनेंट कंपनीज होती हैं। तो जब आपका स्लाइटली रिस्क ऑन बिहेवियर है, जब आपका पॉजिटिव सेंटिमेंट है या रिबाउंड कर रहे हैं, तो तब उसकी तरफ रुख जरूर होता है। बाकी जो मोर और लेस जो है, जो नंबर्स की उम्मीद हो रही है, बाकी जो चीजें हो रही हैं, इट्स मोर और लेस ऑन ट्रैक, तो दिक्कत वहां पे बिल्कुल नहीं है। जो फाइनेंशियल्स को लेके जो नॉर्मली कुछ चिंताएं होती है, उस टाइप की कोई चिंता खास नहीं है। जो टॉक्सिसिटी थी कई कई साल पहले एनपीएस वगैरह की, वो अब बहुत बेहतर टेरिटरी में है। क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, अब हाल ही में जो सीएनआरबी का अनाउंसमेंट हुआ, उससे वो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, पर मुझे लगता है ये जो है ये मोर टैक्टिकल है। शायद ये इसमें फंडामेंटल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है।
1: Then, you know, we always know that, of course, we have small cap, mid cap and large cap. And by and large cap, they may move slowly, but they are more steady and more stable. And retail investors, as I said, balance your portfolio. But we're also seeing there are lots of, you know, I think you can call them the future industries or the seasonal ones, whether we talk of AI, the green energy. And of course, we have FMCG and we have the large cap, many of them IT also sitting over there. In terms of investment, especially for these slow-moving but steady companies, how should the retail investors see them and what should be the horizon? Because it's taking time.
2: Yeah, so that's an interesting question. And this is to be the standard wisdom. As in, when things are getting choppy and you're not feeling good about things, then pharmaceuticals, because everybody is going to, at some point, you know, not feel okay and have medicines and get treated, etc. And males will shave. Everybody is going to do brushing twice a day.
1: Yeah.
2: At least once. So all these things, you know, that I'm talking about FMCG and pharma and medicine and all that. So they are like very, very steady growth sectors. So they don't go over the top. But they want to also go down. So this is very, very old school, traditional. I'm not saying it in a negative way, but that's how it is. And a lot of these companies also, what happens is they are very, very established business models. Distributions is there, and you know they'll announce dividends also. So you get a total return, not only capital gains, you're getting dividends also, because the companies will not be setting up another plant. You know, they might come up with another product, product line, but not a huge manufacturing. So all these things actually

0: and the agreement on social security is a significant moment in the partnership between India and the United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added that the CETA will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. Talking to Akashvani News, High Commissioner of the UK to India, Lindy Cameron said that this agreement is a great deal for both sides.
1: It's just wonderful to be here today on the 15th of July, celebrating the deal going into force, making it faster, cheaper, easier to do business between the UK and India. I mean, after so much hard work on both sides, and huge credit to the Ministry of Commerce and Industry here, who've done a brilliant job. My team too have done an amazing job. It's a great deal for both sides. We have very complementary economies.
0: Speaking to Akashvani, Global Trade Research Initiative founder Ajay Srivastava highlighted the key sectors benefiting from the deal.
2: The deal aims to increase trade between the two nations from $66 billion to a massive $100 billion in the next few years. So what's in it for India? Exports of Indian textiles, garments, footwear, cars and seafood gets a boost from tariff cuts by the UK government. Plus, a new tax rule ensures that Indian professionals working temporarily in the UK won't get double taxed on the social security. On the other side, Indian consumers can look forward to cheaper prices on British industrial goods, silver, luxury cars.
0: While speaking to our news correspondent, Executive Director of Indian Chamber of Food and Agriculture, Sanjay Sethi, said that this agreement will give a boost to the agriculture sector.
3: इससे एग्रीकल्चर को बहुत विशेष लाभ है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि राइस चाय स्पाइसेस मैरिन प्रोडक्ट इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो प्रोसेस फूड्स हैं इन सब उद्योगों पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है इसके साथ साथ जो ग्रोथ है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है क्योंकि यूके में प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जाता है बड़ी भारी तादाद में और इंडिया में सब तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को अब अपनी कमर कसनी होगी FSSAI ने फूड की सेफ्टी के लिए बड़े अच्छे कदम उठा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट से तुरंत देखने को मिलेगा इस एग्रीमेंट की सक्सेस अल्टीमेटली इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारे सब स्टेक होल्डर्स चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे वो मंडियों के व्यापारी हैं या फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं ये सब मिलके इस अपॉर्चुनिटी को एक नई लंबे समय तक ग्रो होने वाली अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें जिससे कि रूरल प्रोस्पेरिटी भी हमारी बढ़े और एक सस्टेनेबल लंबे समय तक ग्रोथ हमको मिले.
0: Talking to Akashvani News, Executive Director of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Sabyasachi Ray, said that the gems and jewellery sector will be immensely benefited by this agreement.
4: See, gem and jewellery sector is a very large sector from India. We are employing more than 5 million people across the country. Though our exports is $30 billion, but it reaches every corner of the country. All types of jewellery manufacture, whether you talk about Western jewellery, ethnic kind of jewellery, handmade jewellery. And we are one of the largest exporter of diamonds in the world. Like 14 out of 15 diamond set in jewellery anywhere across the world is manufactured in India. And also emerald, we are again the largest manufacturer of emeralds in the world. Tanzanite, we are the sole manufacturer of cut and polish tanzanite across the world. So we are having more than 200 clusters of manufacturing. All these will be benefited with this agreement.
5: और अन्य खबरों में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकियों को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को भी मंजूरी दी है. नई दिल्ली में हुए एक प्रेसवार्ता में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 1.0 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि ये योजना आर्थिक विकास में मदद करेगी, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करेगी. मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है. श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी.
6: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है, डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे

0: इंसेंटिव्स रखे गए, क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी। इसमें करीब 39 लाख करोड़ रुपीज का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे।
1: मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया बनाने वाली इकाइयां लगाने के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। नई नीति में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए स्थिर और परिवर्तनशील लागत को अलग अलग करने के साथ कई और महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। उद्यन सेमिकॉन 2.0 उद्देश्य जो लेकर के भारत सरकार चल रही है, वो वैश्विक सेमीकंडक्टर को मानचित्र पर लाने की एक परिकल्पना है। ये किस तरीके से फलीभूत होते हुए आप देखते हैं?
2: देखिए, अब जो सेमी कंडक्टर्स हैं, वो जो चिप्स हैं, वो हम हर चीज, तकरीबन हर चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो सक्षमता है, वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड चिप्स बनाने में आप सीधा तो नहीं जा सकते, तो आपको धीरे धीरे वो जो गैप है कटिंग एज और आपके बीच में, उसको कम करना है। तो आपने देखा होगा कि इन सरकार ने और दूसरे उद्योगों ने, कंपनियों ने एक प्लान बना रखा है कि कैसे वो गैप को धीरे धीरे करके कम करना है। तो ये उसका ही हिस्सा है जिसमें वो आप आगे बढ़ रहे हैं और आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो चिप्स है वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो हमारे जो कटिंग एज और हमारे बीच में इतना बड़ा फासला जो है वो कम हो जाए, क्योंकि हर चीज के लिए आपको वेरी एडवांस चिप्स की जरूरत नहीं पड़ती। कई जगह में रेगुलर यूज के जो हैं वहां पे आप उसके लिए भी चाहिए होता है, उसके लिए भी आप अगर इंपोर्ट करें वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो जाए। तो जो सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में बात हो रही है, तो वो आप देश में ही बने और वो आप विश्व के लिए बनाए, तो उसी का ही एक हिस्सा है, वो इसी स्ट्रेटेजी का।
1: जी, आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने को कहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। यूनिट ने स्पष्ट किया कि भारत में क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
3: Global crude oil prices extended gains today amid escalating tension in West Asia. Brent crude was trading over 0.3% up at $85.03 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 0.4% up at $79.66 per barrel when reports last came in. Brief comment, Udayan, on the rate of rise of oil.
2: Obviously, we don't like this. We import most of our oil from abroad. But I think from the market's point of view, the figure is 90. As long as it remains below 90, I think the markets and the general sentiment will be able to handle it. But the every time it's going to increase, you're going to see the first place, you're going to see an impact would be on the value of the rupee. That's where it starts. Then it will start. It impacts your equity and other forex inflows. Mm-hmm. So, what we need to, if there is somebody who's watching this, what we need to hope for is that it doesn't cross the figure of 90, because it's got fiscal implications and other implications as well. So we would want it to be, lower it gets, the better it is. But we don't stay in an ideal world, which we have realized. So, we hope it doesn't go up too
3: right.
2: much.
3: Right, fingers crossed, yeah, absolutely. Yeah, yeah. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.3% down at 1,42,560 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% down at 2,22,200 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi commodity exchange mein agast anubandh wala sona mamuli badhat ke saath 1,42,328 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi

0: 0.3% लुढ़ककर 2,22,488 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। उद्यन जाते जाते, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए एक संक्षिप्त टिप्पणी में सोने और चांदी के भाव पर चाहूंगी।
1: देखिए, ये सोने की पॉपुलैरिटी बरकरार ही रही है जब तक आपके ये दो जो संघर्ष चल रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आपके स्टॉक फाइनेंशियल एसेट्स पे होता रहता है, तो वो बट ये ख्याल रहे कि आप उसमें एक्सेस ना जाए। अगर 100 रुपए निवेश करें 10 रुपए से ज्यादा ना सोने में हो और वहीं पे बरकरार रखें। तो अगर और ये नहीं कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है, बाकी ETFs वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदयन कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: Once again, thank you, Udyan. And now, quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains 130 points. Nifty settles at 24,079. India-UK comprehensive economic and trade agreement comes into effect. And cabinet approves Semicon 2.0 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Also gives nod to national investment policy for Urea 2026. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बार फिर मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज से आपने ये गीत सुना, ओपी नैयर का संगीत, कमर जलालाबादी का लिखा ये गीत। और आवाज आशा भोसले की।

तो दोस्तों, राखी आ चुकी है निशिकंधा लेकर स्टूडियो में। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे

0: करण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया, दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दे दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत टैक्स 2026 के दूसरे दिन राज्यों के नेतृत्व वाली वृद्धि, निवेश के अवसरों और वैश्विक बाजारों के साथ भारत की बढ़ती वस्त्र व्यापार साझेदारी पर बल दिया गया। इस सत्र में राज्य सरकारों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ताकि विनिर्माण को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और देश के वस्त्र तथा परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषी AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के EVSV पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री मेघवाल ने कानूनी क्षेत्र में सरल, सुगम और नागरिक अनुकूल हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

मधुमती फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। हिंदी फिल्मी गीत हमारे हर पल के सच्चे साथी हैं। खुशी का मौका हो तो ये मुस्कान बन जाते हैं और उदासी के लम्हों में दिल का सहारा। कभी बीते हुए दिनों की याद दिलाते हैं तो कभी आने वाले कल की उम्मीद जगाते हैं। हर एहसास, हर मौसम और हर रिश्ते के लिए जैसे कोई ना कोई गीत पहले से ही लिखा हुआ मिलता है। शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्मी गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं।

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कई बार जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं घूमने फिरने का समय ही नहीं मिल पाता, ऐसे में हिंदी फिल्मी गीत ही हमें अपनी धुनों के सहारे हरी भरी वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों, बहती नदियों और सुहाने सफर की सैर करा लाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो हम भी उन खूबसूरत नज़ारों का हिस्सा बन गए हों। यही तो फिल्मी गीतों का जादू है, बिना कहीं जाए हमें दूर दूर की दुनिया की सैर करा देते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

0: देवियां फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कभी कभी तो यूं लगता है कि ये फिल्मी नगमे हमारी बेख्याली में भी हमारे साथ चलते रहते हैं। होंठ खामोश हों फिर भी दिल की धड़कनों के साथ कोई धुन अनायास ही गुनगुनाने लगती है। यही गीत हमारी तन्हाई के हमसफर, मुस्कुराहट के राजदार और यादों के सबसे खूबसूरत साथी बन जाते हैं।
1: आयों से की जमाने

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जिसे सच्चा प्रेम मिल गया और जो पूरे दिल से किसी का हो गया, उसके लिए यही दुनिया सबसे खूबसूरत हो जाती है। उसे दौलत, शोहरत या दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा अपने प्रिय का साथ अनमोल लगता है। प्रेम जीवन को एक नया अर्थ, नई खुशी और अपनापन दे देता है। मानो पूरी दुनिया उसी की हो गई हो।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। इस एक पंक्ति में ही प्रेम की गहराई समाई हुई है। जब दो लोग सचमुच एक दूसरे के हो जाते हैं तो उनकी खुशियां, उनके सपने, उनकी मंजिलें और उनकी उम्मीदें अलग नहीं रह जाती। सब कुछ एक ही रंग में रंग जाता है। यही कारण है कि ये गीत आज भी सुनने वालों के दिल को उसी आत्मीयता से छू जाता है जैसे इसने पहली बार छुआ होगा। गाइड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

आराधना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।

0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में कल से पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमानन नीति इसी विचार पर आधारित है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मिश्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडुम्बरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया ई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years. द स्कीम प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री. अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीस इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created.
2: 3,000 direct jobs may create.
1: The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Talking to media yesterday, after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the EU have a natural affinity. He added that India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domain. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. The Election Commission has extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, BLOs, which were scheduled till the 29th of this month, will now continue till the 8th of next month. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd of next month. Country's unemployment rate for persons aged 15 years and above remain unchanged at 5.5% in June as compared to May this year. According to the Ministry of Statistics and Programme Implementation, monthly labour force and unemployment data, the rural unemployment rate eased marginally from 5.1% in May to 5% last month. In contrast, the urban employment rate increased slightly to 6.6% as compared to 6.4% in May. Meanwhile, the overall labour force participation rate in the age group of 15 years and above also remained stable at 54.4% last month, unchanged from May. Sites are locked at 0-0 in the first half. The high-voltage encounter brings together two nations with a rich World Cup history as they battle for a place in the final against Spain on Sunday. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and hosts England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will begin at 5:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

पुनर्मिलन फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी अर्जुन ने। कितने सुहाने हैं ये गीत, कभी चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं तो कभी अनकही यादों को धीरे से जगा देते हैं। कुछ गीत दिल को सुकून देते हैं, कुछ बीते लम्हों की खुशबू बनकर साथ चलते हैं। समय बदलता रहता है लेकिन अच्छे गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। प्रेम इंसान को जितनी खुशियां देता है उतना ही संवेदनशील भी बना देता है। जब दिल किसी से जुड़ जाता है तो दुनिया की बेरुखी, ताने और ठोकरें पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती हैं। शायद अगर दिल ने कभी मोहब्बत का रास्ता चुना ही ना होता तो जिंदगी इतनी कठिन भी ना लगती। लेकिन सच तो ये है कि दर्द का ये एहसास भी उसी दिल को नसीब होता है जिसने कभी सच्चे मन से किसी को चाहा हो।

बाबर फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, समय, धैर्य और हर परिस्थिति में साथ निभाने से साबित होता है। इम्तिहान इसलिए नहीं कि किसी को मुश्किल में डाला जाए, बल्कि इसलिए कि रिश्ते की गहराई और दिल की सच्चाई सामने आ सके। मोहब्बत जब हर कसौटी पर खरी उतरती है, तभी वो उम्र भर का विश्वास बन जाती है।

0: बरसात की रात फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 28 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिल ही तो है फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। गीतों की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो दिल की सबसे छोटी से छोटी और सबसे गहरी से गहरी बात भी कितनी सहजता से कह जाते हैं। जिन भावनाओं को हम कभी शब्दों में नहीं ढाल पाते, उन्हें कोई गीत कुछ ही पंक्तियों में बयान कर देता है। कभी मुस्कान बनकर, कभी याद बनकर, तो कभी अनकहे दर्द की आवाज बनकर।

आखिरी दाव फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। गीत हमारी भावनाओं को ऐसा स्वर दे देते हैं कि लगता है जैसे वो हमारे ही दिल की कहानी सुना रहे हों।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कुछ रिश्ते समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी यादें दिल में इतनी गहराई से बसी होती हैं कि उन्हें मिटाने के लिए शायद एक नया दिल चाहिए। यही तो मोहब्बत की सबसे बड़ी विडंबना है। इंसान बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मगर कुछ यादें उम्र भर दिल का हिस्सा बनी रहती हैं।

अनोखी अदा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

बैजू बावरा फिल्म से आपने गाना सुना, रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। रहेगा मिलन हमारा तुम्हारा, जब तक धड़कनों में एहसास बाकी हैं तब तक इस साथ की खुशबू भी हमेशा बाकी रहेगी।

धूल का फूल फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2:10 पर सुनिए समाचार। समाचारों के बाद माफ कीजिएगा, ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए से अधिक के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अर्जेंटीना पर 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। इस रोमांचक मुकाबले में विश्व कप के इतिहास में समृद्ध दो देश आमने सामने हैं, जो 19 जुलाई को फाइनल में स्पेन के खिलाफ जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडजस्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2O with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1O, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said, the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: Today, Cabinet approved the mobile phone manufacturing scheme with a total outlay of 62,500 crore rupees over a period of 5 years. The scheme provides a wide range of incentives to promote domestic sourcing, as India has now developed a strong manufacturing ecosystem and many mobile phone components are being exported from the country. Under the scheme, cumulative production worth around 39 lakh crore rupees is expected and around 60,000 new direct jobs will be created.
3: 3,000 direct jobs may create.
1: The cabinet has also approved 2 elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time.
4: Semicon 2.0.
2: Semicon 2 is built around 6

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ।

निम्रता की आवाज में रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुहानी आपके सिरहाने बैठी है, जैसे कोई अपना चुपचाप आपके मन को सहला रहा हो। उसकी ठंडी हवाएं दिन भर की थकान समेटकर सुकून की चादर ओढ़ा रही है। इस शांत पल में बस अपने दिल की धड़कनों को सुनिए, क्योंकि कभी कभी खामोश रातें भी सबसे खूबसूरत बातें कह जाती हैं।

स्वामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। चांदनी की कोमल छुअन, ठंडी हवाओं की सरगोशियां और तारों की मध्यम चमक मिलकर एक ऐसा संसार रच देती हैं जहां दिन भर की सारी थकान और उलझने धीरे धीरे कहीं खो जाती हैं। ऐसे पलों में पुराने फिल्मी गीत अनायास ही याद आने लगते हैं, मानो हर धुन रात की खामोशी में खुलकर दिल की अनकही भावनाओं को आवाज दे रही हों।

0: मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी अनकही।

विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

चंबल की कसम फिल्म से आपने गाना सुना लता और रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है, ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गजल सुनी आशा भोसले की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। जिसकी जस्तजू में उम्र की राहें बिता दी, उसे तो हम पा ना सके, मगर उसकी तलाश ने हमें इतना जरूर सिखा दिया कि हर ख्वाहिश का मुकम्मल होना ही जिंदगी नहीं होता, कुछ अधूरी आरजुएं भी दिल को उम्र भर जिंदा रखती हैं।

वक्त हुआ है 2:46 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलील चौधरी ने। कई बार देखा है जब मन की सीमाएं टूटने लगती हैं तब शब्द खामोश हो जाते हैं और आंखें दिल की सारी कहानी कह देती हैं।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: वसियारेट।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटेरो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Union Cabinet has approved Semicon 2O with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1O, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub.
2: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: Us industry ko aur aage badhane ke
1: Mr. Vaishnaw said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
4: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal has launched the EVSP portal of Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department in New Delhi. The portal aims to expand digital access to legal knowledge by making important judgments of the Supreme Court and High Court's legal journals, reference books and other legal literature in Hindi available online. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that by exercising their right to vote, people reaffirm their faith in democracy. He called upon elected representatives to uphold this trust by serving with honesty, integrity and dedication. Addressing the conference of present and former members of the Rajasthan Legislative Assembly in Jaipur, organized to mark the 75th anniversary of the Rajasthan Legislative Assembly, Mr. Radhakrishnan said that state legislatures are the heartbeat of Indian democracy. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav launched the Intermediate Field Epidemiology Training Program in New Delhi yesterday. The initiative through the National Centre for Disease Control aims to build a highly skilled field epidemiology workforce by training 250 state and district surveillance officers through 14 premier medical and public health institutions. In FIFA World Cup football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA to set up a title clash against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalised in the 85th minute and Lautaro Martinez struck in the 90th plus second minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. The final will be played on Sunday. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 12 सेकेंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी मोहब्बत किसी शोर से नहीं बल्कि एक खामोशी से शुरू होती है, एक मुस्कान, एक नजर और फिर दिल धीरे धीरे किसी का आशियाना बन जाता है। आज की महफिल उसी बेपनाह एहसास के नाम, जब दिल बिना किसी शर्त के बस इतना कह उठता है ओ सनम तेरे हो गए हम। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि उस इश्क की गवाही है जहां अपना वजूद

किसी और की मुस्कान में नजर आने लगता है। तो आइए अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, पुरानी यादों को हल्के से दस्तक देने की दीजिए और इस खूबसूरत नगमे के साथ मोहब्बत की उस रौनक को फिर से महसूस कीजिए। फिल्म आई मिलन की बेला से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में ये नगमा आपके लिए।

ओ सनम तेरे हो गए हम, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म आई मिलन की बेला से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त। और अब हम आगे बढ़ेंगे एक और बेहद खूबसूरत नगमे की इस तरफ, जो आज का नगमा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है और यह हमें उस दौर में लेकर चल रहा है जब मोहब्बत लफ्जों से कम और नजरों से ज्यादा बयां होती थी, जब एक फूल और एक बुलबुल की कहानी दिलों में इश्क की खुशबू बिखेर जाया करती थी। साल था 1965 का और पर्दे पर आई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जब जब फूल खिले। इस फिल्म में अपनी मासूम अदाओं से दिल जीत

लिया नंदा ने और उनके साथ नजर आए थे सदाबहार अभिनेता शशि कपूर साहब। इस फिल्म का एक बेहद प्यारा गीत जिसे अपनी रूहानी आवाज से अमर बनाया मोहम्मद रफी साहब ने आज भी हर दिल को उसी शिद्दत से छू जाता है। तो आइए यादों की इस महफिल में शामिल होते हैं और सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमे को हम आपको सुनवाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस गीत को लिखा है बहुत ही खूबसूरत गीतकार, बहुत ही प्यारे गीतकार आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और नंदा की।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म जब जब फूल किले से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और हमराही में आज आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफ़र पर, जिसमें गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर में। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें हम अब आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे की तरफ, जिसने सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं सुनाई बल्कि बदलते वक्त और इंसानी रिश्तों की कश्मकश को भी बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया। ये वो दौर था जब मोहब्बत, इमोशन और सामाजिक रिश्तों की बातें जब होती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे फिल्मकार ने अपना दिल निकाल कर रख दिया है। ऐसी ही एक फिल्म थी नया दौर, और साल था 1957 का, यानी एक नया युग। नया दौर का मतलब नया युग की शुरुआत हो रही थी। महान फिल्मकार बी आर चोपड़ा के निर्देशन और निर्माण में बनी इस सामाजिक नाटक फिल्म की कहानी अख्तर मिर्जा ने लिखी थी। फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके साथ थे अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर,

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800 11 7

1800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म अनाड़ी से, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, जिसमें गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं, और हम भी और आप भी मिलकर चल रहे हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर आपकी हमराही के साथ, जहाँ हर गीत अपने साथ यादों की महफिल, मोहब्बत की दास्तान और सुनहरे दौर की खुशबू लेकर आता है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं। उनकी मिठास, उनके अल्फाज और उनकी धुन बरसों बाद भी वैसे ही ताजगी का एहसास दिलाती हैं। आज का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। ये गीत है 1957 में आई एक बहुत ही मशहूर फिल्म प्यासा से, जिसने हिंदी सिनेमा को संवेदनशील कहानी और बेमिसाल संगीत का एक नया मुकाम दिया। इस खूबसूरत गीत को अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। दोनों की गायकी में ऐसी नज़ाकत और रवानगी है कि हर मिसरा सीधे दिल तक पहुंच जाता है। और जब बात

संगीत की हो तो सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन का जिक्र कैसे छूट सकता है। सचिन देव बर्मन एक ऐसी शख्सियत जिसने धुनों को जिया है, उनकी धुनों में सादगी भी है, रूहानियत भी, और ऐसा जादू भी जो हर दौर में ताज़ा महसूस होता है। तो आइए कुछ पल के लिए रोज़मर्रा की भाग दौड़ के ज़रा फुर्सत चुराते हैं और इस खूबसूरत नगमे के साथ मोहब्बत की इस दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ आँखों ही आँखों में दिल की ज़बान कुछ अलग ही कह उठती है। हालांकि ये वक्त बहुत ही सुकून वाला है, रात की इस तन्हाई में बेहद खूबसूरत गीतों के साथ, बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए, खास तौर से इस नगमे को लेकर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म प्यासा से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है हमराही की, जहां हर गीत अपने साथ यादों की एक महफिल, सुरों की रौनक और जज्बात की एक खूबसूरत दास्तान लेकर आता है। कहते हैं मोहब्बत जितनी नाजुक होती है उसे संभालना भी उतना ही ज़रूरी होता है। रिश्तों की पाकिजगी, भरोसे की खुशबू और दिल की मासूमियत, इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला ये बहुत ही प्यारा नगमा। ये गीत है 1970 में रिलीज हुई एक यादगार फिल्म, जो एक बहुत ही खूबसूरत भी थी, सच्ची कहानियां कहती थी और हमारे जज्बात को भी झकझोर दी थी, और वो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। इस फिल्म ने जिंदगी, मुस्कुराहट और दर्द को एक ही कैनवस पर बेहद संजीदगी से उकेरा है। गीत के दिलकश बोल लिखे हैं मशहूर शायर गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने, और इस नगमे को अपने सदाबहार संगीत से सजाया है हिंदी सिनेमा की महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की, जिनकी धुनें आज भी दिलों में उसी रवानी के साथ गूंजती है। और जब इन गीतों को, इन अल्फाज को आवाज़ मिली मुकेश साहब और आशा जी की, तो फिर क्या कहने। ये गीत एक ऐसे ही नगमा निगारी का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है, जिसे सुनकर आज भी सुनने वाले मुकेश साहब की आवाज़ को याद करने लगते हैं, उनको याद करने लगते हैं, उनकी शख्सियत को याद करने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत नगमा, जिसमें प्यार की मासूमियत भी है, अपनापन भी, और रिश्तों की हिफाजत का बहुत ही प्यारा एहसास भी।

अगश्री दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह नगमा था बेहद खूबसूरत फिल्म मेरा नाम जोकर से आशा जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत नगमा है, तो आइए उसी नगमे की तरफ बढ़ते हैं। प्यार की मीठी नोक झोंक, रोटने मनाने की दिलकश अदा और सुनहरे दौर के संगीत का आनंद लेते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में फिल्म आस का पंछी। कहिए, बहुत ही प्यारा नगमा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं।

मुकेश साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए हमराही से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा अगला प्रोग्राम लेकर ठीक चार बजकर दस मिनट पर अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं जो विनिर्माण

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम बात करेंगे जिंदगी के उन लम्हों की, उन यादों की और उन खूबसूरत पलों की जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही मायने रखता है। अगर वो पल, अगर वो यादें ना हों तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी लगेगी। और इस अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम बात करते हैं ऐसे लम्हों की जहां हर गीत सिर्फ सुरों का सफ़र नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने का एक खूबसूरत पैगाम भी होता है। ज़िंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना, कभी धूप कभी छांव, कभी आरजू तो कभी इंतज़ार, लेकिन हर सुबह हमें एक नया मौका देती है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। और रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, उन्हें सिर्फ निभाया नहीं जाता बल्कि भरोसे, अपनापन और मोहब्बत से सींचा जाता है। जब दो दिल एक दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी तलाशने लगे तब जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। और आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, मिलन सिर्फ दो लोगों

का नहीं बल्कि उम्मीदों का, विश्वास का और दिलों का होता है। यही तो ज़िंदगी की असली खूबसूरती है कि हर मुलाकात हमें कुछ नया सिखा जाती है। इस अनमोल नगमे को अपनी जादुई आवाज़ से अमर बनाया है किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों ने। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस महफिल में आपके लिए अभिमान फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा।

अभिमान फिल्म का ये नगमा था किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अरुणिमा, जहां हर गीत सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है कि सब कुछ खामोश हो गया है, लेकिन यकीन मानिए हर खामोशी के बाद एक नई सदा जरूर सुनाई देती है। बस जरूरत है उम्मीद का दामन थामे रखने की। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हर मुश्किल के बाद फिर से मुस्कुराना सीख लेता है। रिश्ते, अपनापन और एक दूसरे का साथ, यही तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। कभी किसी अपने को पुकारने में देर मत कीजिए, और अगर कोई आपको पुकारे तो उस आवाज में छिपे एहसास को जरूर समझिएगा। आज का हमारा अगला ये नगमा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, जो दिलों को जोड़ने की एक ऐसी ही प्यारी दास्तान कहता है। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज से अमर बनाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। गीत की खूबसूरत बोल लिखे हसरत जयपुरी साहब ने, जिनके अल्फाज सादगी में भी गहरी मोहब्बत का एहसास जगा देते हैं, और पर्दे पर इस गीत को जीवंत किया शमी कपूर साहब और कल्पना ने, जिनकी मासूम अदाकारी आज भी दिलों को छू जाती है। तो आइए आज अपने इस दिल के दरवाजे उम्मीद के लिए खोले रखें और किसी अपने को एक मुस्कान दीजिए, किसी मायूस चेहरे को हौसला दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची आवाज़ ही किसी की ज़िंदगी में एक नई रोशनी ले आती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में फिल्म प्रोफेसर से।

आवाज देकर हमें ना बुलाओ। प्रोफेसर फिल्म का ये नगमा था रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि हर शाम के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किलें बड़ी होती हैं, लेकिन जो इंसान उम्मीद का दिया जलाए रखता है उसकी मंजिल उससे ज़्यादा दूर नहीं होती। कभी कभी हम अपने सपनों को बहुत दूर समझ बैठते हैं, मगर असल में फासले बाहर नहीं, हमारे ख्यालों में होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। जब दिल में उम्मीद, नज़रों में भरोसा और कदमों में हौसला हो तो हर सफ़र खूबसूरत बन जाता है। और आज का हमारा ये अगला बहुत ही प्यारा नगमा भी कुछ ऐसे ही एहसासात को छूता है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गीत 1971 की बहुत ही खूबसूरत फिल्म आनंद से है। गीत के संवेदनशील बोल लिखे हैं योगेश साहब ने और इसको दिल को छू लेने वाले संगीत से सजाया है सलील चौधरी साहब ने। और जब इस नगमे को अपनी दर्द भरी लेकिन उम्मीद से भरी आवाज़ दी मुकेश ने, तो ये गीत हर उस दिल की आवाज़ बन गया जिसने कभी किसी बेहतर कल का ख्वाब देखा हो। तो आइए आज एक छोटा सा अहद करें, बीती बातों की मायूसी को पीछे छोड़ें, आज की मुस्कान को अपनाएं और अपने आने वाले कल का इस्तकबाल करें। यकीन के साथ करें, क्योंकि ज़िंदगी की असली खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए सफ़र को तय करने में है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 45 सेकेंड और अरुणिमा की इस महफिल में बातें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, आपके प्यार आपकी मोहब्बत की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी एक लंबा सफर है, इस सफर में कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ लम्हे मुस्कान दे जाते हैं तो कुछ हमें मजबूत बनना सिखा जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर गुजरता हुआ पल हमें आगे बढ़ने की वजह देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, पीछे रुकने की नहीं। अक्सर हम बीती हुई बातों को लेकर अफसोस करते रहते हैं, मगर जिंदगी का असली फलसफा यही है कि जो बीत गया उससे सीखिए और जो आगे आने वाला है उसका इस्तकबाल पूरे यकीन और मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया भरी पड़ी है और उम्मीद से ही सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जिंदगी की किताब में एक नया और खूबसूरत सफ़ा ज़रूर जोड़ा करें, प्यार का, मोहब्बत का, खूबसूरती का। इन्हीं जज्बात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला ये बहुत ही प्यारा नगमा, जिसके बोल हैं, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। ये गीत फिल्म आपकी कसम का है, इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही सुंदर संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। आवाज़ है किशोर कुमार साहब की।

जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। बेहद खूबसूरत ये नगमा था किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, फिल्म आपकी कसम से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, और इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। जिंदगी कभी इम्तिहान लेती है तो कभी मुस्कुराने की वजह भी देती है। हर मुश्किल अपने साथ एक नई सीख और हर आजमाइश एक नई ताकत लेकर

सकती है। आज का हमारा अगला ये नगमा हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में शिकवा नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी होती है। फिल्म मासूम का ये बेहद खूबसूरत नगमा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। उनका संगीत दिल को छू लेने वाला संगीत और अनूप घोषाल की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये नगमा। तो आइए बीती बातों को मुस्कुराकर स्वीकार करें, आज को दिल से जिए और आने वाले कल का इस्तकबाल हंसते हुए मुस्कुराते हुए करें इस नगमे की तरह।

तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं। बेहद खूबसूरत ये नगमा मासूम फिल्म से, आवाज़ थी अनूप घोषाल की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो चुका है ठीक 4:49 और 49 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की, जिसमें हम बातें कर रहे हैं जिंदगी से जुड़ी हुई। और जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात के बाद आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं उसकी। कहते हैं वक्त चेहरों को बदल सकता है, लेकिन इंसान को नहीं, इंसान की खूबसूरती को नहीं। इंसान की रूह की खूबसूरती उसके अच्छे कर्म और मुस्कुराहट से पहचानी जाती है। जिंदगी में गुजरा हुआ कल लौट कर नहीं आता, मगर हर नया दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका जरूर देता है। इसलिए अफसोस में नहीं, बल्कि उम्मीद और हौसले के साथ आगे बढ़ने, इन्हीं गहरे एहसासात को बयां करता हुआ अगला एक बहुत ही प्यारा नगमा है, एक बहुत ही प्यारा कलाम है डैडी फिल्म का, जो सीधे दिल को छू लेता है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, गुजरा हुआ दौर जैसे कि मैंने पहले कहा कि कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे सीख कर जिंदगी को आगे जरूर बढ़ाई जा सकती है। इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राजेश रोशन साहब ने, और अपनी मखमली आवाज से इसे अमर बनाया है हम सबके प्यारे, हम सबके चहेते तलत अजीज साहब ने। तो आइए, आईने में सिर्फ चेहरा नहीं, अपने जज्बे और अपने सपनों को भी देखिए, क्योंकि असली खूबसूरती वही है जो दिल में बसती है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता।

आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। बेहद खूबसूरत और बहुत ही जज्बाती ये नगमा था फिल्म डैडी से। आवाज थी तलत अजीज साहब की। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, अपने पैगामात के ज़रिए, अपने संदेशों के ज़रिए। तरीका बहुत ही आसान है, आपको हमें मेल करना है, और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldeirdaily@gmail.com fmgoldeirdaily@gmail.com। तो हमें आपके पैगामात, आपके संदेश, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इसी नगमे के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए इजाज़त आज की अरुणिमा को यहीं पर समाप्त करने की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर बेहद खूबसूरत प्रोग्राम भोर सुहानी ठीक 5:10 पर। तब तक के लिए मुझे अब इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई, जो अधिक संरचित और व्यापक साझेदारी के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक के दौरान वे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना मानकों पर पहला नवाचार केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। सेना के केंद्रीय कमान ने बताया कि उसने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए रात भर लगातार हमले किए और फिर दिन के उजाले में भी हमले जारी रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

0: डीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। मध्य प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमान नीति इसी विचार पर आधारित है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां 19 जुलाई को इसका सामना स्पेन से होगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said, the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
2: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Election Commission of India has extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, BLOs, which were scheduled till the 29th of this month, will now continue till the 8th of next month. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd of next month. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on August 15. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India, ASI, in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every year ahead of Independence Day. On August 15, only those with passes issued by the government are authorized to enter the Red Fort area to attend the celebrations which are held amid heightened security. The annual Rath Yatra of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Goddess Subhadra is being celebrated across Jharkhand today with traditional fervor and devotion. Religious

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक सुबह के 5:11 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। आज की इस नई सुबह में हम इस उम्मीद के साथ आज के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे कि आज का दिन हमारे लिए बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा हो। इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला वक्त हमारे लिए हमेशा खुशियां लेकर के आए और हर कदम हम एक सही रास्ते पर सही तरीके से बढ़ाएं। ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, और उस ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती है और ये हमें बार बार नहीं मिलती। हाँ, ये ज़रूर है कि हर नया दिन हमें एक नए रोशनी, एक नए सबक के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं और एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका भोर सुहानी में, जहां हर नई सुबह अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण और जिंदगी का एक नया पैगाम लेकर आती है। दोस्तों, सूरज कभी एक ही पल में नहीं निकलता, वो भी धीरे धीरे आसमान को रोशन करता है और हमारे चारों तरफ उजाला फैलाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी कामयाबी और खुशियाँ वक्त के साथ दस्तक देती हैं। इसलिए सब्र रखिए, यकीन बनाए रखिए और हर नए दिन का इस्तकबाल बहुत ही खूबसूरती के साथ मुस्कुरा कर कीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इर्द गिर्द खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हम भी इसी उम्मीद के साथ आज के इस नए दिन का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में देखिए ये परिंदे किस तरह से चहचहाने लगे हैं, क्योंकि वो भी नए दिन का आगाज खुशियों के साथ मुस्कुरा कर करना जानते हैं।

उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:30 और 15 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जहां पर नई सुबह उम्मीद की रोशनी और जिंदगी की नई उम्मीद लेकर आती है। और भोर सुहानी में बात हम आने वाले वक्त की, आने वाले मुश्किलात की, उसे किस तरीके से डटकर मुकाबला करें, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उसकी बातें करते हैं। दोस्तों कहते हैं जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरों को दूर कर देता है, वैसे ही एक सकारात्मक सोच जीवन को रोशन कर देती है। मायूसी चाहे कितनी भी गहरी हो, हौसलों की एक किरण, हौसले की एक शमा नई राह दिखा देती है। इसलिए हर सुबह अपने दिल में विश्वास की जीवन ज्योति को जरूर जलाएं और मुस्कुरा कर नए दिन का इस्तकबाल करें, क्योंकि ये नया दिन हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हर गहरी अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर होती है, एक रोशन सुबह ज़रूर होती है जो हमारे ज़िंदगी में उजाला लेकर आती है। इसलिए कहते हैं मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर भोर हमें ये याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे से ज़्यादा ताकतवर होती है।